ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, FM 100.3 मेगा हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। 6 बजने को हैं समाचार थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों

0: पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेन जी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं, इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग शु और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शु श्यान को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का प्रातः वंदन।

मिट जाए मन की तृष्णा, यूं उजागर मन करो। मन की तृष्णा ही तो सारे कष्टों का प्रमुख कारण है। ये मन बहुत चंचल है, ये हमें अनेक आकर्षणों की ओर खींचता है और उनकी प्राप्ति हेतु मनुष्य तमाम दुखों का भोग करता है। और जिसने इस मन पर नियंत्रण कर लिया, जीवन को भक्ति मार्ग पर लेकर के चला, वहीं से उसे संतोष और आनंद की प्राप्ति होने लगती है। तीन लोक 14 भुवन के स्वामी, जिनकी अभी हमने आराधना की, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन, आचार व्यवहार सब जगह उन्होंने सादगी को ही अपनाया है, क्योंकि जितना सादा जीवन होगा, मन की तृष्णा उतनी ही कम होगी, उतने ही मन में सात्विक विचार आएंगे और सात्विकता हमें भक्ति, आनंद, शांति और सुख की ओर लेकर के जाएगी।

0: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

हमारी भारतीय संस्कृति, जिसके आभूषण हैं त्याग, समर्पण, श्रद्धा, विनम्रता, और इसके कीर्तिमान स्थापित किए हैं हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने इसके लिए सत्ता का त्याग किया, सम्मान में संपूर्ण जीवन सुखों का त्याग कर दिया। प्रेम ऐसा जो आज भी स्वर्णाक्षरों में अंकित है और जिसकी मिसालें दी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम और भरत जी के प्रेम, सम्मान, समर्पण और त्याग की। आइए आज की आराधना में इनकी भी आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इनके ये गुण आज हमारे समाज में भी प्रस्फुटित हों।

ईश्वर से हमारी प्रार्थना है, हमारी कामना है कि वो सूर्य की पहली किरणों के साथ हमारे अंदर सात्विकता का संचार करें, हमारे मन में ऐसी ऊर्जा का संचार करें जिससे हम इस जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सकें, इस जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दें, हमें सन्मार्ग पर लेकर चले। इसी कामना के साथ आज की आराधना बस।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, FM 100.3 मेगा हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। विचार बिंदु के अंतर्गत लीजिए सुनिए लाला लाजपत राय के विचार।
1: भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के तीन प्रमुख प्रवक्ता थे लाल, बाल और पाल। लाल से बोधन था लाला लाजपत राय के लिए, जिन्होंने जलियांवाला बाग की नृशंस बर्बरता को अंग्रेजी साम्राज्यवाद के ताबूत में अंतिम कील कहा था। बाल थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार की घोषणा की थी। और पाल के रूप में याद किए जाते थे विपिन चंद्र पाल, जिन्होंने स्वराज्य चरित्र के उद्घाटन के लिए देश को ललकारा था। राष्ट्रीय जागृति के साथ साथ जीवन की समस्याओं के विश्लेषक और वैश्विक संकल्पनाओं के उद्गाता के रूप में लाला लाजपत राय के विचार आज भी हमारे लिए दिव्य आलोक प्रदान करते हैं। मृत्यु, धर्म, युद्ध, श्रम, शिक्षा, क्रांति, शांति आदि सभी मसलों पर उनकी दृष्टि थी। उनकी दृष्टि में धर्म चिंतन मात्र नहीं है, अपितु चिंतन और आचरण है। इसी परिप्रेक्ष्य में लाला लाजपत राय ने कहा था, किसी भी धर्म मत को आदर्श और निर्दोष बनने के लिए मानव स्वभाव के उन सभी पक्षों के सामंजस्यपूर्ण विकास की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए जो उसके भौतिक जीवन के आधार का निर्माण करते हैं। सामाजिक पक्ष की उपेक्षा तो वो कर नहीं सकता। वास्तव में मनुष्य को समग्रता में समझने का उनका प्रयास था। धर्म को मानव के स्वभाव, उसकी भौतिक आवश्यकता को समझने और उसके परिष्करण का कार्य करना पड़ता है। जो धर्म जीवन

0: की वास्तविकताओं को नज़रअंदाज करके चलता है, उसके आचरण की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। जीवन और मृत्यु की पहेली मानव को भटकाती रही है। मृत्यु की भयावहता मानव को आशंकित और उद्वेलित करती रहती है। मानव जीवन की नियति और परिणति का शाश्वत प्रश्न सही जीवन दृष्टि की मांग करता है। लाला लाजपत राय ने इस संबंध में कहा था, गरिमापूर्ण मृत्यु के लिए मनुष्य को पहले गरिमापूर्ण ढंग से जीना सीखना चाहिए। वही मृत्यु भव्य है जो भली प्रकार जिए गए जीवन अर्थात सिद्धांतों के लिए, मातृभूमि के लिए और मानवता के लिए जिए गए जीवन के प्रासाद का शिखर बनती है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का एक अर्थ है परहित में रत होना, पर पीड़ा से बचना, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि से अपने को बचाना, देश समाज और मानवता के हित चिंतन का अनुदिन स्मरण और तदनुरूप आचरण। ऐसे आचरण वाला व्यक्ति उस गरिमापूर्ण मृत्यु का वर्णन कर सकता है जिसकी वो आकांक्षा करता है। लाला जी ने कहा था, मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है न कि दूसरों की कृपा से। उनका संदेश है कि मुसीबतों को हौसले से झेलो, इनसे घबराना अपने काम को बिगाड़ना है। संकट में ही मनुष्य की परीक्षा होती है।
1: विचार बिंदु के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे लाला लाजपत राय के विचार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं नीरज पांडे से अरविंद कुमार उपाध्याय की बातचीत। बातचीत का विषय है फल और सब्जियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व। लीजिए सुनिए।
1: किसान भैया, परंपरागत खेती किसानी से हट के थोड़ा बहुत और जौन खेती किसानी हो रही बाटे, विशेषकर फल और सब्जियन का, उसे कम से कम लागत में हम किसान भाई के हाथ में चार पैसा ज़्यादा आ जाता है। तो फल और सब्जियन का खेती बहुत महत्वपूर्ण है आजकल, लेकिन बात ये है कि अगर आधुनिक ढंग से, नई तकनीक से, नए कृषि यंत्रण के माध्यम से और उन्नतशील ढंग का बीज और साथे साथे ओकरे खातिर सूक्ष्म पोषक तत्व का उपयोगिता बाट है, ये सबके ध्यान में रख के अगर खेती किसानी कीन जाए तो निश्चित रूप से हमारे सभी के पैदावार भी बढ़िया मिले था और आमदनी भी ज़्यादा हो। तो फल और सब्जियन के खेती में सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोगिता बाट है, ये विषय पर आज अपने बीच में श्री नीरज पांडे भैया आए बाटें। ये कृषि विशेषज्ञ हैं, खेती किसानी के जानकार हैं, इनसे इनका अनुभव बांटा जाए, इनसे जानकारी लीन जाए, जोने से कि हम किसान भाइयों के ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सके। भैया आप बताएं कि जोन फल और सब्जी हैं इनमें पोषक तत्व कहाँ हैं और इनकर उपयोगिता का बताएं।
2: कुछ पोषक तत्व तो बहुत आवश्यक होते हैं पौधों में, जो कि बड़े जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, और भी एक दो होते हैं। इनके अलावा कुछ पोषक तत्व एकदम सूक्ष्म मात्रा में पौधे उपयोग करते हैं, आपकी फसल उपयोग करती है, जिसमें तांबा, जिंक, लोहा, जस्ता, मॉलिब्डेनम, बोरान, मैग्नीज जैसे छोटे छोटे पोषक तत्व हैं। काम तो इनका बहुत छोटा होता है, परंतु अगर ये नहीं होते हैं तो फसलों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है
1: जी।
2: तो इनमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे तांबा की, जिन्हें हम कॉपर भी कहते हैं। तो इनका कार्य फसलों में यह है कि जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इनके निर्माण में ये तांबा सहायक होता है और पौधों को और भी सहनशीलता प्रदान करता है और बहुत सारे

0: उनके आंतरिक कार्य होते हैं
1: जी जी
0: पौधों के, जैसे अपना भोजन बनाना या रोगों से लड़ना, ऐसे कई सारे काम होते हैं जो तांबा की कमी से प्रभावित होते हैं।
1: अच्छा, आप ये बताओ कि ये अपने फल या सब्जी में जो तांबा आप बताएं सूक्ष्म पोषक तत्व है, एकर कमी हो जाते तो हम किसान भाई लक्षण का है कि जान पावा जाए कि हाँ ये पोषक तत्व का कमी बाटे, एकरे बारे में थोड़ा आप बताओ।
0: पौधों में अगर तांबे की कमी होती है तो पहला लक्षण ये होता है कि नई पत्तियों का, जो एकदम अभी 2-4-10 दिन में आई होती हैं, उनका सिरा सड़ने लगता है।
1: अच्छा
0: और दूसरी बात कि पत्तियों का जो पैदावार होती है, जो बढ़न होती है, वो बढ़ना कम हो जाता है। और तीसरा ये कि पत्तियों में जो हरापन होता है वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है हरापन में।
1: अच्छा अच्छा
0: अच्छा, इसकी कमी से देखेंगे, अगर नींबू की बात करेंगे तो नींबू और आपका संतरा हो गया और माल्टा हो गया, ऐसे पौधों में डाईबैक एक रोग है जिसमें कि पौधा पीछे की तरफ से धीरे धीरे मरने लगता है पौधा।
1: जी,
0: और चुकंदर में देखेंगे तो इसका, चुकंदर का जो सिरा है वो थोड़ा सफ़ेद होने लगता है। ऐसे ही सेब में भी उसका, सेब का जो सिरा होता है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है।
1: जी
0: बाकी इन फलों का, फलों की जो खाल है वो भी खुरदुरी होने लगती है। तो
1: अब
0: इससे
1: दूसर बात
0: हम,
1: आई कि ये जौन है आप बताएं कि एकरी कमी से ये सब दिक्कत होत है फल में, तो ये निदान का है एकरे बारे में थोड़ा बताओ, कमी के हमरे किसान भाई कैसे दूर कर सकें।
0: कमी के लिए सीधे कि कॉपर सल्फेट नाम, जिसे आमतौर में नीला थोथा भी कहते हैं,
1: जी
0: वो 10 से 20 किलोग्राम पाउडर फॉर्म में आता है। तो 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूमि में जब जुताई होने लगे तभी छिड़काव कर दें, और इससे तांबे की कमी दूर हो सकती
1: ये
0: है।
1: हिसाब से अगर हम किसान भाई अपने फल और सब्जियन की खेती में कीन जाए तो निश्चित रूप से जौन तांबा है या जौन की कावर कहा जाता है उसे भैया अपने सूक्ष्म पोषक तत्व के पर्याप्त मात्रा में दे के हमरे सभी अपने फसल के बचावा जा सकत है, अपने फल के अपने सब्जी के बढ़िया पैदावार लिया जा सकत है। दूसर पोषक तत्व का है एकरे बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताओ।
0: दूसरा पोषक तत्व जिंक है हमारा, जिसे जस्ता कहते हैं।
1: जी
0: और ये मुख्य रूप से जो पौधों में विभिन्न तरह के एंजाइम बनते हैं उनको बनाने में ये सहयोगी की भूमिका निभाता है, उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। और साथ ही ये प्रकाश संश्लेषण के लिए, पौधों को भोजन बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और साथ ही नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो
1: जी
0: नाइट्रोजन का पाचन होता है, जो नाइट्रोजन वायु में है, पौधे उसे विभिन्न तरह के रूप में, दूसरे तरह के रूप में लेते हैं, तो
1: जी
0: उसके, उसमें ये हमें मदद करता है।
1: और एकरे कमी से कौन कौन लक्षण आवत हैं फल
0: इसकी
1: में।
0: कमी से, जिंक की कमी से आम, नींबू और लीची में पौधों में आप देखेंगे कि पत्तियां इसकी छोटी ही रह जाती हैं। पत्तियों की जो ग्रोथ है, जो पत्तियों की लंबाई चौड़ाई ये सब है, वो सामान्य नहीं होती, थोड़ी छोटी रह जाती है।
1: जी
0: और साथ ही आम, सेब और आड़ू, ये दो ऐसे फल हैं जिसमें एक रोजेट डिजीज़ है, रोजेट बीमारी आती है, वो देखने को मिलती है।
1: जी एकर निदान हम किसान भाई कैसे कीन जाए।
0: निदान के लिए हम जिंक सल्फेट नाम का एक नमक है, लवण है, जो कि आसानी से दुकानों पे मिल भी जाता है, वो 15 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। और जिंक सल्फेट 0.5%
1: जी
0: या 0.2% चूने की घोल, चूने के घोल में इसे बना के पत्तियों पर भी छिड़काव कर सकते हैं, इससे जिंक की कमी दूर हो जाती है।
1: अब तीसर पोषक तत्व तो आवत है लोहा।
0: लोहा,
1: लोहा की कमी से का होता है या कौन परेशानी हो सकत है हमारे सभी के फसलन में, कौन दिक्कत और कौन कमी हो सकत है एकरे बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं, और हम किसान भाई निदान कैसे करें एकर भी चर्चा आप कर दें।
0: लोहा भी मुख्यतः क्लोरोफिल, जो पौधों का हरा, पत्तियों में हरा तत्व है, उसके निर्माण में सहायक होता है। और पौधों में जो ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दो चीज़ है, इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसकी कमी से पत्तियों में देखी जाती है कि हरिमाहीनता, यानी कि पत्तियां जो हरी होती हैं वो धीरे धीरे पीली पड़ती हैं और
1: जी
0: भूरी हो जाती हैं, और इसके कारण पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। पौधों के मध्य में, पत्तियों में जो सिराएं होती हैं वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है उसका। और आयरन की कमी दूर करने के लिए 20 से 40 किलो

0: किलोग्राम फेरस सल्फेट मिट्टी में मिलाया जा सकता है, या 0.4% फेरस सल्फेट चूने के घोल में मिला के आप पत्तों पर भी छिड़क सकते हैं।
1: एक और सूक्ष्म पोषक तत्व है मॉलिब्डेनम, तो एकर काम का है और एकर लक्षण का है कि हमरे सभी ओके ठीक किया जा सके अपने फल में या सब्जी में डाल के, बताऊं।
0: मॉलिब्डेनम मुख्यतः दलहनी जो फसल हैं जैसे अरहर है, चना है, इनके लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर ये नहीं है तो, क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थायीकरण जो पौधों का एक कार्य है उसके लिए बहुत आवश्यक है, और जो दलहनी फसल हैं उन्हें नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। तो अगर मॉलिब्डेनम नहीं है तो नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। अच्छा, इसका मुख्यतः कमी का लक्षण ये है कि अगर फूल गोभी है तो फूल गोभी में देखेंगे तो आप लंबी लंबी विपटेल एक बीमारी है जो घोड़े की पूंछ की तरह ऐसे रेशेदार लगती है, और नींबू, जो नींबू और ऐसे खट्टे फल हैं
1: जी,
0: उनकी पत्तियों में पीला धब्बा पड़ने लगता है।
1: जी जी, तो एक निदान के खातिर हमरे सब ये किया जाए कि मॉलिब्डेनम की कमी के दूर करे के खातिर सोडियम मॉलिब्डेट के पर्याप्त मात्रा में छिड़काव करके भैया इसे बचा जा सकता
0: हाँ,
1: है।
0: 200
1: भैया नीरज पांडे जी, आप स्टूडियो में आयन और हम किसान भैयान के बहुत बढ़िया जानकारी दी हैं, हम सब इसे जरूर फायदा उठावा जाए। जानकारी देवे के खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: फल और सब्जियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व, इस विषय पर किसान भाइयों अभी आप सुन रहे थे नीरज पांडे से अरविंद कुमार उपाध्याय की बातचीत। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर मुकेश मालवीय की वार्ता, प्रातःकालीन भ्रमण से लाभ।
1: प्रातःकाल में उठकर भ्रमण करना शरीर और मन के लिए अति लाभकर है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना अर्थात सूर्योदय के पहले उठना बहुत ही फलदायक होता है। उस समय वातावरण शांत रहता है, ध्वनि पॉल्यूशन वायु पॉल्यूशन भी नहीं रहता। आजकल इस भाग दौड़ में देर रात तक सोने की आदत के कारण सूर्योदय के बाद देर से उठने से शरीर और मानसिक बीमारियों से मनुष्य घिरता चला जा रहा है। अति परिश्रम के बाद जो धन प्राप्त होता है उसका काफ़ी अंश चिकित्सा में खर्च हो जाता है। हमारे ऋषियों द्वारा निर्मित आयुर्वेद विज्ञान में यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि हमारा आहार विहार रहन सहन ऐसा हो कि बीमारी ही न हो तो चिकित्सा की क्या आवश्यकता है। शरीर और मन को स्वस्थ रखने की इस कड़ी में सूर्योदय के पूर्व उठकर भ्रमण करना लाभकारी है। सूर्य के उदय के पूर्व उठकर के नित्य क्रिया के बाद शुद्ध हवा में इस तरह भ्रमण करना चाहिए कि पसीना आने लगे। कहने का अभिप्राय यह है कि तेजी चलें बल्कि धीरे धीरे टहलें नहीं। इस समय धीरे धीरे श्वास लेते रहें और निकालते रहें। टहलने की क्रिया के से शरीर की सारी मांसपेशियां का व्यायाम हो जाता है, पेट ठीक रहता है, भूख लगती है, गैस नहीं बनती, मन प्रसन्न रहता है। जब शुद्ध हवा में लंबी लंबी सांस लेते हुए भ्रमण करते हैं तो स्वतः एक प्राणायाम की प्रक्रिया होती रहती है जो हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाती है। फेफड़े से गंदी वायु बाहर निकलती है जिससे फेफड़े की शक्ति बढ़ती है। फेफड़े की शक्ति बढ़ने से उसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है और रक्त की लाल कणी

0: कोशिकाएं सामान्य भाषा में कहा जाए कि हीमोग्लोबिन बढ़ता है अर्थात खून बढ़ता है। हमारे मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, अतः वहाँ भी ऑक्सीजन अधिक मिल जाने से मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, प्रसन्नता आती है, मानसिक रोग नहीं होते हैं। इस प्रकार शरीर की हर कोशिका का जीवन और स्वास्थ्य बढ़ जाता है। इसीलिए कई ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि श्वास की संख्या पर ही जीवन निर्भर है। आचार्य चरक ने यहाँ तक कह दिया कि जो हाथ में भिक्षा पात्र लेकर प्रतिदिन 5 कोस चलता है तो उसे डायबिटीज़ रोग नहीं होता। इसका अभिप्राय यह है कि जो श्रम करेगा, रूखा सूखा खाएगा और अहंकार रहित होकर के पैदल चलेगा तो रोग कहाँ से होगा। आदि शंकराचार्य, स्वामी दयानंद सरस्वती, चैतन्य महाप्रभु आदि लोगों ने पूरे भारत में भ्रमण किया। अमेरिका के दीर्घजीवियों ने रेनबोन, लुइस क्रमर, बेजनिम और विक्टर डेन आदि सभी ने पैदल भ्रमण करने पर बहुत जोर डाला है। लुइस क्रेमर तो 30 से 40 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलते थे। श्रीमती जोसेफ रिगल 160 वर्ष तक जीवित रहीं। आज भी कितने ही लोग इन विधाओं द्वारा स्वस्थ और दीर्घ आयु प्राप्त कर रहे हैं। स्वस्थ और मस्त रहने के लिए हमें अपनी जीवन शैली को बदलना ही होगा। मात्र माल कल्चर ही विकास नहीं है, असली विकास तो तब है जब कम से कम रोगी हों, जिससे कम से कम डॉक्टर और चिकित्सालय हों। तभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः की भावना पूर्ण होगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शरीर की क्षमता से अधिक भ्रमण न करें, क्योंकि अधिक श्रम से भी रोग उत्पन्न होते हैं। साथ ही धीरे धीरे भ्रमण की दूरी को बढ़ाएं। वृद्धावस्था में अपने साथ भ्रमण करने के लिए किसी एक व्यक्ति को साथी और बना लें।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मुकेश मालवी की वार्ता, प्रातःकालीन भ्रमण से लाभ। इसी के साथ आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, FM 100.3 मेगा हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:51 हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती सुनिएगा रात 9:30 बजे। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे।

उर्दू कार्यक्रम लेकर के आएंगे रोज की तरह सुबह 9:30 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिएगा शाम 6:50 पर। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ का आनंद लीजिएगा सुबह 7:00 बजे। 7:10 पर फिल्मों से भजन सुनवाए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित डीके दातार का वायलिन वादन सुनिएगा सुबह 7:30 बजे। दिन में 12:15 बजे विदुषी जया विश्वास का सितार वादन होगा। हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रीति मिश्रा के स्वर में गीतों का आनंद लीजिएगा सुबह 9:50 पर। शाम 7:45 पर कौशिका राय के स्वर में गीत सुनवाए जाएंगे। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम लोक माधुरी में दिन में 10:05 पर। कलाकार होंगे भरत लाल, रीता देवी और साथी। कुछ और लोकगीत सुनवाएंगे दिन में 2:30 बजे। स्वर होंगे राम प्रसाद, राम बाबू यादव।

0: पंचमलाल यादव और साथियों के। हमारे संग्रहालय से ये कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 10:30 बजे। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे वरिष्ठ लेखक और पत्रकार लक्ष्मीकांत वर्मा से दूधनाथ सिंह की भेंट वार्ता। एक ही कलाकार पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिन में 11 बजे। महिलाओं का कार्यक्रम पनघट लेकर के आएंगे दिन में 1:15 पर। इसके अंतर्गत माधुरी श्रीवास्तव से बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा आत्मनिर्भर महिला सशक्त गांव। साथ ही कामिनी श्रीवास्तव के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। धरती के गीत सुनिएगा 5:00। स्वर होंगे बरमदीन यादव और साथियों के। युवाणी कार्यक्रम में 5:15 युवजन सुनेंगे वार्ता। खेल जगत के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम। वार्ताकार होंगे ज्ञान प्रकाश। पंचायत घर कार्यक्रम होगा 6:30। इसके अंतर्गत परिवार कल्याण की बात होगी। साथ ही रघुराज सिंह यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य में लोक चेतना। रमेश कुमार शुक्ल की ये वार्ता सुनिएगा आज के हिंदी कार्यक्रम में 7:31 पर। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् परिष्काराः तस्य प्रशासनस्य कृते बाध्यता न अपितु प्रतिबद्धता दृढ़ विश्वासश्च। तेनोक्तं यत् प्रशासनस्य नीतयः जनकल्याणपराः विकासोन्मुखाः प्रगतिवर्धकाश्च सन्ति। ह्यः सायंकाले नवदिल्ल्यां इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम इत्येतत् मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् तस्य प्रशासनेन परिष्कारेभ्यः स्पष्टा योजना निर्मिता अस्ति, यस्यां प्राथमिकता शासनस्तरीय परिष्कारेभ्यः प्रदत्ता अस्ति। स उक्तवान् यत् देशस्य भविष्यं सुरक्षितं कर्तुं भारतं नीतिनिर्माणस्तरे नवपरिष्कारान् करोति।
2: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्त धारा की, सप्त शक्तियों की बात की है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् तस्य प्रशासनम् केवलम् नियमेषु परिवर्तनम् न करोति अपितु तेषां नियमानां पृष्ठे विद्यमानायाः सम्पूर्ण दृष्टेः परिवर्तनमपि करोति। सः उक्तवान् यत् पूर्वं नियमसम्बद्धदृष्टिः अनुमतिपर्यन्तं निषिद्धम् इति आसीत्, अधुना च प्रशासनं तां दृष्टिं परिवर्त्य निषेधपर्यन्तम् अनुमतम् इति दिशि अग्रेसरति। भारतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजितं ब्रिक्स पर्यटनमन्त्रिणाम् उपवेशनं ह्यः जयपुर घोषणापत्रं सर्वसम्मत्या स्वीकरणेन सम्पन्नम्। एतत् घोषणापत्रं ब्रिक्स सदस्य देशानां मध्ये पर्यटनक्षेत्रे सहयोगं सुदृढीकर्तुं कार्ययोजना प्रददाति। घोषणापत्रे सहयोगस्य प्रमुखक्षेत्राणि निर्दिष्टानि सन्ति। एतेषु पर्यटनक्षेत्रे कृत्रिमबुद्धेः उपयोगः, स्थायीपर्यटनपद्धतयः, कौशलविकासः, अबाधितयात्रायाः सौविध्यानि च सम्मिलितानि सन्ति। उपवेशनस्य अध्यक्षतां केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः राजस्थानस्य जयपुरे अकरोत्। अनेन सहैव अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजितस्य ब्रिक्स पर्यटन कार्यसमूहस्य अपि समापनम् अभवत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः पुनरुक्तवान् यत् अवैध प्रवासिनां विरुद्धं शून्य सहिष्णुता नीतिः निरन्तरं प्रवर्तिष्यते तथा अवैध प्रवासिनां परिचय निष्कासन निर्वासन संबद्धा प्रक्रिया

कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजना देवताओं की एक चाल थी जिसमें वे सफल हुए थे, किंतु शिव के तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव के भस्म हो जाने की घटना से देवगण एक बार फिर हतोत्साह हो गए। रति के रोने बिलखने से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसका पति कामदेव अब से अनंग होकर सभी प्राणियों को व्यापेगा। इस वरदान से देवताओं का मनोबल बढ़ा और ब्रह्मा तथा विष्णु समेत सभी देवता शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने अनंग के रूप में कामदेव को पुनर्जीवन देने के लिए शिव जी की प्रशंसा की। देवगण ने तब पार्वती के अपार तप का वर्णन करते हुए शिव जी से उन्हें पत्नी रूप में अंगीकार करने की प्रार्थना की। अपने आराध्य श्री राम के वचन याद करके शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। स्वर था मालिनी नाम्बियार का और संगीत सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्मों से भजन। कार्यक्रम का पहला भजन हमने लिया है फिल्म सूर्यपुत्र शनिदेव से। ये भक्ति रचना अनुराधा पौडवाल के स्वर में है।

अनुराधा पौडवाल के साथ दूसरा स्वर सुरेश वाडकर का है। रचना जगदीश की है और संगीत नंदू होनप का।

कार्यक्रम का अगला भजन हमने लिया है फिल्म सुबह से। पंडित नरेंद्र शर्मा के बोलों को सुरों में पिरोया है सुधीर फड़के ने, आवाज लता मंगेशकर की है।

0: इस भजन के साथ ही आवाज का फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। समाचार कुछ ही पलों में हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जापान की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। टूरिज्म एक्सपो जापान 2026 में हिस्सा लेगा उत्तर प्रदेश। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रदेश का दौरा करेगी जापान की टीम। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर किया 1 वर्ष। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा गंगा और घाघरा नदी का जलस्तर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जापान के पास इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस की एक असाधारण विरासत है और प्रदेश के पास अपने युवाओं की एक ऊर्जावान पीढ़ी है जो सीखने, सृजन करने और नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के युवा ऐसी स्किल और वर्क कल्चर सीखें जिसकी डिमांड टोक्यो सहित दुनिया भर में हो।
2: हमारी पार्टनरशिप की सफलता केवल बिलियंस ऑफ रुपीज के इन्वेस्टमेंट से नहीं नापी जाएगी, इसकी अगली सफलता मिलियंस ऑफ जॉब्स होगी, न्यू टेक्नोलॉजीज होगी, ग्लोबल प्रोडक्ट्स और आने वाली पीढ़ियों के लिए शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में दिखाई देगी। हमारा लक्ष्य है यूपी में बने प्रोडक्ट जापान सहित पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश आज एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट से लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। उन्होंने जापान की कंपनियों को यहां निवेश करने और बिजनेस स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। श्री योगी ने बताया कि इन्वेस्ट यूपी में एक डेडिकेटेड यामानाशी डेस्क स्थापित किया जाएगा जो यामानाशी सरकार और वहां के उद्योगों और निवेशकों के साथ निरंतर समन्वय करेगा। इससे पहले यूपी जापान हेल्थ केयर एंड केयर इकोनॉमी पार्टनरशिप के सेक्टोरल सेशन में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि जापान और भारत की क्षमताओं को जोड़कर हेल्थ केयर और केयर इकोनॉमी में एक बड़ा मॉडल तैयार किया जा सकता है। वहीं यामानाशी प्रीफेक्चरल असेंबली ऑफ जापान और उत्तर प्रदेश विधानसभा के बीच मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान के लिए एमओयू भी हुआ। इसके तहत दोनों विधानसभाओं के बीच म्यूचुअल विजिट्स, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज और एक्सचेंज एक्टिविटीज को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही दोनों

0: अपनी कार्यप्रणाली, प्रक्रियाओं और अनुभवों को साझा करेंगे। भारत में जापान के राजदूत ओनो केजी ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की सेमीकंडक्टर कमेटी की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के शामिल होने की संभावना पर भी चर्चा हुई। श्री केजी ने जापान की ओर से सेमीकंडक्टर सेक्टर में मौकों का पता लगाने के लिए प्रदेश में एक टीम भेजने की इच्छा जताई। वहीं श्री योगी ने कहा कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के इस अहम क्षेत्र में जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और राज्य की औद्योगिक क्षमताओं के बीच सहयोग की काफी संभावना है। साथ ही जापान के अनुरोध पर सितंबर माह में होने वाले टूरिज्म एक्सपो जापान 2026 में प्रदेश के शामिल होने पर भी सहमति बनी। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर विशेष कार्यक्रम अ डायलॉग विद द फ्यूचर आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी की मौजूदगी में जापान के यामानाशी प्रांत से आए 13 विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्यों ने लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल विद्यार्थियों का मिलन नहीं बल्कि दो संस्कृतियों, परंपराओं और देशों की युवा पीढ़ियों का मिलन है। उत्तर प्रदेश जापान निवेश बैठक के सिलसिले में इस समय जापान के उद्योग जगत के 200 से अधिक प्रतिनिधियों का दल प्रदेश की यात्रा पर आया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं।
1: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। एक रिपोर्ट।
2: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में परिचालकों के लिए अब सीधी भर्ती होगी। चारसाबाद निगम ने आउटसोर्स से भर्ती की प्रक्रिया बंद कर दी है। अब निगम 4,000 से अधिक परिचालकों की जल्दी ही भर्ती शुरू करेगा। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में सावन माह में कल तक 53,69,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि सावन खत्म होने तक ये संख्या करीब 80 लाख तक पहुंच सकती है।
3: 5.5 लाख का एवरेज हमारे पास सोमवार का है। 19 दिनों में 53,69,634 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अभी जो बचे हुए 9 है उनको मिलाकर आंकड़ा लगभग 80 लाख के आसपास पहुंचेगा, ऐसा हमारा आकलन है और यही आकलन शुरू में रख भी किया गया था। श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो मानक संचालन प्रक्रिया है SOP जो हमारा बनाया गया है उसी के अंतर्गत एंड टू एंड बैरिकेडिंग, खोया पाया केंद्र, मेडिकल हेल्थ काउंटर इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं की गई है।
0: उधर प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों और शिवालयों

में भी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में अगले 6 दिनों तक कई स्थानों पर बारिश और गरज चमक का दौर जारी रहने की संभावना है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा नदी तथा बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं फर्रुखाबाद में गंगा और लखीमपुर

यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जापान की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। टूरिज्म एक्सपो जापान 2026 में हिस्सा लेगा उत्तर प्रदेश। सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रदेश का दौरा करेगी जापान की टीम। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर किया 1 वर्ष। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा गंगा और घाघरा नदी का जलस्तर। इसी प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, एफएम पर 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित डी के दातार का राग अहिर भैरव में वायलिन वादन।

आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं नयन घोष, स्वरमंडल पर हैं राजन मशीलकर, तानपुरे पर हैं मदन भोगले और मधुकर दातार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित डीके दातार का राग अहीर भैरव में वायलिन वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे नयन घोष, स्वरमंडल पर थे राजन मशीलकर, तानपुरे पर थे मदन भोगले और मधुकर दातार। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: हम आपको याद दिला दें कि पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती होगा आज रात 9:30 बजे। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी के पन्नों को पलटता और पुराने दिनों की याद ताजा करता हमारा कार्यक्रम हमारे संग्रहालय से सुनिएगा दिन में 10:30 बजे। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे वरिष्ठ लेखक और पत्रकार लक्ष्मीकांत वर्मा से दूधनाथ सिंह की भेंट वार्ता।

आत्मनिर्भर महिला सशक्त गांव। ये वार्ता हम आपको सुनाएंगे आज के पनघट कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर।

खेल जगत में भारत के बढ़ते कदम, ये वार्ता युवा साथी सुनेंगे आज के युवावाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 बजे। वार्ताकार होंगे ज्ञान प्रकाश।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। समाचारों के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और अम्स्टरडैम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है।

0: तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
3: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम उनको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
1: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। यह सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7

0: केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वह अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.ue.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी इगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे

0: अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says reforms are not compulsion but a commitment and conviction for government, asserts its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSB for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur Declaration, focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against hosts Netherlands at Amstelveen this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion, but a commitment and conviction for his government, and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms, with the primary focus being on reforms at the governance level. He said India is undertaking next generation reforms at the policy level to secure the country's future.
3: हमने reforms को लेकर एक clear roadmap बनाया। इस roadmap की प्रमुख दिशा रही है governance level के reforms हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं।
2: The Prime Minister pointed out that his government is not merely changing regulations, but is changing the entire philosophy behind them. He said that earlier, the approach to regulations was prohibited unless permitted. Mr. Modi said the license raj under earlier governments contributed to unemployment, while his government's production-linked incentive model is creating new opportunities. The Prime Minister also spoke about the global economic environment, saying the weaponization of resources and growing mistrust were creating new challenges. He said that even in such circumstances, the world continues to see India as a bright spot of hope and growth.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों, रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: Union Home Minister Amit Shah has lauded West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari for handing over 1,129 acres of land to the Border Security Force and Sashastra Seema Bal for fencing along the India-Bangladesh border in the state within 45 days of the new government coming to power. He said the request for the land required for the border fence had been pending since 2014. Mr. Shah was speaking while attending a program at the Sashastra Seema Bal.

0: days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur Declaration, focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against hosts Netherlands at Amstel Wynn this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात मजबूरी नहीं है बल्कि हुकूमत के लिए एक अज़्म और यकीन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत की पॉलिसियां अवाम के मुआफिक और तरक्की पसंदाना हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने मगरबी बंगाल सरकार की इस बात के लिए तारीफ की है कि नई सरकार ने इख्तदार में आने के 45 दिन के अंदर भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाकर बीएसएफ और एसएसबी को 1129 एकड़ जमीन हवाले की। भारत और नेपाल ने सरहदी इंतजाम और सिक्योरिटी में बाहमी तावुन को मुस्तहकम करने के अजम का इरादा किया है। ब्रिक्स के सियाहत के वुजरा ने पायदार सियाहत, मसनूई जहानत को हम आहंग करने और बिला रुकावट सफर पर तवज्जो देते हुए जयपुर एलामिया मंजूर किया है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारत की जोड़ी चीन की जोड़ी से मुकाबला करेगी। और हॉकी आलमी कप में आज शाम नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन के मकाम पर भारत की मर्दों की टीम अपने दूसरे मरहले के मैच में मेजबान नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात मजबूरी नहीं है बल्कि हुकूमत के लिए एक अज़्म और यकीन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उसकी पॉलिसियां अवाम के मुआफिक और तरक्की पसंदाना हैं। कल शाम नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने सरकारी एतबार से इस्लाहात पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इस्लाहात के सिलसिले में एक वाज़ह खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए पॉलिसी सतह पर नए दौर की इस्लाहात कर रहा है।
2: हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया। इस रोडमैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े किया कि उनकी हुकूमत महज ज़ाब्ते तब्दील नहीं कर रही है बल्कि वो ज़ाब्तों की पूरी पॉलिसी ही तब्दील कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि साबिका हुकूमतों के दौर में लाइसेंस राज ने बेरोजगारी में इजाफा किया था जबकि उनकी हुकूमत के पैदावार से जुड़े तरगीबी मॉडल नए मौके पैदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी इक्तसादी माहौलियात के बारे में भी बात की और कहा कि वसाइल को आलायकार बनाना और बढ़ती हुई बदगुमानियां नए चैलेंजेस पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात में भी भारत को पूरी दुनिया में तरक्की के एक दरख्शां मकाम के तौर पर देखा जा रहा है।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: जनाब मोदी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने पेशगोई की है कि भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई बड़ी मईशत रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे इकदाम कर रहा है जो उसकी तरक्की को नई जहत दे रहे हैं। मुल्क की सतह पर इस्तेहकाम के गहरे आलमी असरात को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने इस बात पर जबरदस्त एतमाद का इजहार किया कि मुल्क की तरक्की के सफर को महफूज बनाकर बैनुल-अक़वामी बिरादरी के लिए फितरी तौर पर ज्यादा इस्तेहकाम लाया जा सकेगा। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी की इस बात के लिए तारीफ की है कि नई सरकार ने

0: सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात मजबूरी नहीं है बल्कि हुकूमत के लिए एक अज़्म और यकीन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत की पॉलिसियां अवाम के मुआफिक और तरक्की पसंदाना हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल सरकार की इस बात के लिए तारीफ की है कि नई सरकार ने इख्तदार में आने के 45 दिन के अंदर भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाकर BSF और SSB को 1129 एकड़ जमीन हवाले की। भारत और नेपाल ने सरहदी इंतजाम और सिक्योरिटी में बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया है। और ब्रिक्स के सियाहत के वज़रा ने पायदार सियाहत को हम आहंग करने और बिला रुकावट सफर पर तवज्जो देते हुए जयपुर एलामिया मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार प्रयागराज। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर प्रेमेंद्र और आज तारीख है 22 अगस्त। आज कैलेंडर पर एक बहुत ही अलग दिन है, जानते हैं क्या? वर्ल्ड प्लांट मिल्क डे। अब आप सोचेंगे ये कौन सा डे आ गया, दूध तो हम बचपन से पी रहे हैं, गाय का भैंस का, पौधों का दूध कौन पीता है? तो आज के इस कार्यक्रम में मैं इसी नए दूध की कहानी आपको सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी जो आपकी सेहत से जुड़ी है और हमारी धरती से भी। तो सबसे पहले वर्ल्ड प्लांट डे है क्या, इसकी बात करते हैं। इसकी शुरुआत 2017 में दो संस्थाओं ने की थी, प्रोवेज इंटरनेशनल और प्लांट बेस्ड न्यूज ने। मकसद सिर्फ एक था, लोगों को बताना कि दूध का मतलब सिर्फ जानवरों का दूध नहीं होता है, प्लांट मिल्क मतलब पौधों से बना दूध, जैसे बादाम मिल्क, सोया मिल्क, ओट्स मिल्क, नारियल मिल्क, काजू मिल्क। अब आप कहेंगे ये बनता कैसे है? बहुत सिंपल है भाई, बादाम को रात भर भिगोया, पानी के साथ पीसा, छाना और आपका दूध तैयार। हमारे दादी नानी तो ठंडाई में बादाम खसखस का दूध कब से बनाती आ रही हैं। तो ये कोई विदेशी चीज नहीं है, अपना ही आइडिया है। अब सवाल हम इसे

क्यों पिए हैं। तो इसके कई सारे कारण हैं हमें क्यों पीना चाहिए। सबसे पहली बात हमारी सेहत। एक रिसर्च कहती है कि भारत में 60-70% लोगों को गाय का दूध पूरी तरह पचता ही नहीं है। चाय पीते ही गैस, पेट भारी। प्लांट मिल्क में लैक्टोज होता ही नहीं है, जिससे ये समस्या होती है हमें। वो चीज जो हमारे प्लांट मिल्क है उनमें होता ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल भी जीरो। और ओट्स मिल्क तो फाइबर भी है जो दिल के लिए अच्छा होता है। अब दूसरा कारण पर्यावरण। एक आंकड़े के अनुसार 1 लीटर गाय का दूध बनाने में लगभग 1000 लीटर पानी लगता है और एक गाय एक दिन में 600 लीटर मीथेन गैस छोड़ती है, जो क्लाइमेट चेंज की बड़ी वजह है। वहीं बादाम या ओट्स मिल्क का कार्बन फुटप्रिंट लगभग 3 गुना कम है। मतलब एक गिलास बदलकर आप धरती बचा रहे हैं। तीसरा कारण क्या है भाई? स्वाद। स्वाद भी एक बड़ी वजह है ना। तो पहले लोग कहते थे प्लांट मिल्क बेस्वाद है, लेकिन अब नहीं है। आप शहर के किसी भी कैफे में जाइए, ओट्स मिल्क की कॉफी मांगिए। सिर्फ मिल्क की बात नहीं हो रही है, उससे जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जैसे हम जानवरों के दूध से जो चीजें बनाते हैं वैसी बनी चीज की ओट्स मिल्क की कॉफी मांगिए। इतनी क्रीमी लगेगी कि आप भूल जाएंगे ये किसी जानवर का दूध नहीं है। अब आप कहेंगे भाई महंगा तो बहुत होगा, बाहर 300 रुपए लीटर मिलता है। तो इसके लिए एक ट्रिक समझिए, घर पर बनाइए। 15 बादाम लीजिए, रात भर पानी में भिगो दीजिए, सुबह छिलका उतार कर एक गिलास पानी के साथ मिक्सी में 2 मिनट चलाइए, मलमल के कपड़े से छान लीजिए, आपका फ्रेश बादाम मिल्क तैयार। लागत सिर्फ 15-20 रुपए और ये 2 दिन तक फ्रिज में रखकर आराम से चल सकता है। तो आज वर्ल्ड प्लांट मिल्क डे पर मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं। हालांकि हमारे श्रोता बहुत काबिल हैं, वो सब कुछ हमारे कहने से पहले समझ जाते हैं, फिर भी एक गेम की तरीके से है कि 7 दिन का चैलेंज है ये, सिर्फ 7 दिन। दिन में एक बार अपनी चाय या कॉफी प्लांट मिल्क से बनाकर देखिए, आपका शरीर खुद फर्क बताएगा। तो दोस्तों याद रखिए, बदलना मतलब अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं है, बल्कि एक नया आयाम, एक नया विकल्प जोड़ना है। दूध वही है, बस सोच नहीं है, सोच नई है। तो कोशिश करिएगा इस नए प्रयोग को करने की भी, और देखिए कि क्या रिजल्ट निकल कर आपके सामने आता है और क्या फायदे आपको महसूस होते हैं। क्योंकि कुछ भी हो, इंसानों में, जानवरों में या दूसरी जो कुछ भी रचना है, सब में कुछ ना कुछ फर्क तो है। और जब उनको शरीर के साथ मिलाया जाता है, एक के साथ दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ों के साथ कुछ नेगेटिव चीज़ भी चली जाती हैं। जैसे कि देखा जा रहा है कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हो जाते हैं, उन्हें डॉक्टर्स घी दूध के लिए मना कर देते हैं। वजह कि हमारे शरीर को फायदे से ज़्यादा नुकसान होने लगता है। उस स्थिति में हम ये जो प्लांट मिल्क है इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर यदि हम इसको एक विकल्प के रूप में लेकर के चलते हैं, तो प्रकृति ने जो पोषक चीज़ें हमें दी हैं उन्हीं से हम इसको तैयार करते हैं, तो ये हमारे सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो सुबह का वक्त है, रिमझिम सावन की बूंदें गिर रही हैं और सुबह का व्यायाम भी

या जरूरी है, अगर व्यायाम बाहर निकल के आज नहीं हो पा रहा है तो थिरकिए इस गाने के साथ और अपनी सुबह की एक्सरसाइज भी पूरी कर लीजिए।

तो श्रोताओं, कल फिर होगी मुलाकात एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आज एक कप पौधों वाला दूध जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति अपने रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र को। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे अभय कांत तिवारी। नमस्कार प्रयागराज।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।

0: थोड़ी देर में फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा।
1: मेहमान आएंगे, हो सके।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
2: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
4: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
5: बेटा
6: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
5: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
7: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
5: चलो
4: कहाँ?
5: एडमिशन कराने,
7: खाता हुआ एक्टिव।
8: आरबीआई कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आगाज कर रहे हैं फिल्म परख के इस गाने से, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। शैलेंद्र के बोल हैं, धुन बनाई है सलील चौधरी ने।
10: ओ सजना।

अभी आपने सुना फिल्म चांदनी से ये गाना, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी शिवहरी ने, आवाजें थी सुरेश वाडकर और अनुपमा देश पांडे की। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं शैली शैलेंद्र के बोल, हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में, आवाज दिलराज कौर की है और फिल्म का नाम जान हाजिर है।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गाजियाबाद और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज शर्मा का।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गाजियाबाद कमिश्नरेट के 36 अधिकारी और कर्मचारियों को विभिन्न पदक और सम्मान चिन्हों से सम्मानित किया गया है। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड़ ने पुलिस कर्मियों को पदक प्रदान किए और उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना की। विजयनगर थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मपाल सिंह को राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक और पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह स्वर्ण मिला। कौशाम्बी थाना प्रभारी अजय कुमार शर्मा समेत कई पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। गृह मंत्रालय के अति उत्कृष्ट सेवा पदक से मुख्य आरक्षी विक्रम सिंह गिरी और संतराम सम्मानित हुए। वहीं कई पुलिस कर्मियों को गृह मंत्रालय का उत्कृष्ट सेवा पदक मिला। वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक पाने वालों में मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल समेत अग्निशमन विभाग के 10 अधिकारी कर्मचारी और सर्विस लांस सेल के मुख्य आरक्षी आदेश त्रिपाठी शामिल रहे। कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त ने सभी को सम्मानित पुलिस कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि उनके समर्पण और कर्तव्य निष्ठा से विभाग का गौरव बढ़ा है। गाजियाबाद में भोजपुर थाना अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में पनीर में मिलावट का बड़ा मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की टीम ने 3 पनीर फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की। जांच के दौरान पनीर को सफेद और वजनदार बनाने के लिए कपड़े धोने में इस्तेमाल होने वाला व्हाइटनर, पामोलिन ऑयल, दूध पाउडर और अन्य हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ। टीम ने तीनों फैक्ट्रियों से 868 किलो पनीर और 170 किलो खोया मौके पर ही नष्ट कराया। इसके अलावा केमिकल समेत 20 नमूने जांच के लिए लखनऊ की लैब में भेजे गए हैं। सहायक आयुक्त खाद्य सुरेश कुमार मिश्रा के मुताबिक फैक्ट्री संचालकों में कलवा, शकील और कफील के खिलाफ भोजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
2: जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीमों का गठन किया गया है। नहली में आपने देखा होगा भोजपुर थाने में भारी मात्रा में नकली पनीर बनाते हुए लोग पकड़े गए थे। उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ भी जांच, इस परिसर में 2 प्रतिष्ठान है और दोनों टोफू के लिए कृत है। जो कमियां पाई गई है उससे संबंधित जो भी प्रावधान है उसके उल्लंघन के आरोप में जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
1: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी हरनंदीपुरम योजना अब धरातल पर उतरने की ओर बढ़ रही है। करीब 500 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाली इस योजना की DPR तैयार हो गई है। योजना में सभी वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था होगी। इसमें प्लॉट के साथ गरीबों के लिए 10% EWS और कम आय वर्ग के लोगों के लिए LIG फ्लैट्स भी प्रस्तावित हैं। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। GDA के उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल के अनुसार अगस्त में होने वाली बोर्ड बैठक की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चरण में 48 हेक्टेयर क्षेत्र में योजना शुरू की जाएगी। इसके बाद सितंबर तक रेरा की मंजूरी मिलने पर योजना लॉन्च होने की उम्मीद है। पहले चरण में 2 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं शामिल होंगी। आने वाले चरणों में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। खास बात यह है कि हरनंदीपुरम में GDA का पहला गोल्फ कोर्स भी प्रस्तावित है। योजना में जमीन की नीलामी सितंबर के बाद शुरू की जाएगी। साथ ही परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के ऊपर भी जोर दिया जाएगा। टाउनशिप को ई बसों के जरिए नमो भारत और मेट्रो से जोड़ने की योजना है। गाजियाबाद में विदेशी संपत्ति, बैंक खातों, निवेश और वास्तविक आय की जानकारी छिपाकर आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले 150 से अधिक करदाता आयकर विभाग की रडार पर हैं। अधिकारियों के मुताबिक जहां जानबूझकर जानकारी छिपाने के प्रमाण मिलेंगे वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारों के अनुसार आयकर रिटर्न में विदेशी बैंक खाते, शेयर, अचल संपत्ति और कंपनी में हिस्सेदारी जैसी विदेशी परिसंपत्तियों की जानकारी देना जरूरी है। गलत जानकारी देने या संपत्ति छिपाने पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर में ITR दाखिल करने वालों की

0: क्या 22,70,000 से ज्यादा है। इनमें अकेले गाजियाबाद में 19 लाख से अधिक आयकरदाता हैं। वाहनों की कागजी आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की व्यवस्था अब खत्म होने जा रही है। शासन ने पुराने वाहनों के लिए भी स्मार्ट आरसी जारी करने का फैसला किया है। अभी तक स्मार्ट आरसी की सुविधा सिर्फ नए वाहनों के पंजीकरण पर मिल रही थी। एआरटीओ प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक नई स्मार्ट आरसी एटीएम कार्ड के आकार की होगी। पुराने वाहन मालिक अपनी कागजी आरसी को स्मार्ट कार्ड में बदलवा सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क जमा करने के बाद स्मार्ट आरसी डाक के जरिए वाहन मालिक के पंजीकृत पते पर भेजी जाएगी। स्मार्ट आरसी में इलेक्ट्रॉनिक चिप और क्यूआर कोड होगा। इससे वाहन का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, फ्यूल टाइप, मालिक का नाम, पता और बीमा संबंधी जानकारी डिजिटल और सुरक्षित रूप से दर्ज रहेगी।
1: गाजियाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का।
2: रामपुर में राज्य कर्मचारियों के कल्याण के लिए खेलों के विकास एवं शारीरिक संवर्धन के मकसद से सिविल सर्विसेज के जनपद स्तरीय चयन ट्रायल्स आयोजित किए गए। ट्रायल्स शहर स्थित शहीद आजम स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजित किए गए। चयन ट्रायल्स चयन समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चंद्र के समक्ष संपन्न हुए। शारीरिक दक्षता के तहत 100 मीटर एवं 400 मीटर दौड़, जंप, वॉल थ्रो तथा सिटअप्स आदि स्पर्धाओं में प्रतिभागियों का परीक्षण लिया गया। प्रदेश सरकार द्वारा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने का प्रयास रंग ला रहा है। प्रदेश के 108 आकांक्षात्मक विकासखंडों में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, सामाजिक विकास तथा आधारभूत अवसंरचना जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों में निर्धारित 50 इंडिकेटर्स पर काम किया जा रहा है। इन इंडिकेटर्स के प्रगति की नियमित समीक्षा और रैंकिंग के माध्यम से विकास खंडों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। इसमें जिले के सैदनगर विकास खंड ने आकांक्षात्मक विकास खंडों की जुलाई 2026 की रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। सैदनगर विकास खंड ने 70.03 अंक के साथ प्रदेश के 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जिलाधिकारी अजय कुमार वेदी ने बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों में स्वास्थ्य एवं पोषण को 30%, शिक्षा को 30%, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं को 20%, आधारभूत अवसंरचना को 15% तथा सामाजिक विकास को 5% का भारांक दिया गया। इन पांचों थीम के कुल 50 इंडिकेटर्स के आधार पर विकास खंडों का मूल्यांकन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में सैदनगर का प्रदर्शन भी प्रदेश में औसत से बेहतर रहा। जिले में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहर स्थित रंग महल परिसर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारत विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विस्थापन, संघर्ष और पीड़ा झेलने वाले परिवारों के त्याग एवं साहस को याद किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि भारत का इतिहास संघर्ष, त्याग और बलिदान की गाथाओं से भरा हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जनपद में तिरंगा पदयात्रा रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत शहर विधायक आकाश सक्सेना द्वारा अन्य जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में की गई। तिरंगा पदयात्रा में जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश सरकार की जन सुनवाई और पारदर्शिता की फ्लैगशिप योजना एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली की ताज़ा प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जनपद ने सुशासन का नया कीर्तिमान रचा है। जिला प्रशासन ने 130 में से 124 अंक अर्जित करते हुए पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। जिले में समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के जरिए 5,100 से अधिक जन शिकायतों का समाधान कर जनता का भरोसा जीता गया। जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि एवं कृषि अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने अन्य जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ गांधी समाधि स्थल पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर राष्ट्रपिता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। अपने संबोधन में राज्य मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर हम सभी देश के महान वीर एवं अमर

0: बलिदानी सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके शौर्य, पराक्रम, बलिदान, त्याग, निष्ठा और राष्ट्र प्रेम का इतिहास हमें गौरवान्वित करने के साथ ही देश प्रेम एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रेरित करता है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में ये देश गान।

अभी आप संवेद सुरों में ये देशगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम
1: समीने बज़्म अदब की खिदमत में मेजबान बज़्म रबाब अंजुम का सलाम सुबह पेश है, कबूल करें। समीन आज उर्दू के जाने माने शायर और कसीदा निगार जनाब इब्राहिम ज़ौक का यौम विलादत है। इस मौके पर आपके लिए पेश है

और बस फिर इस दिन से ज़ौक जुरतमंदी और हिम्मत से अपनी गजलें मुशायरों में पढ़ने लगे और रफ्ता रफ्ता अपनी मेहनत और लगन से ऐसे शायराना अजमत हासिल की कि सिर्फ इल्मी और अदबी हलकों में ही इनका चर्चा नहीं हुआ बल्कि इस तरह इनकी रसायत कलाए मौला तक हो गई और फिर कले के अंदर और बाहर हर जगह जौक की शोहरत का डंका बजने लगा। यहां तक कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उनको अपना कलाम बनजर इस्लाह दिखाने लगे। जौक ने किले में दखूल के बाद बेशुमार कसाइद अकबर शाहसानी की शान में कहे। बदले में उनकी जानिब से जौक को खाकानी हिंद के खिताब से नवाजा गया, जिसकी तफसील में आब हयात में मौलाना आजाद लिखते हैं कि जौक ने एक कसीदा अकबर शाह के दरबार में सुनाया, जिसके मुख्तलिफ अशार में अनवाओ अकसाम के सनाए बदाए इस्तेमाल किए गए थे। इसके अलावा एक एक जुबान में एक शेर था और उनकी तादाद 18 थी। अकबर शाहसानी के इंतकाल के बाद जब बहादुर शाह जफर तख्त नशीन हुए तो उन्होंने इब्राहिम जौक को मलिकुश्शुअरा के खिताब से सरफराज फरमाया और शुरू में जौक के लिए 4 रुपए माहाना वजीफा मुकर्रर किया, जिसे बाद में बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। जौक के तमाम कसाइद अकबर शाह सानी और बहादुर शाह जफर की मदह में है। हां, बस एक कसीदा आशिक निहाल चुश्ती नामी बुजुर्ग की मदह में है। जौक के कसाइद की तादाद तकरीबन 30 है। शेख इब्राहिम जौक सिर्फ उर्दू के गजल को या कसीदा गो शायर ही नहीं थे, उन्होंने जुमला असनाफ सुखन, कता, मुसलस, रुबाई, मुखम्मस, मुसद्दस, मसनवी, वासोख, नज्म और तारीख वगैरह में भी तबा आजमाई की। इसके अलावा उन्हें अरबी, फारसी के अलावा मुतअद्दिद उलूम जैसे मौसीकी, नजूम, तिब, ताबीर ख्वाब, मंतक, फलसफा, फिका, तसव्वुफ, तफसीर, हदीस, तारीख और मौसीकी वगैरह पर भी काफी दस्तरत हासिल थी। बकौल ज़ौक, किस्मत से ही मजबूर हूँ ऐ ज़ौक वगरना, किस्मत से ही मजबूर हूँ ऐ ज़ौक वगरना, हर फन में हूँ मैं ताक मुझे क्या नहीं आता।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं प्रीति मिश्रा। इनके स्वर में लीजिए सुनिए तुलसीदास जी की ये भक्ति रचना।

इस भक्ति रचना के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमारी आज की कलाकार थी प्रीति मिश्रा। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के लिए राज्य सरकार की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास शिक्षा कौशल रोजगार उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने बताया है कि संशोधित नियमों के तहत इस महीने की 20 तारीख तक कुल 29 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव शामिल हैं। ये निवेश सूचना प्रौद्योगिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूचना और संचार विनिर्माण फार्मास्यूटिकल डेटा केंद्र और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्रों के लिए हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। यह सीमा 1 अगस्त से 30 नवम्बर तक लागू रहेगी। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग कल नई दिल्ली में अपना 32वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस कार्यक्रम में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले उपस्थित रहेंगे। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम सिक्किम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ बिहार छत्तीसगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख ओडिशा पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टलफेन में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगापथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। अम्स्टलफेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के अपने पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए भरत लाल और साथियों के स्वर में ये लचारी।

अभी आपने भरतलाल और साथियों के स्वर में ये खेमटा सुना। कार्यक्रम लीजिए, अब सुनिए रीता देवी के स्वर में ये देवी गीत।

अभी आपने रीता देवी के स्वर में ये झूमर सुना। इसी के साथ आज का लोक माधुरी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे संग्रहालय से। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं वरिष्ठ लेखक व पत्रकार लक्ष्मीकांत वर्मा से

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे संग्रहालय से। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं वरिष्ठ लेखक व पत्रकार लक्ष्मीकांत वर्मा से दूधनाथ सिंह की भेंटवार्ता। लीजिए सुनिए।
1: आजादी के तुरंत बाद सन 1949 में इलाहाबाद ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी की संस्थापना हुई। यह एक महत्वपूर्ण वर्ष था। उन दिनों हमारे वीडी केसकर, जो साहित्य और संस्कृति में बहुत ही रुचि रखते थे, वे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। उन्हीं के ज़माने में यहाँ आकाशवाणी की स्थापना हुई। इलाहाबाद शहर को एक ख़ास ढंग से चुना गया क्योंकि साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए यह शहर बहुत दिनों से, हमेशा से मशहूर रहा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज़ादी के तुरंत के वर्षों में यहाँ आकाशवाणी की स्थापना हुई। साहित्य, संस्कृति और आकाशवाणी के आपसी तालमेल के लिए, और इस तरह से संस्कृति और साहित्य को एक प्रकार से बढ़ावा देने के लिए ही इलाहाबाद को विशेष तौर पर चुना गया। आज सन 1999 में हम इलाहाबाद आकाशवाणी की स्थापना के 50वें वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं और यह स्वर्ण जयंती वर्ष है। इस समय मेरे साथ स्टूडियो में हिंदी के वरिष्ठ कथाकार, कवि, आलोचक और संस्कृति कर्मी, नाटककार श्री लक्ष्मीकांत वर्मा उपस्थित हैं। श्री लक्ष्मीकांत वर्मा का आकाशवाणी और हिंदी साहित्य, इन दोनों के मेल मिलाप और अंतर्गुम्फित करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर उनसे यह जानना चाहूँगा कि जब शुरू शुरू में यहाँ आकाशवाणी की स्थापना हुई तो यहाँ के साहित्यकार और लेखक और आप सब लोग कैसे आकाशवाणी से जुड़े और यहाँ की समृद्ध संस्कृति को आकाशवाणी के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुँचाने का काम किया।
2: दूधनाथ जी, ऐसा है कि जब यहाँ आकाशवाणी की स्थापना हुई तो एक तो बहुत कम पावर का स्टेशन यहाँ दिया गया, फिर भी उस ज़माने में एक आंदोलन चल रहा था कि हिंदी के लेखक आकाशवाणी का बायकॉट करेंगे, लेकिन 49-50-51 के भीतर बालकृष्ण राव, जो इसके डायरेक्टर जनरल भी हुआ करते थे, उनके प्रयास से हिंदी लेखक इससे जुड़े। और सबसे पहले तो श्री सुमितानंद पंत और नरेंद्र शर्मा ने उनके आमंत्रण को स्वीकार किया और दिल्ली में नरेंद्र शर्मा ने हिंदी कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता, प्रोड्यूसर के रूप में वहाँ उपस्थित हुए। और यहाँ श्री सुमितानंद पंत हिंदी कार्यक्रमों के सलाहकार और प्रोड्यूसर के रूप में उपस्थित हुए।
1: यहाँ पर जब पंत जी एमेरिटस प्रोड्यूसर के रूप में आए तो पंत जी तब तक हिंदी के एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। उन्होंने और आकाशवाणी के केंद्र निदेशक जो भी रहे हों, उन्होंने मिलकर यहाँ के कार्यक्रमों की रूपरेखा में किस तरह के परिवर्तन किए या क्या

0: क्या नई उद्भावनाएं की, इसके बारे में मेरा ख्याल है कि आपको बहुत गहरी जानकारी होगी।
1: ऐसा है कि एमेरिटस प्रोड्यूसर तो होके बाद में आए, वो जब रिटायर किए यहाँ से, पहले तो वो सलाहकार और प्रोड्यूसर ही के रूप में थे, एडवाइज़र के रूप में सारे हिंदी कार्यक्रम के। तो उन्होंने यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये की कि इस माध्यम को, आकाशवाणी के माध्यम को और ख़ास करके माइक के माध्यम को और हिंदी के कार्यक्रमों में एक तालमेल बैठाने की कोशिश की। पहले लोग, इसके पहले सारी जो सारे कार्यक्रम होते थे आकाशवाणी दिल्ली से भी यहाँ से भी, उनमें उर्दू की प्रधानता होती थी और उर्दू भाषा ही सबसे बड़ी भाषा मानी जाती थी और ऐसा लगता था कि वही भाषा है जिसमें कि कोई कार्यक्रम किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी देन तो यह है कि हमारे पंत जी ने यहाँ आ करके हिंदी भाषा की गौरव की प्रतिष्ठा की और उन्होंने कहा और करके दिखाया कि हिंदी भाषा उर्दू भाषा से किसी बात में कम नहीं है। वैसे दोनों भाषाएं एक हैं, लेकिन जब सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर करेंगे हम, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कि हिंदी का तत्सम रूप और हिंदी का जो सांस्कृतिक रूप है वो आएगा और वो थोड़ा अलग होगा। पंत जी ने उसकी प्रतिष्ठा की। स्वरवेला कार्यक्रम हिंदी साहित्य का उन्हीं की देन है और उस स्वरवेला में कविताएं पढ़ी जाती थी और हर कवि अपनी कविता की व्याख्या स्वयं प्रस्तुत करता था। आज तो शायद वो परंपरा नहीं है, आज तो कविताएं पढ़ी जाती हैं और पढ़ करके उसमें कोई व्याख्या नहीं होती उसकी, लेकिन स्वरवेला की विशेषता ये थी कि हर कवि अपनी साहित्यिक कविता पढ़ता था और उसके पीछे उसके साथ एक विवेचन देता था कि मैंने ऐसा क्यों लिखा और ऐसा लिखने के पीछे हमारी दृष्टि क्या है, कहाँ तक आधुनिक है, कहाँ तक वो हमारी सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो ये परंपरा पंत जी ने यहाँ शुरू की। उसके बाद यहाँ के जो स्टेशन डायरेक्टर आए, इत्तेफाक ऐसा था कि जितने स्टेशन डायरेक्टर आए, कुछ को छोड़ करके, दो एक को छोड़ करके, वो सब साहित्यिक रुचि के रहे। गोपाल दास जी थे, प्रताप कृष्ण जी थे, कृष्णमूर्ति थे और उसके बाद गिरजा कुमार माथुर थे, ये सब लोग साहित्यिक रुचि के थे और अपने अपने ज़माने में एक किसी विधा में बहुत अच्छा काम करते थे। हीलाचंद जोशी यहाँ के साहित्यिक कार्यक्रम के प्रोड्यूसर थे, होकर के आए। श्री नरेश मेहता भी यहाँ प्रोड्यूसर रह चुके हैं, ब्रजभूषण अग्रवाल रह चुके हैं।
0: बाद के दिनों में कुछ दिनों तक कमलेश्वर और मारकंडे
1: भी यहाँ पर यहाँ के वॉयस थे और प्रोड्यूसर थे। केशव चंद वर्मा थे ही ग्राम पंचायत में। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो इस इलाहाबाद रेडियो स्टेशन का ये सौभाग्य था कि इतने सारे हिंदी साहित्यकार पंत जी के साथ इस रेडियो स्टेशन से जुड़े और उस भ्रम को दूर किया उन्होंने कि हिंदी में वो सामर्थ्य नहीं है जो जन जन की तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए एक सशक्त भाषा बन सके।
0: जब मैं शुरू में यहाँ पढ़ने आया और उसके बाद कुछ आपके संपर्क और परिमल के संपर्क से कुछ कविताएं लिखनी शुरू की, तो उन दिनों भी स्वरवेला में जो कार्यक्रम बिल्कुल नए लोगों के प्रसारित होते थे, उनमें मुझे भी सौभाग्य मिला और बाद में भी मिला, तो तब वह सब व्याख्या पाठ ही होता था और वह एक बहुत अच्छी परंपरा थी। और काव्य पाठ के तो अब अनेक रूप इस वक्त यहाँ इलाहाबाद आकाशवाणी में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन आप स्वयं में एक बहुत अच्छे रेडियो नाटक और मंचीय नाटक आपने बहुत सारे लिखे हैं और रेडियो के लिए आपने, इलाहाबाद आकाशवाणी के लिए आपने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले जो जिनका आधार सिर्फ स्वर होता है, श्रोता तक सिर्फ स्वर पहुंचता है और स्वर के आरोह अवरोह से ही भावनाओं की अभिव्यक्ति और दूरी और पूरा

0: एक मंच का खाका दिमाग में बनता है। तो शुरू शुरू में जब और बाद के दिनों में भी आपने के बहुत सारे नाटक यहाँ से प्रसारित हुए, तो उनके बारे में हमें अपना कुछ अनुभव बताएं।
1: ऐसा है कि मुझे एक घटना याद आती है, मामा वरेकर इलाहाबाद आए हुए थे, उनका जेल में उन्होंने एक नाटक लिखा था सीता सीता के ऊपर, और एक नाटक और था उनका जिसको उन्होंने वो सम्मान और पुरस्कार का वो नाटक था, उसमें कहानी थी। यहाँ से वो ब्रॉडकास्ट नहीं हुई, लेकिन हम घटना आपको बता रहे हैं कि उससे मुझे क्या प्रेरणा मिली। उसमें यह था कि एक लेखक है और उसका बड़ा सम्मान होता है, और शहर में साहित्यिक संस्थाएं उसे बुलाती हैं सम्मान करने के लिए। अब वो है और उसकी एक लड़की है सिर्फ, और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रिक्शे का किराया दे करके और सम्मान समारोह में जा सके। सम्मान समारोह वाले आते हैं और उसको ले जाते हैं अपने सवारी पर बैठा करके, और सम्मानित करके माला वाला पहना करके भेजते हैं, और गाड़ी पर बैठा देते हैं उसके रिक्शे पर, वो घर चला आता है। अब घर पर आने के बाद उसके पास पैसा नहीं है कि रिक्शे वाले को दे, तो उसकी पुत्री जब देखती है तो वो रोने, वो लेखक जो है रोने लगता है, तो वो रोता नहीं है, वो सिर्फ अपना हाथ यूँ करके ऐसे कर लेता है। तो मैंने कहा कि तो इसमें रोने का कैसे आपने अभिनय दिया होगा, कहा केवल आँख ही नहीं रोती, कभी कभी हाथ भी रोता है। तो मतलब ये है कि आंगिक अभिनय में जो हाथ रोता है तो आकाशवाणी के माध्यम से वाणी के स्वर से वाणी भी तो रो सकती है, और वही हाथ रो रहा है उसका अभिनय मूक स्वर में कैसे दिया जाएगा आकाशवाणी में। ये हमारे घट्टी में पड़ गया था कि माध्यम के अनुसार अगर हाथ रो सकता है, अगर तलवार चल सकती है, तो ज़बान से भी तलवार चल सकती है, उसका सारा प्रभाव दिखाया जा सकता है। तो माध्यम की पहचान इलाहाबाद रेडियो स्टेशन में पहले पहल हमें यहीं से मिली, और उसका उपयोग किया, उसका उपयोग इस माने में किया कि मैंने जितने भी नाटक लिखे उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसको मंच पर फिर से उसको रूपांतरित किया जा सके। इस माध्यम में जो फ्लैशबैक का सिस्टम है, जो साइड बात की बात है, जो एक अतीत का है, एक भविष्य का सपना है, फैंटेसी है, ये सारी चीज़ें इस माध्यम से सरल हो जाती हैं। इसलिए जो भी नाटक लिखे हमने उन नाटक में इन सारी देश और काल और समय की जो यूनिटी है यह एक साथ हमें करने को मिला। इसलिए जितने नाटक यहाँ से लिखे गए उनकी विशेषता यही थी कि उनमें इसका ध्यान रख करके माध्यम के अनुसार लिखे गए।
0: कुछ नाटकों के नाम आप बताएं।
1: हाँ, यह सौभाग्य रहा इस स्टेशन का कि यहाँ गोपाल दास ऐसे स्टेशन डायरेक्टर हुए, गिरजा कुमार माथुर जैसे स्टेशन डायरेक्टर हुए। ये लोग, इन लोगों को कोई संकोच नहीं होता था किसी भी अच्छी स्क्रिप्ट में खुद एक वॉयस के रूप में, एक स्वर के रूप में काम करने में। और आपको आश्चर्य होगा कि गोपाल दास ने तो अंधा युग में अश्वत्थामा की भूमिका अदा की थी, और इस दृष्टि से वो पहली प्रस्तुति अंधायुग की है, उसमें गोपालदास की भूमिका अब भी लोग याद करते हैं, अश्वत्थामा की भूमिका। आप जानते हैं अश्वत्थामा का कितना महत्वपूर्ण रोल है और हो सकता है। इसी प्रकार मैंने लिखा एक मटिया ब्रिज की आखिरी शाम, नवाब अजली शाह के मटिया ब्रिज में भेज दिए गए थे। अब ये हुआ कि वो नाटक प्रोड्यूस किया जाए, तो उसके लिए बुलाए गए SS ठाकुर साहब, और एक हफ्ते तक उन्होंने यहाँ रिहर्सल कराया सारे कलाकारों का। उनके रिहर्सल कराने का तरीका भी बड़ा विचित्र था, वो एक एक आर्टिस्ट को बुला करके अपने बूथ में, और वहाँ उसको बताते थे

0: और उसके बाद वो सब मिल करके उसके बाद उसके उसका रिहर्सल करते थे, होता था। और वो नाटक आज भी यहीं पर मैंने लिखा, जयदेव के ऊपर एक नाटक, यहाँ पर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थी महिला अशोका घोष, उन्होंने उसमें पद्मावती का रोल किया। इतना बढ़िया रोल और इतने डायमेंशंस में उसकी वॉयस थी कि आप समझिए सुनने वाले जो थे वो चौंक जाते थे कि आवाज़ इधर से आ रही कि उधर से आ रही है। हैं, इसी प्रकार देख आकाशदीप का जब मैंने रूपांतरित किया तो उसके लिए नया इफेक्ट बनाएगा। आजकल मैं नहीं जानता कि कोई नया इफेक्ट इस तरह से बनता हो। तो यहाँ के हेमंत थे प्रोड्यूसर,
1: उन दिनों ध्वनि प्रभावों को कैसे तैयार करते थे? हाँ,
0: ध्वनि प्रभावों का ये था कि वो एक्चुअली नए क्रिएट किए जाते थे, घिसे पिटे प्रभाव नहीं होते थे ध्वनि प्रभाव। आकाशवाणी में आकाशदीप में बढ़ी हुई गंगा, ये गंगा जमुना में हेमंत गए थे और नाव पर बैठ करके उन्होंने हाहाकार गंगा जमुना का था, बरसात का, बाढ़ का, उसमें इफेक्ट लिया था। नाव की तरी का, नाव के किसी चीज़ के डूबने का, किसी चीज़ के आवाज़ का, इन सारे डायमेंशंस को वहाँ से लेकर के आए थे। वो हुआ था, आज वो मेहनत नहीं होती। एक सबसे बड़ी बात थी उन दिनों कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स होते थे वो टैलेंट्स की तलाश करते थे। आपने कहा कि आपने पहले पहले यहाँ कविता पढ़ी, आपको याद होगा कि आपके पास कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जो भी रहा होगा वो गया हुआ।
1: गिरिजा कुमार जी ने भेजा था,
0: हाँ,
1: कि एक नया लड़का है उसको पकड़ के लाओ।
0: हाँ,
1: और पहली बार उन्होंने मेरी कविताएं यहाँ से रिकॉर्ड करवाई,
0: हाँ,
1: और उसको ब्रॉडकास्ट किया।
0: हाँ,
1: तो मुझे तब 25 रुपये या 40 रुपये,
0: हाँ, 25 रुपये,
1: 25 रुपये मिले। तो उन दिनों 25 रुपये बहुत होते थे। तो इस तरह से ये तो ज़रूर था कि नए से नए और जो बहुत ही स्थापित साहित्यकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं, सबको इकट्ठा किया जाता था। ये जो जो वार्ता में जो परिचर्चाएं हैं या जो समीक्षाएं हैं, या बाद में चलकर अब आप जानते हैं साहित्यिकी नाम का एक कार्यक्रम चलता है, या बीच में एक कार्यक्रम बहुत अच्छा शुरू हुआ था प्रकाश स्तंभ करके, जिसमें किसी एक लेखक की एक ही कृति पर 5 दिनों तक लगातार प्रसारण होता था, 5-5 मिनट का। तो ये वार्ता में जो परिचर्चाएं और समीक्षाएं और आलोचना और विषयों के चुनाव, ये आपको कुछ याद है कि किस तरह से ये
0: बहुत बढ़िया होती थी? और उसमें मुझे याद है 2-3 परिचर्चाओं का, इलाचंद जोशी, भगवती चरण वर्मा, अमरीलाल नागर, उसके तो रिकॉर्ड जहाँ मौजूद हैं वो तो किताबों में छप गए हैं। इस तरह आगे और मैं उसमें था, भारती थे और पंत जी थे, इस तरह के भी हुए हैं। तो एक जो बड़ा राइटर है, बड़े राइटर के साथ साथ जो चर्चाएं होती थी, वो विषय जब शेड्यूल किया जाता था, डिस्कस किया जाता था, उस लेखक के पास जाया जाता था, उसको बुलाया जाता था, लेखकों को, और ये प्रोग्राम हम करना चाहते हैं, ये डिस्कशन इसका होता था, और तब उसके बाद वो प्रोग्राम, और पूछा जाता था कि इसमें कौन कौन से लोग बुलाए जाएँ और कौन कौन से लोग हों, फिर उन सबका लिस्ट लेकर के तब प्रोग्राम शेड्यूल। अब तो पता नहीं शेड्यूल कैसे बनता है, पहले तो बड़े कागज़ पर सारा शेड्यूल बना करके और फिर उसको डिस्कस करके उसमें वो करके और तब वो भेजा जाता था। होलिस्टिक प्रोग्राम होता था, गांव का प्रोग्राम है तो होलिस्टिक है, गांव की पूरी लाइफ इसमें आएगी। गांव में संगीत भी है, गांव में नौटंकी भी है, गांव में होली भी है, दिवाली भी है, गांव में मरना भी है, जीना भी है, खाद भी है, खेत भी है, बैल भी है, इनकी दवा और उपचार भी है, ये पूरा का पूरा उसके साथ आता था। रामायण का पाठ भी है, हैं? तो ये सारी चीज़ें आज ग्राम पंचायत को सिर्फ खाद तक नहीं सीमित किया था, खेती तक नहीं सीमित किया था, उसका पूरा होलिस्टिक रूप सामने रखा था।
1: ये इलाहाबाद जो है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि बड़े जो क्लासिकल संगीतकार हैं, अलाउद्दीन खां से लेकर अली अकबर और सारे के सारे लोग, वो इस शहर से उनका संगीत बहुत कुछ जुड़ा रहा है। उनके प्रथम इस तरह के कई हुए हैं।

0: इस आकाशवाणी में संगीत के लिए जो कार्यक्रम हुए, जिस तरह से संगीत का प्रसारण हुआ, उसके बारे में आपको कुछ
1: हाँ
0: अंदाज़ा है?
1: यहाँ के संगीत के कार्यक्रम में एक तो पहले आप ये समझ लीजिए कि केसकर के ज़माने में सिर्फ तार वाद्य जो थे उन्हीं वही स्वर साधन के रखे गए, और मितात्कर जी, श्रीमती मितात्कर थी, वो उनको अभी अवार्ड भी मिला है, वो इसकी म्यूज़िक की प्रोड्यूसर थी, और एडवाइज़र जो भी रही हूँ, तो यहाँ से हारमोनियम निकाल दिया गया था। अब वो जो तार वाले वीणा के आधार पर या तानपुरे के आधार पर जो संगीत यहाँ बना है और जिस संगीत के प्रोग्राम हुए हैं, उनका एक अद्वितीय पूरे हिंदी इसमें, क्योंकि वैदिक स्वरों में शुद्ध जो माना गया है वो तार वाद्य ही माना गया या बांसुरी मानी गई है, यही दो हैं, और उसी को मतंग ने भी अपने संगीत रत्नाकर में, और बड़े बड़े जो संगीतकार भी हैं सबों ने, आचार्य बृहस्पति ने भी उसी को माना है। तो ये हारमोनियम की वजह से बड़ी शुद्ध जो स्वर है वो नहीं मिल पाता था, तो उस ज़माने में रसूलन भाई यहाँ से उन्होंने गाया, उस्ताद अलाउद्दीन खां, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो आते थे यहाँ, प्रोग्राम देते थे,
0: बिस्मिल्लाह खान जी,
1: बिस्मिल्लाह
0: अभी बात था, कभी हाल
1: था, हाँ हाल था, और यहाँ के गौरी शंकर पंडित तो मशहूर ही हैं, और यहाँ के पटना के वो पंडित सीताराम तिवारी, क्या नाम उनका है, वो उनका क्लासिकल म्यूजिक सब यहाँ से हुआ है। पहले यहाँ क्लासिकल म्यूजिक ओपन में होता था, स्टूडियो में आए रिकॉर्ड करके चला गया, ये नहीं होता था, नाटक स्टेज पर होता था। जगदीश चंद माथुर का सबसे बड़ी देन ये थी कि वो चाहते थे कि माइक और स्टेज इन दोनों को मिला करके प्रभाव आए, और इसलिए यहाँ कभी कभी स्टेज होते थे। अश्क जी का अंजो दीदी, हमारा ख्याल है बेस्ट प्रोडक्शन यहाँ का हुआ था अंजो दीदी में, और हीरा चड्ढा ने अंजो दीदी का रोल किया था, और उसमें वो शुद्ध रेडियो का नाटक है, लेकिन संजवाती, पहले तो संजवाती और प्रभाती

0: संजवाती, पहले तो संजवाती और प्रभाती, इसके लिए गीत लिखाए जाते थे और वो बदल बदल करके एक ही नहीं बजता था, संजवाती के दीप अलग होते थे, उसके गीत अलग होते थे। ये सारा प्रोग्राम जो था, पूरी व्यवस्था थी, संगीत को भी होलिस्टिक रूप में रखने की चेष्टा की थी।
1: हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर कि ये जो आकाशवाणी या रेडियो के साथ साथ अब एक दूरदर्शन जो कि एक दृश्य माध्यम भी है, श्रव्य माध्यम के साथ साथ वो दृश्य माध्यम है और त्रिआयामी है कुल मिला के, तो एक तो ये है कि उसके बरक्स उसको देखते हुए आकाशवाणी या रेडियो के कार्यक्रमों में किस तरह के परिवर्तन या किस तरह के परिवर्धन किए जाने चाहिए, एक ये। और दूसरा दूसरी मेरी जिज्ञासा यह भी है कि संस्कृति, साहित्य और मीडिया का, और ख़ासकर रेडियो से प्रसारण मीडिया का, इनका जो अंतर संबंध पिछले 50 वर्षों में बना और इस वक्त जैसा है, उसमें किस तरह का परिवर्तन और सुधार आना चाहिए, रेडियो की सार्थकता के बारे में आपके क्या ख्याल हैं कि क्या होना चाहिए?
0: मैं समझता हूँ दूधनाथ जी कि जो रेडियो की माइक की स्वर की प्रतिबद्धता है, इसके प्रति ही हमको रहना चाहिए, और जो टीवी का विजुअल्स हैं उन विजुअल्स के यथार्थ की तरफ नहीं दौड़ना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि स्वर के माध्यम से भी आँख का काम लिया जा सकता है, जैसे हमने ये बताया कि हाथ हाथ भी रो सकता है, वैसे ही स्वर के माध्यम से आँख का भी काम लिया जा सकता है। और जहाँ तक इसकी पॉपुलैरिटी का सवाल है, आकाशवाणी का जो कार्यक्रम है, जो रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, यह आप गांव-गांव में पाएंगे, दूर टेलीविज़न नहीं मिलेगा गांव-गांव में, हर जगह, हर आदमी के पास सुविधा नहीं है
1: उसकी। नहीं, उसको उस तरह से रखा और कैरी भी नहीं किया जा सकता,
0: कैरी भी नहीं किया जा सकता कि आप साइकिल पर बैठे हुए चले जाएं और ट्रांजिस्टर लगा के सुनते चले जाएं। आजकल भी ये क्रिकेट का मैच आता है जहाँ वोल्टेज डाउन हुआ है, वहाँ नहीं दिखला ही पड़ता है, तो हम लोग अपना वो ट्रांजिस्टर ही से सुनते हैं। तो ये
1: यानी हमको लगता है कि भारतीय रेडियो के इन 50 वर्षों में जो उसका उत्थान हुआ है, उसको बरकरार रखना चाहिए और स्वर और ध्वनियों के माध्यम कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, संस्कृति और साहित्य के प्रसारण के लिए और उनके अंतर संबंधों को कायम रखने के लिए रेडियो अभी भी उम्दा और सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि हमारा देश एक गांवों का देश है जहां की जनसंख्या श्रव्य माध्यम को से अभी भी ज़्यादा जुड़ सकती है,
0: जुड़ी हुई है
1: बनिस्पत दृश्य माध्यम के। तो आज इस इलाहाबाद रेडियो स्टेशन के स्वर्ण जयंती अवसर पर जो आपने संस्कृति और प्रसारण के अंतर संबंधों, इलाहाबाद आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रमों, उसकी विशिष्टताओं और किस तरह वह हिंदी भाषा और साहित्य के अलावा संपूर्ण भारतीय संस्कृति को एक तरह से प्रसारित करने और उसे जोड़ने में यह स्टेशन समर्थ हुआ, इसके बारे में जो आपने आज अपने संस्मरण और अपने अनुभव हमारे लिए प्रस्तुत किए, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।
2: हमारे संग्रहालय से इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना वरिष्ठ लेखक व पत्रकार लक्ष्मीकांत वर्मा से दूधनाथ सिंह की भेंटवार्ता। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं शुभ्रा श्रीवास्तव लेके हमारा आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत, जो कि आधारित है एक ही कलाकार पर। दोस्तों, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतरती हैं। कुछ गायक गीत नहीं गाते बल्कि गीत के किरदार को अपनी आवाज देते हैं। ऐसी ही एक आवाज थी पार्श्व गायक कृष्ण कुमार कुनाथ की, जिन्हें दुनिया प्यार से केके के नाम से जानती है। 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे केके का संगीत से रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापन जिंगल्स से की और हजारों विज्ञापनों में अपनी आवाज दी। 1994 में वे मुंबई आए और 1996 में फिल्म माचिस के गीत के साथ फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू की।

दोस्तों, केके की आवाज़ की सबसे बड़ी खूबी थी वो गाने को अभिनय की तरह नहीं, एहसास की तरह गाते थे। उनके पिता सी.एस. नायर और माता कनाकवाली थीं। मलयाली परिवार में इनका जन्म हुआ। कृष्ण कुमार कुनाथ भारतीय संगीत के जगत में एक ऐसे सितारे थे जिनकी आवाज़ ने श्रोताओं के दिलों को छू लिया। बॉलीवुड में उनका पहला बड़ा ब्रेक फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने से मिला। इस गाने ने केके को रातों रात मशहूर बना दिया। उनकी आवाज़ की सादगी और गहराई ने उन्हें एक ऐसा स्थान दिलाया जो हर श्रोताओं के दिल के करीब था।

दोस्तों, के केवल दर्द और रोमांस के गायक नहीं थे। उनकी आवाज में दोस्ती की मस्ती थी, जवानी का जोश था और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की बेफिक्री भी थी। फिल्म दिल चाहता है का यह गीत आज भी युवाओं की आज़ादी और दोस्ती का एंथम माना जाता है। तो दोस्तों, लोग क्या कहते हैं ये सोचने से ज़्यादा बेहतर है कि दिल क्या कहता है ये सोचा जाए।

बिल्कुल, जब हम नए हैं तो अंदाज क्यों पुराना होना चाहिए, अंदाज भी बिल्कुल नया ही होगा। दोस्तों, अलग अलग भाषाओं में गाने का अनुभव केके को एक बहुमुखी गायक बनाता गया। हिंदी के साथ साथ उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और कई अन्य भाषाओं में भी अपनी आवाज़ दी। केके की खासियत थी, वो गाते समय भावनाओं को आवाज़ देते थे। उनकी आवाज़ में न तो दिखावे की चमक थी, न किसी और की नकल। वो कहते थे कि वे किसी औपचारिक संगीत प्रशिक्षण से नहीं गुजरे, बल्कि अपने पसंदीदा कलाकारों को सुनकर बहुत कुछ सीखा था। और शायद यही कारण था कि उनकी आवाज़ में एक सहजता थी, एक अपनापन था।

दोस्तों, केके की आवाज़ की एक और खूबी थी, वो केवल रोमांटिक गीतों तक नहीं सीमित थे। उनकी आवाज़ में मस्ती थी, दोस्ती थी, दर्द था, जुनून था और सूफियाना एहसास भी था। केके की आवाज़ में रोमांस की यही खासियत थी, वो प्यार को शोर नहीं बनाते थे, बल्कि उसे एक खूबसूरत एहसास बना देते थे।

दोस्तों 31 मई 2022 को कोलकाता में एक लाइव कॉन्सर्ट के बाद के इस दुनिया से विदा हो गए। उम्र सिर्फ 53 वर्ष थी, लेकिन उनके गीतों की उम्र शायद कभी खत्म नहीं होगी। इनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए इन्हें 2009 में स्क्रीन अवार्ड मिला। बेस्ट मेल वोकलिस्ट के लिए मिर्ची म्यूजिक अवार्ड। संगीत में उनके योगदान के लिए इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड में उन्हें कई बार नामांकन मिला और भी बहुत सारे अवार्ड उनके नाम आए। दोस्तों केके की आवाज को पुरस्कारों की संख्या से नहीं बल्कि उनके चाहने वालों के प्यार से मापा जाना चाहिए, जिसमें उनकी आवाज आज भी जिंदा है। तो आइए इस महान आवाज को सलाम करते हुए सुनते हैं ये गीत।

इंसान चला जाता है, आवाज़ नहीं जाती, वक्त गुजर जाता है, गीत नहीं गुजरते, और कुछ कलाकार जिंदगी से चले जाते हैं मगर हमारी यादों में हमेशा गाते रहते हैं। केके को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में एक ही कलाकार, और हमारे आज के कलाकार थे पार्श्व गायक कृष्ण कुमार कुनाथ, जिन्हें हम प्यार से केके कहते हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयास

1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, हमारे सभी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में गदर 2 फिल्म से। संगीत है मिथुन का, शब्द रचना शहीद कादरी की।

अगला गाना सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आया सावन झूम के फिल्म से। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, शब्द रचना आनंद बख्शी की।

अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं प्रीतम का संगीतबद्ध किया अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा छिछोरे फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में।

अगला गाना आ रहा है अभिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाज में राज फिल्म से। संगीत है नदीम श्रवण का, शब्द रचना समीर की।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में सुनिए यकीन फिल्म का ये गाना, जिसमें आवाज है सोनू निगम और अलका याग्निक की, संगीत हिमेश रेशमिया का, शब्द रचना समीर की।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं MS धोनी फिल्म से पलक मुच्छल की आवाज में। संगीत है अमाल मलिक का, शब्द रचना मनोज मुंतशिर की।

0: श्रोताओं, इसी गाने के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
2: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत

0: ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। 57वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है ताकि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकासोन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल ने की। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम काम नहीं कर पाया, इससे टरबाइन की गति अचानक बढ़ गई और इसमें विस्फोट हो गया। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में बढ़ते तापमान और पर्याप्त कूलिंग व्यवस्था नहीं होने की जानकारी प्रबंधन को पहले से ही दी गई थी, लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टर्डम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. India has raised with Somalian authorities the issue of hijacking of 2 foreign-flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board. The vessels carrying 16 Indian seafarers on board MT Cebu and 6 Indian seafarers on board MV Lutuf were hijacked by armed pirates in separate incidents off Yemen and Somalia. In a social media post, the Indian High Commission in Kenya said all Indian seafarers are reportedly safe. Yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal, in response to a query during his bi-weekly media briefing, also addressed growing safety concerns regarding Indian mariners

की आवाज में। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे बरमदीन यादव और साथी। 5:15 बजे युवाणी कार्यक्रम में युवा श्रोता सुनेंगे ज्ञान प्रकाश की वार्ता, खेल जगत के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम। साथ ही इस कार्यक्रम में आज की शाम होगी अभिनेत्री राखी के नाम। पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे 6:30 पर रघुराज सिंह यादव और साथियों से लोकगीत। 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी लखनऊ केंद्र से। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रमेश कुमार शुक्ल की वार्ता सुनिएगा गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य में लोक चेतना। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे कौशिका राय से लोकगीत। रात 8 बजे चित्रपट संगीत। 8:30 पर सबरस। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब हम आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना दे दें। बद्री प्रसाद पाल पुत्र भगवती प्रसाद पाल सूचित करते हैं कि इनके पुत्र विजय बहादुर पाल उर्फ मोनू, उम्र 14 वर्ष, लंबाई 4 फीट 1 इंच, रंग सांवला, शरीर सामान्य, चेहरा सामान्य, आंखें सामान्य हैं। ये 30 जून 2026 से ग्राम दिवैनी थाना दिल्लुपुर जनपद प्रतापगढ़ से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने हरे रंग का लोअर टी शर्ट पहन रखा था, पैर में हवाई चप्पल पहन रखी थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8080279431। नंबर एक बार फिर से सुन लें 8080279431। एक और सूचना सुनिए। महेश पटेल पुत्र आशा पाल, ग्राम घना का पुरवा, संग्रामगढ़ प्रतापगढ़ से सूचित करते हैं कि इनके पुत्र राज पटेल, उम्र 12 वर्ष, इकहरा बदन, चेहरा गोल, रंग सांवला है, लंबाई लगभग 4 फीट। ये 4 जुलाई 2026 से सुबह 9 बजे से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने नीले रंग की टी शर्ट और भूरे रंग का जीन्स पहन रखा था। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9695008318। नंबर एक बार फिर से सुन लें 9695008318। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विदुषी जया विश्वास का राग गौड़ सारंग में सितार वादन। आपके साथ तबले पर संगत की है श्री शंभुनाथ भट्ट ने। तो लीजिए सुनिए विदुषी जया विश्वास का राग गौड़ सारंग में सितार वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी जया विश्वास का राग गौड़ सारंग में सितार वादन। आपके साथ तबले पर संगत की थी श्री शंभुनाथ भट्ट ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में। संगीत है जतिन ललित का, शब्द रचना मजरूह की। फिल्म का नाम प्यार कोई खेल नहीं।

आनंद राज आनंद और साथियों की आवाज़ में वेलकम मूवी का ये गाना सुनिए, शब्द और बोल, संगीत आनंद राज आनंद का।

दोस्तों अगला गाना लीजिए, सुनिए तुलसी कुमार की आवाज में लुका छिपी फिल्म से। संगीत है तनिष्क बागची का, शब्द रचना कुणाल वर्मा की।

नेहा कक्कर, मीका सिंह और कुमार सानू की आवाज में लीजिए सुनिए सिम्बा फिल्म का ये गाना। शब्द रचना शबीर अहमद की, संगीत तनिष्क बागची का।

नुसरत फतेह अली खां और राहत फतेह अली खां की आवाज़ में सुनिए बादशाहो फिल्म का ये गाना। संगीत है तनिष्क बागची का, शब्द रचना मनोज मुंतशिर की।

गदर इज बैक। लीजिए सुनिए इस फिल्म का ये गाना नेहा कक्कर और हनी सिंह की आवाज में। शब्द हैं साहिल कौशल के, संगीत हनी सिंह का।

दोस्तों, इसी गाने के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। दोस्तों, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुकना में सहयोगी गोरखा नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरंग के अनुसार बैठक में लंबे समय से चली आ रही स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। इसके बाद आज गृहमंत्री सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें बीएसएफ, एसएसबी, आईबी, पुलिस तथा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान जा रहा है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए

0: कंपल्शन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
1: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोनिरामाइन मैलेट और फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों की पहचान रांची के संजीव कुमार केसरी, बोकारो के विनीत महतो और गढ़वा के अभिषेक पांडे के रूप में हुई है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडैम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. India has raised the issue of 2 hijacked foreign flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board with Somali authorities. The vessels carrying 16 Indian seafarers on board MT Cebu and 6 Indian seafarers on board MV Lutuf were hijacked by armed pirates in separate incidents of Yemen and Somalia. In a social media post, the Indian High Commission in Kenya said all Indian seafarers are reportedly safe. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal, in response to a query during his bi-weekly media briefing yesterday, also addressed growing safety concerns regarding Indian mariners operating in volatile waters, reiterating New Delhi's commitment to prioritizing the welfare of its seafaring community. The government today imposed restrictions on the manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations FDCs containing chlorpheniramine maleate and phenylphrine hydrochloride for children below 4 years of age. The Health Ministry in a notification mandated a clear warning that these medicines shall not be used in children below 4 years of age and that safer alternatives are available. The government directed manufacturers to clearly display the warning, fixed dose combination shall not be used in children below 4 years of age on the label, package insert and promotional literature associated with these formulations. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह

0: गंगा। अरे ओ गंगा, अरे हम तो उसे कहा राम राम।
1: राम राम जया बहनी, ओपनगढ़ सुने सब बहनी हरन के राम राम।
0: राम राम गंगा। और बतावा का हाल चाल है घरे द्वारे के?
1: देखा हाल चाल बढ़िया है। सावन भी जाए वाला बा।
0: हाँ।

0: तो सावन में तू का का की हो?
1: देखा सावन के तो का बताई, ये जो महीना होते हैं, पहली बात तो सबसे बड़ी बात कि ये महीना हमार जो शिव भगवान के होते हैं, हाँ तो हमार तो मतलब ऐसा लगा था कि हाँ ये महीना में बहुत कुछ अच्छा होता, पर देखा ओके साथ साथ जो झूला झूल के मजा आए जाते ओके, तो कोनो मतलब है ही नहीं कि आगे उससे ज्यादा अच्छा कुछ हो ही सकते है।
0: बिल्कुल, देखा पेंगा मार मार जब कजरी मनाई गावत है तो कितना निक लागत है, और ऊह पे अगर झूला टूट जाए तो और बढ़िया होता है। एक जाए देखा ऐसे हम सब झूलत रहे सखी सहेलिन सब मिल के, ठीक बा, अब वो पे जगह रही चार जने के, अब वो पिल्ला दी गई छह सात जने,
1: पेंगो मारे वाले तो
0: पेंगा मारे जाते इन भैया पेंगा की झूला एकदम खड़ा हो के चाहिए, पता चला झूला टूट गया और वो इतनी दूर जाए के गिरा की केहू के करिया चोट लाग, केहू गोड़े में चोट लाग, तो वो झूला उनके सबके जिंदगी भर याद रहे की सावन के झूला का देखे
1: और गाओ। तो देखा सही बात है, देखा जब जरूरत से ज्यादा बोझ लद जाए तो ये तो हादसा हो जाए, पर देखा यहू में एक मजा है, है ना?
0: बिल्कुल।
1: और ये बतावा देखा आज जब ये सब अपने मन की बात करी थी, तो देखा आज हम तो उसे अपने दिल की एक बात और कहे चाही थी।
0: वो
1: ये कि देखा जो उन्हें आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उमा देखा तन और मन दोनों का दुरुस्त रखा बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, ये तो एकदम सौ आना सही बात कहूँ पहनी देखा शरीर के जो संबंध है ना खाली मन से सोच से और पूरे जीवन से जुड़ा हो।
1: बिल्कुल सही,
0: ठीक है, हमार सोच और हमार पूरा जीवन जोन बा ये योग और प्राणायाम में बहुत बड़ा योगदान देते हैं।
1: बिल्कुल सही
0: है ना? देखा हम सब जानी थे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन के निवास होता है, लेकिन उस स्वस्थ शरीर कब मिले हमें सबके जब हम ओकरे बारे में सोचब। आजकल के मन ही देखा कुल काम करत है लेकिन अपने शरीर के बारे में ना सोचत।
1: बिल्कुल सही कहो गंगा, देखा हाँ जो हमार अम्मा रही कहत रहे की जैसे जो ने घड़ा के पानी रोज साफ करेगा पड़त है, वैसे देखा तन मन के जो मैल होते हैं वो रोज जो ने साफ करे का चाहिए, लेकिन ओके जो एक तरीका है ओका वो योग बताए रही कि देखा जब योगा करा जाए तो तन मन मतलब साफ हो जात है। और देखा बहुत सी ऐसी बात है कि कहा जाते कि योग और प्राणायाम ओके जो ने तरीका है कि उन तरह की समस्या ना आवे।
0: बिल्कुल, तो चला आज यही पे अपने पनघटे पे बत कही की जाए कि योग और प्राणायाम के का महत्व।
1: बिल्कुल सही गंगा, बिल्कुल देखा। और एक ही आज हमार सब की भागदौड़ वाली जिंदगी में एक ही बहुत ज्यादा जरूरत भी है।
0: बिल्कुल बहनी, देखा आजकल मैंने पढ़ाई नौकरी व्यवसाय और मोबाइल फोन इंटरनेट इन सब के लगातार बढ़त तनाव के कारण हमारे जीवन में पहले से अधिक मैंने देखा व्यस्त हो गई। पहले
1: बिल्कुल,
0: और देखा घंटों बैठ के काम करत बा, देर रात तक फोन चलावत बा, और सबसे बड़ी चीज अनियमित भोजन करत बा, रात में कभी मने 11 बजे खात बा, 12 बजे खात बा, 2 बजे खात बा, तो ऐसे जो शारीरिक गतिविधि होते है वो ना हो पावत।
1: बिल्कुल,
0: और एक सबसे सीधा प्रभाव जो बा अपने शरीर और अपने मन पे
1: पड़ता
0: है ना। तो ऐसे समय में योग और प्राणायाम जो बा वो अपने जीवन में संतुलन लावे के एक सरल और प्राकृतिक माध्यम बन सकत।
1: बिल्कुल सही। और देखा गंगा सुबेरे जो उन्हें 10 से 15 मिनट खुली हवा में गहरी सांस लेब, अनुलोम विलोम भ्रामरी, ऐसे जो उन्हें खाली शरीर ऐसे का होते कि हल्का हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और देखा मन इतना ज्यादा शांत रहता है कि जो उन्हें एकदम अद्भुत एक जो उन्हें पूरी दिनचर्या में एक अद्भुत सा बदलाव आवत है, खुद का भी अच्छा लगा कि लगा था कि देखा आज हम कुछ अच्छा काम किए।
0: अच्छा काम किए। और मैंने देखा योग जो अनुभव वो भारत के प्राचीन परंपरा और संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्सा।
1: बिल्कुल सही। और देखा पुरान समय से ही चला आवत
0: पुरान समय से, हाँ, तो व्यापक अर्थ में देखा योग जो अनुभव शरीर मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करे के प्रक्रिया है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। योग खाली कुछ कठिन आसन करे के नाम न होए, जीवन जिए के एक ऐसन पद्धति है जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत और भावनात्मक रूप से संतुलित रहने में सहायता करत है।
1: बिल्कुल सही।
0: जैसे देखा जब हम योग के बात करी थे तो हमारे सामने अनेक प्रकार के आसन आ जाते हैं, जैसे ताड़ासन हो गया, भुजंगासन हो गया, वज्रासन हो गया, पद्मासन आसन हो गया, त्रिकोणासन और

0: योगासन, हर आसन के आपन महत्व होते हैं। योगाभ्यास से देखा शरीर में लचीलापन बढ़ावत है, मांसपेशी के सक्रिय रखत है और शरीर के कार्य क्षमता के बेहतर बनाए रखे में सहायक होते हैं।
1: गंगा देखा तो इतना अच्छा अच्छा सब कुछ बताओ तो, लेकिन जब हम अपनी बात करी थी देखा तू और हम हो, देखा एक स्त्री होए के नाते एक घर की जो ने मतलब मजबूत एक कहा जाता है ना कि रीढ़ की हड्डी होते जो ना घर की स्त्री होता है,
0: परिवार के स्तंभ एक
1: होता है, स्तंभ होता है। तो देखा जब हम एक के बारे में बात करी थी योग के बारे में, तो हम अपनी बहनी लोगन से कैसे बताई कि उन्होंने का देखा अपन लिए ई योग और प्राणायाम के लिए समय निकालब कितना आवश्यक है।
0: बहुत बहुत जरूरी है। देखा जोन बहनी हरेन है इन पूरे परिवार के बारे में सोचा थी, इनका दिल इनके पुरानी इनके घरे के सबके बारे में सोचा थी, लेकिन वो अपने बारे में सोचे भुला जाते, कोई भुला जाते हैं कि अगर वो सही तरीके से खड़ी रही है, वो उनका शरीर अच्छा रही तो वो सबके बारे में कर पाई है, सोच पाई है।
1: बिल्कुल सही। और देखा गंगा बात यू है कि हमारे बहनी लोगन का देखा कहूँ ना कहूँ एक ऐसा समय आए जाता है कि जब अपने आप से उनका अंदर से महसूस होए लगा था कि नहीं अब हमका अपने लिए भी कुछ समय निकाले का है। देखा शुरुआत में तो जब समय होते जब एक स्त्री एक नए घर में जाती तो एक पूरी तरीके से ओका व्यवस्थित करे में समय लग जाता है, पर उस समय के साथ साथ देखा उमा भी दिखा जब हम अपना एक रसोईया संभाली थी, अपन घर संभाली थी, बड़ पुरान है उनका संभाली थी, जो उन घर के जितने छोटे छोटे बच्चन है उनके साथ एक व्यवहार तालमेल मिलाई थी, तो देखो एहू एक तरह का योग है। एमा देखा कितना कुछ अपन जो ने समझ और समझदारी से हम लोग एक सब कुछ संतुलित करी थी, पर देखा एक के बाद जब सब कुछ कह ली थी तब ओके बाद समय जरूर है अपने लिए निकाले का जरूरत है कि देखा उमा योगा और प्राणायाम किया जाए
0: किया जाए। देखा अभी छोट छोट दिक्कत हो जाते तो यहाँ बाहर में टाल देते हैं, सर्दी जुखाम होएगा, खांसी आवत बा या मतलब कतौ दर्द होत बा, गोड़ पिरात बा, मूड़ पिरात बा, तो सोचा थी बस ऐसे ही होते हैं, लेकिन बस ऐसे ना होते, वो अपन शरीर के मतलब ध्यान दे बंद कर दिए हैं, ये नाते एक एक चीज उनके दिक्कत करत है। अब समय है कि थोड़ा सा अपने शरीर पे ध्यान दें, थोड़ा सा योग करें, प्राणायाम करें, सुबह के समय बैठ के लंबी लंबी सांस लें, थोड़ा समय 15 से 20 मिनट बहुत समय ना है ना, सवेरे गदेलन के टिफिन बनावे खोत है और सब कर खाना बनावे खोत है तो बहुत समय तो होत ना है, लेकिन तनकी भोरा रहे उठ जाए और 15-20 मिनट आधे घंटे अपने आप के जरूर दें।
1: बिल्कुल गंगा देखा शुरुआत 5 मिनट से कही सकते हैं, बहुत आसान होते और कुछ नहीं हो, बस मन में एक मन का मनावे का पड़त है कि देखा हमका ही 5 मिनट से शुरू करेगा है, 5 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे अपने आप पे जब अच्छा लगे लगा थे तो शरीर अपने आप कहे लगा थे कि नहीं हमका और समय बढ़ावे का है। तो देखा एक मन का शांत रखे के लिए और दिमाग का शांत रखे के लिए ये दोनों चीज के लिए योगा जो है एकदम अमृत तुल्य है, है ना।
0: बिल्कुल देखा आज पूरी दुनिया में योग की पहचान मिलत है ना, 21 जून के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तो मनावे जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: हाँ। बात के प्रमाण है कि योग खाली भारत के प्राचीन परंपरा भर ना रहेगी बल्कि विश्व के अनेक देश में लोग इस स्वास्थ्य और जीवन शैली के एक साधन के रूप में अपनावत है। तो जब सब अपनावत बा तो हम सबके अपनावे के चाहिए है ना।
1: सबसे पहले तो हम अपनी बहनी लोगन का भी बोलब क्यों ना उनका एक नई शुरुआत अपने जीवन में करे का चाहिए।
0: बिल्कुल, तो नई शुरुआत के साथ एक बढ़िया से गवनई सुनाई दिया जाए बहनी हरण।
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ, चला सुना जाए
0: कामिनी श्रीवास्तव बहनी से सुहाग गीत।

0: देखा मन एकदम खुश होएगा।
1: बिल्कुल देखा, पनघटे पे गीत गाओ नहीं होत रहा था तो मन एकदम हरियर बह रहा था ना।
0: और देखा सावन तो चला था, वहाँ हरियर हरियर सा गाना सुन के मन खुश होएगा। गंगा देखा जब हम अपनी बहनी लोगन के बारे में अक्सर ही देखा बात करित रही थी, हाँ। है ना, तो देखा उनकी जो उन मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं हैं अक्सर वो उनका मतलब समझ नहीं पाती इनकी। देखा ईद मतलब जो उन महीनवारी होते हर महीना दर महीना जब आवत है, हाँ, कभो कभो कुछ गड़बड़ाए भी जाता
1: है, उसे जो दिक्कत होते है तो

0: मतलब समझ नहीं पाती इनकी। देखा ईद मतलब जो महीनवारी होते हर महीना दर महीना जब आवत है, कबो
1: हाँ,
0: कबो कुछ गड़बड़ाए भी जाता है।
1: उसे जो दिक्कत होते है तो वो बात करे में नजरअंदाज करे थी नौका, मतलब ना बात करे चाहती नो पे, चाहे वो थोड़ी झिझक में या फिर कोनो भी कारण हो सकत है, तो लेकिन उन्हें सबका बात करे के चाहिए।
0: बिल्कुल। और देखा जब बात करे के चाहिए तो कबो अगर वो ना भी बात कर पाए तो आज हम अपने पनघटे के माध्यम से उनका उनकी समस्याओं से जुड़ी कोनो मतलब ऐसे अगर जुड़ी कोनो समस्या है तो ओके निदान के लिए बतावे जाती डॉक्टर दिव्या मौर्य। और देखा उनसे बात किए है रीता रानी, तो देखा चला सुना जाए और बहनी हरण सुने और समझे भी, और अगर समस्या है तो ओके निदान भी पावे।
1: बिल्कुल, चला सुना जाए, बहनी हरण भी सुने।
2: बहनों, सृष्टि में सृजन की अपनी व्यवस्थाएं हैं। मनुष्य हो या जीव जंतु, इस धरा पर जीवन मृत्यु के चक्र से अलग नहीं हो सकते। नए जीवन के सृजन के लिए महिलाएं गर्भ धारण करती हैं और इसका एक महत्वपूर्ण चरण है मासिक धर्म। वैसे तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और बहुत आवश्यक है, परंतु कभी कभी कुछ बहनों को, कुछ माताओं को इससे जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं जो विकार का रूप भी ले लेती हैं। इसलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्या मौर्य, जो चिकित्सा अधिकारी एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, जो हमसे मासिक धर्म विकार समझे और निवारण करें विषय पर जानकारी साझा करेंगी। तो डॉक्टर दिव्या मौर्य, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे बहनों को बताइए कि जो है मासिक धर्म विकार क्या होते हैं।
3: नमस्कार सखियों, मासिक धर्म विकार वो स्थितियाँ होती हैं जिनमें महिला का मासिक धर्म सामान्य नहीं होता है। अब हम सामान की बातें करें तो मासिक धर्म हर महिला के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया,
1: बिल्कुल
3: जैसे इन्होंने बताया
1: जी।
3: नियमित मासिक धर्म चक्र हर 21 से 35 दिनों में एक बार दोहराया जाता है, जैसे कि 21 दिन पहले भी आ सकता है और 35 दिन के बीच में हो सकता है
1: जी, जी, जी।
3: और इसकी अवधि जो है वो 2 से 8 दिन की होती है।
1: अच्छा।
3: और रक्त स्त्राव की बात करें, ये अपना खुद का अनुभव है, ये हम 10 ml से लेकर 80 ml तक मान सकते हैं।
1: अच्छा।
3: हाँ। अब इस मासिक धर्म के पैटर्न में कोई भी गड़बड़ी या बदलाव देखने को मिले, जैसे अत्यधिक रक्त स्त्राव हो जाए
1: जी जी,
3: या मासिक धर्म नहीं आ रहा है
1: हाँ,
3: या काफी दर्द है
1: जी,
3: और बार बार मासिक धर्म आ रहा है और लंबे समय तक बना है,
1: अच्छा,
3: जैसी समस्याएं शामिल हो सकती हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि यह विकार किस किस प्रकार के होते हैं।
3: देखिए, इसके कई प्रकार हो सकते हैं। मासिक धर्म सबसे पहले तो ना आना, शुरुआती दौर में जो किशोरियां होती हैं
1: हाँ,
3: उनको मासिक धर्म अनुमान हम मान के चलते 11 से 13 वर्ष की उम्र में हो जाता है।
1: अच्छा अच्छा।
3: अगर ये 15 साल तक भी ना हो रहा है
1: हाँ,
3: तब ये चिंताजनक है
1: हाँ,
3: या जो मासिक धर्म से महिलाएं गुजर रही हैं
1: हाँ,
3: उनका मासिक धर्म 3 महीने से ज्यादा तक ना आए।
1: अच्छा।
3: हाँ। या अत्यधिक रक्त स्त्राव होना, जैसे बहुत ज्यादा लंबे समय से खून जा रहा है
1: हाँ, हाँ।
3: जिससे उनमें कमजोरी थकान बनी रहती है
1: हाँ, हाँ।
3: या बहुत समय तक थक्के के साथ खून आना।
1: अच्छा।
3: या जल्दी जल्दी मासिक धर्म का हो जाना, जो हम 21 से 35 दिन की बात करते हैं अवधि की, वो जल्दी जल्दी आ जाए।
1: अच्छा।
3: या मासिक धर्म के दौरान पेट के निचले भाग में ऐठन के साथ दर्द होना
1: हाँ, हाँ।
3: और उसके साथ लक्षण है जैसे थकान
1: हाँ।
3: पेट फूलना,
1: अच्छा,
3: चिड़चिड़ापन, चिंता और सिर दर्द।
1: अच्छा।
3: ये सारे लक्षण हो सकते हैं
1: हाँ।
3: ये लक्षण मासिक धर्म से पहले से आ सकते हैं और उसके बाद तक रह सकते हैं।
1: अच्छा, माने आपका कहना है कि ये पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। अच्छा।
3: हाँ। या मासिक धर्म देरी से आना, देरी से मतलब कोई जैसे हम कहते हैं हर महीना आना चाहिए
1: जी,
3: अब वो 1.5 महीने में आ रहा है
1: जी,
3: 2 महीने में आ रहा है, तो ये सारे उसके विकार के प्रकार हैं।
1: अच्छा, यानी कहने का मतलब आपका ये है कि अगर वो 28-30 दिन या 35 दिन में आता है तब तो ठीक है
3: हाँ।
1: और अगर उससे ज्यादा समय बीत जा रहा है तो इसमें कुछ कमी है, यही विकार के कारण। अच्छा, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं।
3: देखिए, मासिक धर्म विकारों के कई कारण हो सकते हैं। जो अनुमान आमतौर में सबसे ज्यादा देखा गया है वो हार्मोनल
1: हाँ।
3: जो हमारे शरीर में बनता है हार्मोन
1: हाँ।
3: उसका असंतुलन।
1: अच्छा।
3: जब शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है
1: हाँ।
3: तो मासिक धर्म में बदलाव आ सकते हैं।
1: अच्छा।

0: से आपने सुना होगा थायराइड, जो
1: हाँ
0: बहुत ही कॉमन है,
1: हाँ हाँ
0: वो TSH नामक हार्मोन होता है, या उसका वो बढ़ जाना या उसका घट जाना,
1: अच्छा हाँ
0: दोनों ही स्थितियों में बदलाव आ सकता
1: हाँ
0: है।
1: अक्सर देखिए देखा जा रहा है कि बहनों में थायराइड की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसके होने से भी मासिक चक्र में परिवर्तन होता है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन का बढ़ना, जैसे जो माताएं बच्चे को जो दूध पिलाती हैं
1: अच्छा
0: उस
1: अच्छा
0: समय प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो बढ़ा हुआ होता है,
1: अच्छा
0: इसी वजह से उस समय उनको देखिए मासिक धर्म नहीं आता है,
1: हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: उस समय उतार चढ़ाव इस हार्मोन का बना रहता है, तो हम मान के सकते हैं कि 6 महीने तक उन्हें मासिक धर्म सही से नहीं आएगा।
1: अच्छा कभी कभी देखा गया है डॉक्टर साहब कि जो बहनें जो धात्री माताएं हैं जो दूध पिला रही हैं, तो वो जो है कोई बताती हैं कि हमें जो है 2 साल 2.5 साल जो है मासिक धर्म नहीं आया, तो क्या दूध पिलाने के कारण ऐसा हो रहा है?
0: हाँ जी, हाँ जी, दूध पिलाने की वजह से हार्मोन में उतार चढ़ाव होते हैं
1: हाँ
0: जिस वजह से ऐसा हो सकता है, पर उन्हें थोड़ा सा सजग रहना चाहिए।
1: अच्छा।
0: हाँ, अब ये आता है कि एक बहुत सुना होगा डायबिटीज,
1: हाँ
0: मधुमेह।
1: मधुमेह
0: हाँ,
1: हाँ हाँ
0: इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन का विकार होता है, जिस वजह से इसमें हमारे माहवारी में भी प्रभाव पड़ सकता है।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: अच्छा तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि कैसे ये महिलाओं की आम जिंदगी को प्रभावित कर रही है?
0: कि आज की परिस्थितियों में देखा गया कि हर 5 में से 1 महिला को माहवारी संबंधी कोई ना कोई परेशानी होती है,
1: जी
0: जिसकी वजह से उनकी दिनचर्या और व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है,
1: जी जी
0: जो कभी कभी मानसिक तनाव का बहुत बड़ा कारण भी बन जाता है।
1: अच्छा तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो है इसमें जो है हम डॉक्टर की सलाह कब लें, माने हम कैसे जाने कि जो है हमारे अंदर क्या परेशानी है क्या नहीं परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तभी मुझे ये जानकारी होगी, तो हम कब लें?
0: काफ़ी समय से अगर विकार बना हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया जल्दी जल्दी आ रहा है,
1: हाँ
0: लंबे समय तक बना हुआ है, खून के थक्के आ रहे हैं, या कभी कभी महिलाएं होती हैं कि अगर इन्हें थोड़ा ये सारी दिक्कतें होती हैं वो जाके अल्ट्रासाउंड करा लेती हैं,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उन्हें पता चलता है उनके बच्चेदानी में गांठ है या
1: हाँ
0: अंडाशय में गांठ है,
1: हाँ
0: और कभी कभी उन्हें भी पता खून की कमी है, तो और ऐसी कोई भी समस्या है जो आपकी जीवन शैली, मानसिक शारीरिक कष्ट दे रही हो, उसमें तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।
1: अच्छा तो जो है डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस विकार के इलाज के लिए क्या उपाय है?
0: देखिए, इलाज का चुनाव विकार की गंभीरता और कारण पर निर्भर करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया थायराइड बताया और मधुमेह की बीमारी बताई, या कभी कभी जो अंडाशय में जो हार्मोन होते हैं उसके उतार चढ़ाव की वजह से जो भी विकार हैं उसमें डॉक्टर हार्मोन की थेरेपी देते हैं, मतलब
1: अच्छा
0: उसकी दवाइयाँ देंगे,
1: अच्छा
0: अगर उसमें सुधार होता है तो मासिक धर्म अपने आप ही सुधार
1: नियमित नियमित हो
0: नियमित हो
1: जाता।
0: जाता है।
1: अच्छा
0: हाँ जी,
1: अच्छा
0: हाँ जी। अब इसके अलावा जैसे महिलाओं को मासिक के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो
1: जी
0: उस
1: जी
0: समय दर्द निवारक दवाइयाँ ली जा सकती हैं, और जीवन शैली में सुधार किया जा सकता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है जीवन शैली में सुधार, उसमें जैसे उचित आहार लें, नियमित एक्सरसाइज, जो बहुत महत्वपूर्ण।
1: डॉक्टर साहब ये हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बहनें बोलती हैं कि अगर पेट के निचले हिस्से में या ऊपर हिस्से में दर्द हो रहा है तो उसको गर्म पानी से सिकाई कर ले, तो क्या ये उचित है?
0: हाँ जी, जैसे क्या होता है मासिक धर्म के दौरान बच्चेदानी में थोड़ी सूजन आ जाती
1: अच्छा
0: है,
1: अच्छा
0: तो हम जब गर्म पट्टी या गर्म पानी की बोतल सिकाई करते हैं तो उस सूजन में थोड़ा आराम मिलता है
1: अच्छा
0: और दर्द में भी आराम मिलता है, तो
1: अच्छा
0: किया जा सकता है।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ जी।
1: अच्छा तो क्या महिलाएं इन विकारों से बचने के लिए कुछ खास कदम उठा सकती हैं?
0: जी हाँ, सबसे पहले तो महिलाओं को अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, एक स्वस्थ आहार जैसे फल सब्जियां और पूरे अनाज का सेवन करना चाहिए, जो मासिक धर्म को समान बनाए रखने में मददगार है,
1: अच्छा।
0: और पूरी नींद ले, जैसे आज की महिलाएं इतना कामकाजी, इतने घर में काम है, इतनी गतिविधियां, दिनचर्या इतनी व्यस्त होती हैं कि वो पूरी नींद नहीं ले पाती
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: हाँ
0: जी, तो पूरी नींद लें, इसके अलावा नियमित रूप से एक्सरसाइज और मानसिक तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान भी कर
1: करना
0: सकना
1: करना
0: चाहिए।
1: जरूरी है,
0: हाँ जी,
1: यानी आपका कहने का मतलब ये है कि वो बहनें अपना पूरी 8 घंटे 9 घंटे नींद लें और आहार जो है खूब संतुलित लें।
0: हाँ जी, क्योंकि महिलाओं में खून की कमी बहुत ज्यादा

0: देखी जाती
1: अक्सर
0: है।
1: बहनों में देखा
0: हाँ
1: जाता है
0: जी,
1: जी।
0: इसलिए उन्हें आयरन जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध, प्रोटीन वाली चीजों का सेवन करना चाहिए।
1: हम आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं कि कभी कभी होता है कि जैसे 40-45 साल की महिलाएं हो गई हैं, तो उनको जो है अपने जैसे मासिक धर्म तो कभी किसी को मैंने होता है, किसी कोई मेनोपॉज में चला जाता है, तो उस समय क्या कुछ परेशानी होती है?
0: हाँ जी, जैसे जब तक मासिक धर्म आता है तो ये मान के चलिए कि आपका हार्मोनल एक संतुलन की दौर पे गुजर रहा है और उसमें सारे हार्मोन मेंटेन हैं। पर जैसे मेनोपॉज, जिसे हम कहते हैं कि अब ये बंद होने वाली है, माहवारी एक तरह से बंद हो रही है, जब माहवारी बंद होती है तो अपने आप कुछ हार्मोन जो स्त्रियों में बनते हैं उनको अपने आप उनका सारे उनका जो लेवल है वो गिर जाता है।
1: तो ये बताइए कि क्या मेनोपॉज के बाद बहनों को क्या क्या तकलीफ हो सकती है?
0: हाँ देखिए, ऐसा होता है कि मासिक धर्म बंद होने के बाद सबसे पहले तो विटामिन डी, कैल्शियम, इन सब की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पैरों में दर्द और अथराइटिस, जो समय बहुत आप सुनने को मिलता है कि नहीं घुटनों में दर्द हो
1: घुटनों
0: रहा
1: में दर्द
0: है,
1: हो रहा है
0: कमर में दर्द हो रहा
1: जी
0: है।
1: जी
0: इसके अलावा जब हार्मोन असंतुलन हो जाता है, मतलब उसका लेवल कम हो जाता है, तो नीचे जो हमारे महिलाओं के दो जो अंग हैं उसमें सूखापन आने लगता है। हाँ,
1: अच्छा हाँ
0: या कभी कभी कुछ कुछ महिलाओं को पसीने ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा लगने लगती है और चिड़चिड़ापन, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं।
1: अच्छा तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे जैसे ज़्यादा उम्र हो रही है, तो उसके बाद जो बहनें हैं तो उनको जो है जैसे उनको टॉयलेट जाना है या उनको महसूस होता है, तो ये होता है कि नहीं कि जल्दी जाओ, नहीं तो हो सकता है हो जाए, तो ये क्यों ऐसा होता है?
0: हाँ जी, ये हो सकता है। उसके देखिए, उसके भी बहुत कारण होते हैं। एक तो प्रसव के दौरान कभी चोट लगी हो
1: जी
0: नीचे के रास्ते,
1: जी
0: या जब मेनोपॉज हो जाता है तो सारे हार्मोन जैसे मैं बताया उनके उनका लेवल गिरने लगता है, तो वहाँ की जो मसल्स हैं,
1: जी जी
0: स्किन है, वो कमज़ोर होने लगती हैं,
1: अच्छा
0: तो वो जो क्षमता है रुकावट की
1: वो
0: उसमें,
1: खत्म हो जाती,
0: हाँ उसमें कमी आ जाती
1: अच्छा
0: है,
1: अच्छा हाँ
0: तो इस वजह से ये दिक्कतें हो सकती हैं।
1: अच्छा। तो देखिए डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारी बहनों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गंगा,
3: हाँ वहनी,
2: देखा कितने अच्छे से डॉक्टर दिव्या मौर्या और रीता रानी बहनी कितने अच्छे से उनसे फरियाए फरियाए के पूछिन, और देखा खूब अच्छे से वो जानकारी भी दीहिन,
3: बिल्कुल
2: है ना। आशा है हमारे बहनी उलन बहनी लोगन के लिए जो ने जानकारी सहयोग करी,
3: बिल्कुल
2: है
3: बिल्कुल
2: ना।
3: सहयोग करी, और ये सब मतलब थोड़ा सा ध्यान दे अपने सेहत के लिए लेके भी बहनी हरन, और अब उनके लिए हम सब ध्यान दे थे कि एक ठो बढ़िया से चला गौ नहीं फिर सुना जाए कामनी श्रीवास्तव बहनी से
2: चला सुन लिया जाए।

0: गंगा
1: हाँ बनी
0: देखा गवनी भी सुन लीन गई
1: बिल्कुल
0: और देखा बातचीत भी हुई हुई गई बहनी लोगन से, पर देखा अब एक जो ने सबसे अच्छा जो ने कहा जाता है ना कि एक अच्छी जगह चला जाए रसोई घर से।
1: बिल्कुल। तो देखा आज अपने रसोई घर में बा रसोई से पोषण तक जानकारी के बाद है ना। तो देखा का हम सब सोचे हैं कि हमारे घर के जो रसोई बा वो खाली खाना बनावे के जगह ना है, बल्कि
0: बिल्कुल
1: स्वास्थ्य के पहली पाठशाला
0: बिल्कुल
1: है
0: सही।
1: ना। सुबह की चाय से लेके रात के रोटी तक हमारी थाली में जौन कुछ भी आवत है ओके सीधा असर हमारे शरीर, हमारे ऊर्जा और हमारे भविष्य पे पड़त है।
0: बिल्कुल सही।
1: देखा अक्सर हम सब कही थे ना, जैसन खाबे वैसने बनब।
0: हाँ, कहा जाता है ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे
1: हाँ,
0: मन, है ना।
1: तो लेकिन ये सवाल है कि हम खात का होई का हमार खाना खाली पेट भरत बा कि वो हमारे शरीर के पोषण भी देत बा जेके उका वास्तव में जरूरत बा। तो आज हम सभी इसी पे बात करब, ठीक बा। देखा घर के जो रसोई बा उनमें कई पीढ़ी के ज्ञान भरा पड़ा बा,
0: बिल्कुल
1: जैसे
0: सही।
1: दादी नानी के नुस्खे हुए गए, मौसमी सब्जियां हुई गए, दालें हुई गए, अनाज हुई गए, मसाले और घर के बना ताजा भोजन, ई सब हमार भोजन ई सब भोजन जोन बा वो अपनी संस्कृति के हिस्सा है।
0: बिल्कुल
1: लेकिन आज अपन जीवन शैली इतनी तेजी से बदलत बा, समय की कमी बा, बाहर के खाना आसान लागे थे मने कि जल्दी जल्दी फोन उठावा और बाहर से मंगावा, लेकिन जोन हम खाना खाते वो कई बार पोषण से बिल्कुल ही विपरीत होते हैं और हमें सबके देखा तरह तरीके के रोग घेर लेते हैं।
0: बिल्कुल सही। और गंगा देखा ये जो बाहर के खाना होते ना ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते, कस के देखा कई बार हम खुद अपनी आँखन से देखा है कि देखा घर में का होता है कि अक्सर मान लो कोनो तेल है जो उनकी हमार एक बार खाना बनावे के बाद वो गाढ़ा हो गया है तो हम ओका अक्सर जो ने एक किनारे रख देते हैं दोबारा इस्तेमाल नहीं करे। पर देखा
1: बिल्कुल
0: जो उन बाजार के खाना है ओमा जो उन तेल इस्तेमाल होते अक्सर ऐसा हो
1: वो
0: जाता है कि
1: कई
0: वो कई
1: बार,
0: बार इस्तेमाल
1: हाँ
0: कर
1: कई
0: लेते
1: बार
0: फिर वो।
1: इस्तेमाल करते हैं।
0: हाँ, तो देखा वो सही बात है, कहा जाता है ना हमारे दादी नानी भी कहते रहे कि अरे ज्यादा पुरान पुरान तेल हो गया तो कई किनारे कह दो कोनो का कहूँ डाल दे, पर
1: बिल्कुल।
0: देखा उनका इस्तेमाल नहीं करते रहे। आज की जो जीवन शैली है बाहर वाला जो उन खाने की बात करी थी जैसे कि हम लोग तो उमा ई जो उन्हें आम बात है और एका
1: बिल्कुल।
0: ध्यान रखे का चाहिए। भले घर में हम तो कहब कि देखा पोषण की जब बात करें तो हम कही कहब कि देखा साधारण सादा खाना बनाए के खा लियो, पर बाहर का खाना मंगावे से थोड़ा सा ऐतराज रखे।
1: एतराज रखे। और कुछ छोटी छोटी चीज हैं जो उनकी हम सब अपनी जिंदगी में शामिल कर ले बगैर तो पोषण भी मिले और शरीर भी अच्छा रहे। पहला देखा थाली में विविधता बढ़ावे, मतलब
0: बिल्कुल
1: थाली
0: सही।
1: में दाल भी रहा है, चावल भी रहा है, सब्जी भी रहा है, रोटी भी रहा है, सलाद भी रहा है, तनी चटनी भी बनाए ला,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ये सब चीज रहे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा खाबो तो उस शरीर में पोषण दे दे। दूसरा होएगी मौसमी और जो मतलब मौसम के हिसाब से जो सब्जी मिला था, इन खाद्य पदार्थ मिला था।

0: है ना, वो का जरूर प्राथमिकता
1: ओका,
0: था।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: सही।
0: तीसरा होएगा बहुत ज्यादा नमक या बहुत ज्यादा चीनी, ऐसे दूरी
1: और
0: बनावा।
1: बिल्कुल, और देखा है कि साथ साथ मसाला भी, ज्यादा मसाला ज्यादा
0: हाँ,
1: तेल भी नुकसान करते हैं।
0: नुकसान
1: और
0: कर
1: कहा
0: रहा
1: था, देखा कई बार हम लोग अपने पनघटे पे भी, कई बार हम जो डॉक्टर लोग आए हैं उस सब ये बात कहें कि कई बार जो ना ज्यादा तेल इस्तेमाल कर, अब ज्यादा मसाला इस्तेमाल करने से जो खाने का पोषण होता है
0: था।
1: वो कम हो जाता है। तो
0: बिल्कुल,
1: जितना कम से कम तेल और मसाले में खाना बनवा जाए उतना ज्यादा ओके पोषक तत्व रही है वही खाने में,
0: हाँ
1: है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: मिला था। और देखा बच्चन के भी भोजन संबंधी आदत जो वो घर ऐसे पड़ा था,
1: बिल्कुल
0: अभी
1: सही।
0: कहे कि इस तो का सब्जी खाए एक बार तो लिए सब्जी अच्छी बार, तो वो उनके दिमाग में ना पड़े
1: बिल्कुल
0: जितना कि ये पड़े कि घर में सब्जी बनावा, अपने भी खा बच्चन के भी दा, तो वो आदत समझिए कि ये आदत है, एक हमें अपनावे कि ही
1: बिल्कुल
0: बा,
1: सही, बिल्कुल
0: तो
1: सही।
0: पोषण अपने आप उनके शरीर में जाए।
1: और देखा जब पोषण के ऐसे मन में आवे कि देखा समय कम है, तो हम तो यही कहा कि अगर लगे कि हमारे पास समय कम है या हमारी तबीयत नहीं ठीक, तो उस समय में ये देखा हम लोग के पास बहुत सारे जो ने साधन उपलब्ध होते, देखा दलिया होता,
0: हाँ
1: खिचड़ी होता है ना,
0: बिल्कुल,
1: दही के साथ खिचड़ी जो ने कितनी पोषण मतलब होता है, वो माँ पोषक तत्व होता है। ओके, साथ साथ कुछ नहीं तो देखा हम लोग पहले कहा करते रहे कि पहले कई बार घुघरी बनावत रहे हर चीज की, वो पूरी पोषण से युक्त होती रही घुघरी, इतनी आसान होती कि मतलब मुश्किल से 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाते।
0: बिल्कुल बनी। देखा अच्छा पोषण जौन बा वो कोनो दवा के दुकान पे ना मिलत,
1: बिल्कुल सही।
0: अक्सर हमारे अपनी रसोई में ही मिल जात है।
1: और देखा जब तू सारे पोषक तत्वों की बात कर ली, तो अब हम तो का देखा एक अच्छा अच्छा सा गीत भी सुनावे चाहिए थी, तो चला सुना जाए, और सुनावे सुनावे सुनी थी लता मंगेशकर जी की आवाज में।
0: चलो सुना जाए।

0: बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे। ई हम सबके आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है बहनी हरिन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
1: तो हमका जरूर बतावे कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजे।
2: हमार ईमेल एड्रेस है
3: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com। pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
2: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-2550। तो सखियन देर कोनी बात के तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
4: बेसब्री से इंतजार रही।
2: जय बनी। देखा पनघटे पे आए के बाद जाए के मन बिल्कुल ना है कहा। कितनी नीक नीक सखियन से बात होते, गीत गा नहीं होते, जानकारी होते, लेकिन देखा जाए की तो पड़ी
1: है ना, घड़ी इशारा कर रही थी ना।
2: हाँ, तो बनी हरन से किया जाए अब राम राम।
1: राम राम बनी हरन।
2: राम राम बनी हरन।

0: गंगा।
1: हाँ बहनी,
0: देखा गीत कितना सुंदर रहा है ना, पर देखा अब एक ठे संदेश है अपने पनघटे पे, ओके सुने के समय हो ही चला है।
1: चलो सुना जाए। पनघट जहाँ बातन में होत है अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे।

ग्रामीण बहनें सुन रही थी अपना पसंदीदा कार्यक्रम पनघट। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: crisis continues to test Odisha with about 14 lakh people affected across 7 districts. Although major rivers are showing a falling trend, many villages remain surrounded by water. In Baleswar, residents in several inundated villages are still dependent on boats and have complained of acute shortages of cooked food, dry food and drinking water. Reports from flood hit pockets also highlight the prolonged hardship of families who have remained cut off for days. So far, 13 people have lost their lives in the current flood. Meanwhile, the IMD has forecast very heavy rainfall in Odisha from today till 26th of this month, posing a fresh challenge to already waterlogged areas. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: In the BWF Badminton World Championships, India's women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will take centre stage in the semi-finals today. The Indian duo will face top seeds Liu Sheng Shu and Tan Ning of China at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. More from our correspondent.
2: The Indian duo stormed into the semi-finals yesterday, defeating fourth seeds Jiayi Fan and Zhang Shuxian of China 16-21, 21-15 and 21-13. With this victory, Teresa and Gayatri have assured India of a coveted medal at the prestigious championship. The duo also became only the second Indian women's doubles pair to win a medal at the World Championships. Jwalagatta and Ashwini Ponappa were the first Indian combination to achieve this feat when they clinched the bronze in London 15 years ago. Earlier in the day, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty crashed out of the tournament after losing to China's Liang Weikeng and Wang Chang. The Indian duo went down to the fourth-seeded Chinese pair in straight games 18-21, 9-21 in the quarterfinals. With Vishnu P.S., Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government imposes restrictions on manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children aged below 4 years. India to host BRICS Youth Ministers meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh this evening. India raises with Somalia issue of hijacking of two foreign flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board. US imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with US fail. Canada says it will retaliate. IMD issues orange alert for very heavy rainfall over East Madhya Pradesh today. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand to be up against China's Liu Sheng Shu and Tan Ning in semi-finals this afternoon. And with that, we end the midday news. नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत ने सोमालिया के साथ 2 विदेशी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा उठाया। इसमें 22 भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने भी समान स्तर की जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला जोड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियू शेंगशु और टैन निंग से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16

0: तथा फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान पीएलआई योजना से की।
2: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
2: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज एमटी सिबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर

0: भीड़ है।
1: टू शिप्स विच आर फॉरेन फ्लैग,
2: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
1: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वाशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले 2 छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
3: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया जिससे टरबाइन ओवर स्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की को लेकर आज रामगढ़ पतरातु मार्ग जाम कर दिया। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
4: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
5: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14 लाख लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर हैं और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना

0: व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो ईपीएफ के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फेन और झांगशू जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टल फेन में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिलामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोकगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं देवी गीत रामप्रसाद और साथियों के स्वर में।

राम प्रसाद और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना गंगा गीत। लीजिए अब सुनिए राम बाबू यादव और साथियों की आवाज में देवी गीत।

0: मझधार बिरवन के समर में करब संहार बिरवन के।
1: रामबाबू यादव और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना झूमर। लीजिए अब सुनिए पंचम लाल यादव और साथियों की आवाज में कजरी।

पंचमलाल यादव और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना कजरी। इसी के साथ लोकगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज रहे हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। विविध भारती पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा। सुनते रहिए विविध भारती।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती के गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम धरती के गीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं बरम दीन यादव और साथियों के गाए लोकगीत। तो सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए देवी गीत।
1: Mm-hmm.

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती के गीत। हम आपको सुनवा रहे हैं बरमदीन यादव और साथियों के गाए लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए गंगा गीत, स्वर बरमदीन यादव और साथियों का।

0: अभी आप सुन रहे थे बरमदीन यादव और साथियों के गाए लोकगीत धरती के गीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

कभी कभी जिंदगी हमें उस रास्ते पर ले जाती है जिस पर हम जाना नहीं चाहते। कभी कोई सपना टूट जाता है, कभी कोई कोशिश नाकाम हो जाती है, कभी मेहनत के बावजूद नतीजा हमारे पक्ष में नहीं आता और उस वक्त लगता है शायद हम हार गए। लेकिन ज़रा ठहरिए, क्या हार हार सच में हो जाती है उस वक्त? क्योंकि कई बार जिस चीज़ को हम अपनी असफलता समझ लेते हैं ना, वहीं से हमारी अगली सफलता की तैयारी शुरू हो रही होती है, या यूँ कहें वहीं से हम दोबारा सफल होने के लिए तैयार होने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्या द्विवेदी और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट यूथ शो युववाणी। आज की हमारी बातचीत थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज हम सफलता के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें भी जानेंगे, लेकिन हम आज उस पहलू को जानेंगे जहाँ से हमारी सफलता का जो रास्ता होता है वो शुरू होता है। सफलता के रास्ते से नहीं, बल्कि उन रास्तों की हम बात करेंगे जहाँ हम गिरते हैं, रुकते हैं, टूटते हैं और फिर खुद को समेटते हैं और दोबारा चलना सीखते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है शुक्रिया असफलता, सफलता सिखाने के लिए। कितनी खूबसूरत बात है ना, हम आमतौर पर सफलता को धन्यवाद देते हैं क्योंकि सफलता हमें खुशी देती है, पहचान देती है, आत्मविश्वास देती है। लेकिन असफलता, असफलता तो हमें बस एक सवाल देके चली जाती है और कई बार वही सवाल हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। सोचिए, अगर हर परीक्षा में हम पहली बार में ही सफल हो जाएं तो शायद हमें अपनी कमज़ोरियों का पता ही ना चले। अगर

हर रिश्ता हमारे हिसाब से चलने लग जाए तो शायद हमें अपने व्यवहार को समझने का मौका ही ना मिले। अगर हर नौकरी, हर प्रतियोगिता, हर सपना अपनी पहली कोशिश में ही मिल जाए तो शायद हमें धैर्य, अनुशासन और खुद पर काम करने की आदत शायद पता ही ना चले। इसलिए शायद असफल होना भी बहुत ज़रा ज़रूरी है। हमारी दुश्मन नहीं है वो हमारी एक तरीके से शुरू करने की पहली सीढ़ी है। वही है हमारी कठोर लेकिन ईमानदार शिक्षक की तरह। और एक बहुत खूबसूरत कहावत है, गिरते हैं शहसवार ही जंगे मैदान पर, भला वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। गिरना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि कई बार गिरना इस बात का प्रमाण होता है कि आपने कोशिश की। क्योंकि जो व्यक्ति कोशिश ही नहीं करता, उसके सामने असफल क्या और सफलता क्या। तो अगर आज कोई भी कोशिश सफल नहीं है, अगर कोई भी परीक्षा का परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहा, अगर कोई नौकरी आपको नहीं मिली है, अगर किसी प्रतियोगिता में आप पीछे रह गए हैं, अगर आपका कोई सपना फिलहाल अधूरा है, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि मैं इससे क्या सीख रहा हूँ, मैं इतना लकी क्यों हूँ। ये बात पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि अनलकी और लकी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस फर्क होता है हमारी मेहनत का। और उससे ज़्यादा ये पावरफुल सवाल हमारे सामने आता है कि अब मैं इससे बेहतर क्या कर सकता हूँ, और यही सवाल आपकी कहानी शुरू कर देता है। दोस्तों, असफल अक्सर जो व्यक्ति हो जाता है तो उसके सामने बस दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम खुद को दोषी बना लें या तो फिर खुद में सुधार कर लें। और सच कहूँ तो असफलता के बाद खुद से थोड़ी सी नाराज़गी स्वाभाविक होती है। दिल कहता है मुझसे अब आगे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसी वक्त अपने भीतर एक आवाज़ जो है वो निकलती है। जो लोग मेहनत करने में बिलीव करते हैं, उन्हीं के अंदर ये आवाज़ आती है कि एक बार नहीं हुआ तो क्या, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। वो कहते हैं ना कि एक दिन से सफलता नहीं बनती, लेकिन एक दिन ज़रूर बनती है। एल्बर्ट आइंस्टीन की एक कहानी थी कि वो किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो काफ़ी बार फेल हो रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि आप इतनी बार फेल हो रहे हैं तो आपको शर्म नहीं आती इस चीज़ को बार बार दोहराते हुए? तो कहते हैं कि मैं फेल हो रहा हूँ ये मैं नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूँ कि उस चीज़ को कितनी बार उस तरीके से नहीं किया जा सकता। अगर वो चीज़ें नहीं की जा सकती तो आगे क्या किया जा सकता है, मैं इस पे ध्यान दे रहा हूँ और वहीं से मेरा एक्सपेरिमेंट सफल होगा। तो उन्होंने निगेटिविटी ना देखकर उसमें छुपी पॉजिटिविटी ढूंढी, क्योंकि एक असफल परिणाम आपकी पूरी क्षमता का प्रमाण नहीं होता। एक परीक्षा का नंबर ये तय नहीं करता कि आप कितने बुद्धिमान हैं। एक इंटरव्यू का रिजेक्शन ये तय नहीं करता कि आप कितने काबिल हैं। एक असफल रिश्ता ये तय नहीं करता कि आप प्यार के लायक हैं कि नहीं। एक बिजनेस आइडिया यदि आपका फेल हो गया तो ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप क्रिएटिव हैं कि नहीं। तो यही तो फर्क है कि हम हार ना माने और थोड़ा और तैयार हो जाएं अगले बार के लिए, अपना माइंडसेट और बेहतर बनाएं। वैज्ञानिक शोध में भी इस बात को समझाया गया है कि लोग असफलता के बाद कैसे प्रतिक्रिया देखते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से कहा जाता है कि अगर ग्रोथ माइंडसेट है किसी व्यक्ति का, तो वो उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो निराश रहता है, जिसके अंदर ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, तो वो वही हार मान लेता है और शायद वो आगे प्रयास ही नहीं करता। तो दोस्तों, अपनी बातचीत थोड़ी सी यहीं पे इसको थोड़ा विराम देते हैं, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज तो है सैटरडे इवनिंग, तो कुछ म्यूज़िक, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ वाइब तो सेट करनी बनती है। तो आइए सुनते हैं अपने प्रोग्राम का पहला गीत।

तो लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। इसके लिए चाहे कितनी भी असफलताएं हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हम सफल होकर दिखाएंगे। बस अपने अंदर इतना जोश, इतना जज्बा हमेशा रखना चाहिए। आज के दौर में हम सोशल मीडिया पर हर किसी को सफल देखते हैं और उनकी सफलता देखने में लगे रहते हैं। किसी ने नई नौकरी पा ली, किसी का नया घर आ गया, किसी ने विदेश में जाके पढ़ाई शुरू कर दी, किसी का बिजनेस चल पड़ा, किसी ने लाखों फॉलोअर्स बना लिए। किसी की ज़िंदगी कितनी सुंदर, कितनी परफेक्ट है, बस हम यही देखते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी की तुलना उनसे करते रहते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, आप दूसरों की हाईलाइट रील्स देखकर अपनी बिहाइंड द सीन्स बिल्कुल उसकी लाइफ को बिल्कुल जज मत कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम हमेशा परफेक्ट पिक्चर दिखाते हैं। हमेशा वो दिखाते हैं जो एक पूरे बिहाइंड द सीन के बाद जो एक परफेक्ट सीन तैयार होता है उसकी पिक्चर हम शो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे खड़ा हुआ कितना मेहनत है, उसके पीछे लगाई हुई कितनी मेहनत है, कितनी बड़ी जर्नी है, वो शायद नहीं उसमें बताई गई होती है। तो सोशल मीडिया पर हमें अक्सर मंजिल दिखाई जाती है, रास्ता नहीं। हमें ट्रॉफी दिखाई जाती है, ट्रेनिंग नहीं। हमें सफलता दिखाई जाती है, रिजेक्शन का लेटर नहीं। हमें मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखाई जाती है, उन रातों की बेचैनी नहीं जब शायद उस इंसान को खुद पर भरोसा ही नहीं था। इसलिए अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर मत कीजिए। आपकी दौड़ आपकी है, आपकी ये दौड़ आपको ही कंप्लीट करनी होगी। और कभी-कभी आपकी गति धीमी हो सकती है, लेकिन धीमी गति का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत दिशा में हैं। याद रखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। छोटी छोटी कोशिशें ही मिलकर बड़ी उपलब्धियां बनाती हैं। आज 1 घंटा पढ़ना शायद बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं लगता आपको, लेकिन यही आज

10 मिनट एक्सरसाइज करना शायद आगे जाके आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दे दे। आज एक नया स्किल सीखना शायद आपको एक बड़ा करियर ना लगे, लेकिन आगे जाके हो सकता है ये कहीं काम आ जाए। लेकिन यही छोटी छोटी जो कोशिशें होती हैं ना हमारी, ये सालों तक दोहराई जाती हैं, तो इंसान जो है वो नहीं रहता, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है, उसके अंदर उसकी कैपेबिलिटी इन्हांस होने लगती है, और कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का, उन सब मेहनत का कहीं ना कहीं उसको असर दिखता है। उसका जो प्रोग्रेस होता है वो कभी अंडरस्टिमेट नहीं किया जाएगा। और क्योंकि असफलता आपको वो सिखा रही होती है जो सफलता आपको कभी नहीं सिखा सकती। सफलता आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर देती है दोस्तों, लेकिन असफलता आपको एक रिसाइलेंस देती है। सफलता बताती है कि आप सही थे, लेकिन असफलता आपसे ज़रूर पूछती है कि अब क्या बदलना है। सफलता आपको अप्लॉज ज़रूर दिलवाती है, लेकिन असफलता आपको इंट्रोस्पेक्शन देती है, और शायद इसीलिए सफलता के बाद पैदा हुआ जो समझ होती है वो ज़्यादा गहरी होती है। आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज टू नॉट टू वर्क ऑन इट। एक बहुत बड़ी लाइन है जो थॉमस एल्वा एडिशन ने एक बार अपनी शोध में कही थी, जो मैं आपको पहले बता रही थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी। ये ऐसी ही एक घटना थॉमस एल्वा एडिशन के साथ भी हुई थी, जब वो बल्ब का इन्वेंशन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हूँ, मुझे पता है कि किन तरीकों पे अब काम नहीं करना है। ये एक हर अचीवमेंट के पीछे की कहानी होती है दोस्तों। जब भी आप कुछ बड़ा तय कर रहे होते हैं, जब भी आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले होते हैं, जब भी आप कुछ बहुत बड़ा हासिल करने वाले होते हैं, तो उसको जब हम तय कर रहे होते हैं, तो हमारी जो केक वॉक जर्नी नहीं होती है, उसको तय करने के लिए हमें बहुत सारे कांटों भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है, और तभी जाके हमें सक्सेस नसीब होती है। तो हमेशा आपको कभी भी असफलता मिले तो याद रखिए कि वो असफलता ही आपकी सफलता की सीढ़ी है। तो हमेशा कहिए, असफलता शुक्रिया मुझे सफलता सिखाने के लिए।

तो इस खूबसूरत से गीत की धुन के बाद हम फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का अपने शो में। और अभी हम बात कर रहे थे असफलता की, उन ठोकरों की जो हमें गिराती ज़रूर हैं, लेकिन कई बार हमें उन्हीं ठोकरों से उठना भी आता है। और

संघर्ष, साहस और स्वाभिमान और प्रतिरोध की पूरी कहानी है। दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जब जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं था बल्कि किसी समुदाय का घर था, जब पहाड़, नदियाँ, खेत उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थे और फिर कोई बाहर वाला आकर उनकी ज़मीन को कहता था कि इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हें अपनी धरती पर अपनी शर्तों से जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे समय में जब अगर कोई आपको अपने लोगों की आवाज़ बनकर खड़े होने की बात कही जाए तो वो सिर्फ एक विद्रोही के रूप में नहीं सामने आता, वो एक क्रांतिकारी के रूप में वो व्यक्ति सामने आता है, वो इतिहास की धड़कन बन जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही क्रांतिकारी की, एक ऐसे ही व्यक्ति की जिसने साहस दिखाया और अपनी माटी के लिए लड़ना जायज समझा। उनका नाम है तिलका मांझी, भारत के उन शुरुआती आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता और शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। तिलका मांझी का जन्म लगभग 1750 के आसपास वर्तमान बिहार के सुल्तानगंज क्षेत्र के तिलकपुर गांव में माना जाता है। उनका मूल नाम जबरा पहाड़िया बताया जाता है। मांझी शब्द उनके समुदाय में नेतृत्व होने से जुड़ा हुआ है और आगे चलकर वे इसी नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए, तिलका मांझी। वह समय आसान नहीं था दोस्तों, 18वीं सदी थी और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपना प्रभाव लगातार विस्तार करती जा रही थी। राजस्व वसूली, स्थानीय सत्ता संरचनाओं में हस्तक्षेप करना, आदिवासी इलाकों में अपने नियंत्रण को बढ़ाना और वहाँ के रहने वाले समुदाय और वहाँ के जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ना, ये उस समय का अंग्रेजी शासन निरंतर ऐसा कर रहा था। जंगल और ज़मीन पर निर्भर समुदायों के सामने आजीविका और स्वतः जीवन को उसका संचालन करने में संकट पैदा हो रही थी। तिलका मांझी ने इस बदलाव को सिर्फ ऐसे नहीं देखा कि ये एक छोटा सा बदलाव है, उन्होंने देखा कि ये उनकी ज़मीन के खिलाफ विद्रोह है। उन्होंने अपने आसपास के आदिवासी समुदायों को संगठित किया और अंग्रेजी सत्ता तथा उसके स्थानीय सहयोगी तंत्रों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। उनका आंदोलन सिर्फ सत्ता के खिलाफ विद्रोह नहीं था, इसके पीछे अपनी ज़मीन, अपना जंगल, आज़ादी और सम्मान को बचाने का भाव था। कहा जाता है कि तिलका मांझी ने पहाड़ी और जंगलों के भूगोल को अपनी ताकत बनाई और अपने साथियों के साथ जंगलों और पहाड़ियों के बीच से संघर्ष करते हुए अंग्रेजी सेना का सामना करते थे। उनके नेतृत्व में हुआ ये प्रतिरोध आगे चलकर पहाड़िया विद्रोह और तिलका मांझी के संघर्ष की स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उनके संघर्षों की सबसे चर्चित जो घटना है वो एक ये है कि ऑगस्टस क्लीवलैंड से, जो उस समय के भागलपुर क्षेत्र के ब्रिटिश अधिकारी थे, लोकप्रिय ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार तिलका मांझी ने एक तीर से क्लीवलैंड पर हमला किया था। इस घटना ने अंग्रेजी प्रशासन को हिला दिया था और तिलका मांझी ब्रिटिश सत्ता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। लेकिन दोस्तों इतिहास में सिर्फ एक युद्ध की घटना ही महत्वपूर्ण नहीं होती, असली सवाल ये है कि एक व्यक्ति के भीतर वो साहस आया कहाँ से। शायद जवाब है अपनी मिट्टी से जुड़ाव रखना। जो व्यक्ति अपनी मिट्टी से, अपने देश से जुड़ाव रखता है ना, यदि उसको चोट पहुंचती है, उस मिट्टी को चोट पहुंचती है, उसकी माँ को चोट पहुंचती है, तो यह विद्रोह का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जब आपको अपनी ज़मीन से प्यार होता है ना दोस्तों, जब आपको अपने लोगों की चिंता होती है, जब आपको अन्याय दिखाई देता है और आप उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने का फैसला करते हैं, तब संघर्ष सिर्फ एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं बन जाता, वह सामूहिक संघर्ष बन जाता है। क्योंकि लोगों को भी दिखाई देता है कि वो व्यक्ति उनके लिए इतना बड़ा विद्रोह कर रहा है। तिलका मांझी की कहानी हमें यही बताती है कि स्वतंत्रता सिर्फ सत्ता बदलने का नाम नहीं है, स्वतंत्रता का अर्थ है अपने भीतर
अपना अधिकार, अपनी पहचान और अपना

अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी धरती के सम्मान के लिए जीने का अधिकार है। उनका संघर्ष आगे बढ़ता गया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाया। लंबे समय तक जंगलों और पहाड़ियों में संघर्ष करने के बाद अंततः वे अंग्रेजों के हाथ लगे। ऐतिहासिक विवरणों के से पता चलता है कि उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद की यातनाओं का वर्णन उसी में मिलता है। 13 जनवरी 1785 को भागलपुर में उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की बात व्यापक रूप से दर्ज और स्मरण की जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, व्यक्ति को ख़त्म किया जा सकता है लेकिन उसके विचारों को नहीं। जैसे महात्मा गांधी हमारे बापू आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी वो स्वच्छता की सीख, उनकी जितने भाव हैं वो सब आज भी हमारे बीच हैं। तिलका मांझी का जीवन भले ही बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रतीक बन गया। अन्याय के सामने खड़े होने के लिए आपके पास बड़ी सेना नहीं, बड़ा साहस होना चाहिए। इनका जीवन यही हमें बताता है। बहादुर वह है जो डर के बावजूद भी आगे बढ़ना जानता हो। और शायद इसी भावना को शब्द देते हुए हम कह सकते हैं, जिस मिट्टी ने जन्म लिया उसके सम्मान के लिए उठाया गया हर कदम इतिहास बन जाता है और वो व्यक्ति आगे चलकर तिलका मांझी कहलाता है। तिलका मांझी का जीवन हमें अपनी जड़ों को पहचानने, अपने इतिहास को समझने और उन आवाज़ों को याद रखने की प्रेरणा देता है जिन्हें हम अपने समय की कठिन परिस्थितियों के बीच हार मानने की जो ललक है, जो हार ना मानने की जो हमारी उम्मीद होती है कि हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, अपनी मिट्टी के लिए कुछ करेंगे, वो जुनून, वो जज्बा, वो तिलका मांझी का जीवन हमें सिखाता है। और हम पहले भी बात कर रहे थे कि असफलताओं से नहीं डरना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वही हमें सफलता सिखाती हैं। और तिलका मांझी का जीवन भी हमें इसी ओर एक हमें इशारा करता है कि हमें भी अपने जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए, अपने देश के लिए और अपनी मिट्टी के लिए कभी भी बलिदान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते ही ये गीत।

0: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने,
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: तो अब बारी है हमारे आज के खास सेगमेंट की, आपके पसंदीदा सेगमेंट की, जिसका नाम है आज की शाम आपके नाम सैटरडे इवनिंग स्पेशल प्रोग्राम। और आज की शाम जो है वो जाहिर सी बात है बहुत सारे अभिनेत्री और अभिनेताओं पर हम आधारित रखते हैं, बहुत सारे सिंगर्स पर रखते हैं, बहुत सारे एक्टर्स पर रखते हैं, लेकिन आज की शाम जो हम समर्पित करने जा रहे हैं, जिनकी बात करने जा रहे हैं, उनकी आँखों में ही एक अलग कहानी होती थी, आवाज़ में एक ठहराव होता था और अभिनय में बहुत सादगी जो सीधा दिल तक पहुंचती थी। जी हाँ, आज की शाम में हम बात करेंगे आज अभिनेत्री राखी की, राखी गुलजार। हिंदी सिनेमा का वो नाम जो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा कहना शायद उनके साथ नाइंसाफी होगी। उन्होंने पर्दे पर कभी मासूमियत बनकर दिल जीता, कभी एक मजबूत औरत बनकर अपनी पहचान छोड़ी, कभी माँ, प्रेमिका और पत्नी जैसे किरदार में एक ऐसी जान डाल दी कि किरदार खत्म हो गया लेकिन एहसास रह गया। राखी ने अपने फिल्मों का सफ़र जो शुरू किया वो था फिल्म जीवन मृत्यु से, फिर एक के बाद एक फिल्में उनका हिस्सा बनती गईं जिन्होंने उन्हें हिंदी सिनेमा को यादगार अभिनेत्री बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की। दाग, ब्लैकमेल, तपस्या, राम लखन, करण अर्जुन, दूसरा आदमी, शक्ति जैसी फिल्म में उन्होंने अलग अलग रंग और अलग अलग किरदारों में अपनी अभिनय दिखाया। और उनकी खासियत थी उनका अभिनय कभी ज़रूरत से ज़्यादा शोर नहीं करता था, कई बार सिर्फ एक नज़र, हल्की सी मुस्कान और आवाज़ का उतार चढ़ाव पूरा भाव कह जाता था।

राखी ऑन स्क्रीन मौजूदगी में एक अलग ही वॉर्म्थ दिखाती थी। वो उनकी कलाकारी कुछ ऐसी थी कि जिन्होंने खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं रखी, बल्कि अपने अभिनय, अपनी अभिनय की क्षमता की गहराई से उसे जोड़ दिया। और फिर आता है वो दौर जब राखी ने माँ के किरदारों में एक अलग ही पहचान दिखाई। करण अर्जुन में माँ की किरदार हो या राम लखन में संवेदनशील माँ का अंदाज, उन्होंने साबित किया कि उम्र के साथ अभिनेत्री की चमक कम नहीं होती, बल्कि किरदारों में और गहराई आ जाती है। शायद इसीलिए राखी को देखते हुए मन में एक बहुत अच्छी बात आती है कि कुछ कलाकार पर्दे पर सिर्फ किरदार नहीं निभाते और कुछ कलाकार सिर्फ कलाकार अपने किरदारों को याद बनाकर उसे पर्दे पर ही छोड़ देते हैं। राखी उन्हीं कलाकारों में से एक थी। तो जो आज का हमारा ये आज की शाम आपके नाम स्पेशल सेगमेंट है, पुरानी हिंदी सिनेमा की खूबसूरत यादों के साथ समर्पित है राखी गुलजार के नाम, उनकी सादगी, उनकी अदाकारी और उनके तमाम किरदारों के नाम जो आज भी हमारी यादों में कहीं ना कहीं मुस्कुरा रही हैं।

तो दोस्तों इसी के साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो अब समाप्ति की ओर पहुंच चुका है। तो जाते जाते हमारे प्रोग्राम का एक छोटा सा सेगमेंट है क्वेश्चनेयर, जिसमें हम पूछते हैं एक सवाल और हमारे जो श्रोता साथी होते हैं वो देते हैं उसका जवाब। हमारा आज का सवाल है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? आप अपनी प्रतिक्रिया, अपना उत्तर हमें दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी के जरिए, जो कि है yuvvaniald@gmail.com, और व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। हमें बहुत खुशी होगी आप हमसे जुड़ेंगे। और इसी के साथ मैं बस इतना सा कहना चाहूँगी कि आँखों में पानी रखो, होठों में चिंगारी रखो, थोड़ा सा मुश्किल है सफ़र लेकिन सफ़र जारी रखो। तो दोस्तों आप असफलताओं से घबराइए नहीं, अपनी सफ़र पे जारी रखिए, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मैं दिव्या लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकननी की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया और प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामिन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। यह दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सीबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुटलैंड तट के पास अगवा किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पहले कैथोलिक संघीय मंत्री और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक शहबाज भट्टी की हत्या के 15 साल बाद भी ईसाई, हिंदू और अहमदिया सहित अल्पसंख्यक समुदाय देश भर में भेदभाव और धार्मिक स्थलों पर हमलों का सामना कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया संस्थान पीजे मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अत्याचारों में अपहरण, जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह शामिल हैं। रिपोर्ट में इश्निंदा कानूनों के दुरुपयोग का भी उल्लेख है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर दो श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की।
1: आज इस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे। वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलच्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना और लोगों, विशेषकर युवाओं को सेवा कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की। और खेलों में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से जारी है। महिला डबल्स के पहले गेम में भारतीय जोड़ी ने अपने नाम किया है। यह मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच अम्स्टरडैम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders today at a resort in Sukna, Siliguri. After the meeting, the Home Minister announced that a high-level committee to resolve the issues would be formed under the chairmanship of interlocutor Pankaj Singh, former BSF Director and Deputy National Security Advisor. Briefing the media after the meeting, Darjeeling Lok Sabha MP Raju Bista said the meeting was very fruitful and all the Gorkha leaders constructively presented their issues. After hearing the leaders, the Chief Minister, Shubhendu Adhikari, also expressed his views and commitment regarding concerned issues. The Home Minister also held a meeting to review security arrangements along the country's eastern borders, with a special focus on strengthening security at the Siliguri corridor, also called the Chicken's Neck. Senior officials
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती सुनिए रात 9:30 बजे। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम होगा, इसमें ग्रामीण भाई सुनेंगे डॉक्टर राकेश सिंह से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत, श्वास एवं दमा रोग कारण एवं निदान। 7:31 पर रमेश कुमार शुक्ल की वार्ता होगी गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य में लोक चेतना। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए कौशिकी राय के गाए गीत शाम 7:45 पर। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। रविवार से ये अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर राहुल कुमार से सुरेश कुमार की बातचीत, डेयरी उद्योग को कैसे सफल बनाएं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर ऋचा पांडे की वार्ता, पिकॉज जानकारियां एवं सावधानियां। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित राम कृष्ण का क्लैरियोनेट वादन सुनिए 7:30 बजे। गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन होगा 12:15 बजे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में मेधा के गाए भजन और गीत आप सुनेंगे 9:50 पर। माहेश्वर दयाल के गाए भजन और गीत शाम 7:45 पर प्रसारित किए जाएंगे। श्यामलाल बेगाना और साथी और सुषमा मौर्य के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे 10:05 पर। डॉक्टर नीलम शर्मा के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं दिन में 2:30 बजे। दिन में 11:15 बजे बच्चों का कार्यक्रम होगा बाल संघ, इसमें बच्चे सुनेंगे गुंजन और शैल श्रीवास्तव के बीच बातचीत, खेल खेल में सीखो विज्ञान। 1:15 पर हैलो अनुरोध, श्रोता अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे हैलो अनुरोध कार्यक्रम में। शाम 5 बजे बाल गोपाल कार्यक्रम में कुंज बिहारी लाल मौर्य की कहानी सुनवाई जाएगी ज्ञानेश की सूझबूझ। शाम 5:15 बजे युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम होगा, जिसमें किसान भाई सुनेंगे मेरी खेती मेरी बात। श्रोता अपने पत्रों और संदेशों के उत्तर सुनेंगे चिट्ठी आई है कार्यक्रम में रात 8 बजे। श्रोताओं के पत्रों के उत्तर देंगी नेहा गुप्ता और आपके साथ होंगी वंदना राठौर। रात 8:30 बजे आज इतवार है, इस कार्यक्रम में सुनिए दिनेश भारती की लिखी झलकी धंधेबाजी और गजलों पर आधारित कहकशां कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात 9:30 बजे। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों

से संबंधित सूचनाएं। सरिता देवी पत्नी त्रिलोकीनाथ गौतम निवासी ग्राम निर्मल गिरधर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री आकांक्षा देवी जिनकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, कद 5 फुट 1 इंच, रंग गोरा और चेहरा गोल है। ये दिनांक 13 जून 2026 शाम 5:30 बजे से लापता हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके मिलने की सूचना मिले कृपया इस मोबाइल नंबर पर सूचित करें। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 8931080739। एक बार फिर से सुन लीजिए 8931080739। और इसी क्रम में मोहम्मद इरफान पुत्र माजिदुद्दीन कोखराज कौशाम्बी से सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री अल्फिसा बानो दिनांक 10 मई 2026 शाम 5 बजे से लापता हैं। इनकी आयु है 14 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। इन्होंने शलवार सूट पहन रखा है, लंबे बाल हैं इनके। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके मिलने की सूचना मिले कृपया इस पते पर सूचित करें। पता नोट कर लीजिए मोहम्मद इरफान पुत्र माजिदुद्दीन ग्राम डनमई पोस्ट कोखराज थाना कौशाम्बी। तो ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

रक्तदान तकलीफ दे नहीं है, इसे देने में समय भी नहीं लगता। इससे किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है, वो व्यक्ति आपका अपना भी तो हो सकता है। कृपया रक्तदान करें। रक्तदान महादान।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे देशगान समवेत स्वरों में। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सिलिगुड़ी नगरे वरिष्ठैः गोरखा नेतृभिः सह मेलनम् अकरोत्। वार्ताकारस्य पंकज सिंहस्य अध्यक्षतायां समाह्वानानां समाधानाय उच्चस्तरीय समित्याः घोषणा अपि जाता। सर्वकारेण चतुर्वर्षेभ्यः न्यून बालकानां कृते क्लोरफेनिरामीन मेलिएट तथा फिनाइले फ्राइन हाइड्रोक्लोराइड इत्येतैः युक्तानां सर्वाणि निश्चित मात्रा संयोजनानि निर्माणे विक्रयणे वितरणे च प्रतिबन्धं स्थापितम्। अद्य सायंकाले आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम नगरे ब्रिक्स युवा मन्त्रिणां सभा आरभ्यते। भारतः सोमालिया देशेन सह द्वाविंशतिः भारतीय नाविकैः सह विदेशीय ध्वजयुक्तयोः वाणिज्यिक नौकायानयोः अपहरणस्य विषये चर्चां करोति। अपि च BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां भारतीय महिला डबल्स युग्मस्य त्रिसा जाली गायत्री गोपीचन्दयोः तथा चीनदेशस्य लियू शेंग शू टेन निंग इत्येतयोः मध्ये उपान्त्यचक्रीय स्पर्धा सम्प्रति नवदिल्ल्यां प्रचलति। पश्चिम बंगस्य पर्वतीय क्षेत्राणां सर्वैः पक्षधारकैः सह केन्द्रीय मन्त्रिणा अमित शाहेन सिलिगुड़ी नगरे उपवेशनम् एकं कृतम्। अद्य विषये अस्मिन् निर्णयो अयं जातः यत् तत्रत्य पर्वतीय क्षेत्राणां समाह्वानानां स्थायीय समाधानार्थं पूर्व IPS अधिकारिणः पंकज सिंहस्य नेतृत्वे एकस्याः मध्यस्थ समित्याः संरचना जाता। समितिरियं केन्द्रीय कार्यालयं प्रति प्रतिवेदनं प्रेषयिष्यति। सिलिगुड़ी नगरस्य सुकार क्षेत्रे अनुष्ठिते अस्मिन् उपवेशने पश्चिम बंगस्य विपक्षिनेतारः सुवेन्दु अधिकारी अन्ये च गणमान्य जनाः उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रोक्तं यत् भारतदेशेन लाइसेंस राज इत्यस्य कालावधौ उत्पादन दण्डितकरणस्य स्वीय दृष्टिकोणे आधारभूत परिवर्तनं विहितमस्ति। साम्प्रतं तत्स्थाने प्राशासनिक प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव ILPI इत्यनया योजनया माध्यमेन पुरस्कृतः क्रियते। प्रवर्तमान वर्षीय इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम इत्यस्मात् मंचात् संबोधने प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् पुरातनी पद्धति सांप्रतिकी पद्धतितः भिन्ना वर्तते। प्रधानमंत्रिणा PLI योजनायाः सफलता अपि चर्चिता, यत्र 2,50,000 कोटि रूप्यकाणां निवेशः जातः। 22,00,000 कोटि रूप्यकाणां उत्पादनं क्रयणं 15,00,000 रूप्यकाणां निर्यातः अपि जातः। 14,00,000 वृत्त्यवसराणि अपि सृजितानि।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वही आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2,50,000 करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14,00,000 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: श्री मोदी भारतदेशः अन्ताराष्ट्रिय समुदायस्य आशा विकासस्य च उज्ज्वल स्थानं विद्यते इति अपि प्रतिपादितवान्।
1: दुनिया में ग्रोथ को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं। दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने अपनी 25 करोड़ आबादी को

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने पंचायत घर।

पंचो राम राम। हम कई किसान भाई खेती किसानी में लगा बाटे ना, आई समय में खेती में देखा जाए तो खरीफ का मुख्य फसल जोन बा धान खेते में बा है। एक महीना से ज़्यादा लगाए भी होई गयो बा, हरियराई आई बा, जोन हिसाब से झिमझाम होत बा भाई, पानी भी बरसा जात बा तो दिक्कत नहीं आवत बाटे है। एकरे साथे साथे ज्वार बाजरा मक्का भदही उड़दी तिल्ली सब कभी खेती की है बटन किसान भाई, साग सब्जी कभी खेती की है बाटे ना। और देखे में आवत भाई कि जवन भी खेती किसानी बा अपन किसान भाई रोज देखा तहन ताकत तहन कोनो दिक्कत आओ तो कर उपचार भी करत बाटन। तो देख भाई देख चाहे कि भाई कि अगर खेती किसानी में कोनो भी दिक्कत आवत तो जैसे धान के फसल में अगर खर पतवार उगी आवत बा तो ओका निकाल दे कि चाहे, एकरे अलावा कोनो भी रोग दोख बेरामी अगर देखें तो भैया हो कृषि वैज्ञानिक जवन सलाह देथिन ओका मान के ओकरे हिसाब से उपचार करें। एक बात और आवत कि भाई पानी तो आज बरसत बा, मान ल कानना बरसे या कोनो फसल का होत बा का नाही तो सिंचाई के बड़ी जरूरत होत था। वैसे भी कहा गवा बा कि रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गयन उबरे मोती मानुष चून। तो भैया पानी के बड़ा महत्व बाटे, खास करके धान के फसल के लिए तो पानी बहुते जरूरी बा। धान पान केरा ई पानी के चेरा कहा गा बा। तो सब देखे में आवत भाई काफ़ी जौन क्षेत्र ऐसन बाटे जहाँ सिंचाई के सुविधा भी नहीं ना, और काफ़ी फसल कम सिंचाई सही सुविधा ना होए से भी अच्छी फसल नहीं हो पावत। तो इसके करे बड़े तमाम तरह के योजना के अपन सरकार चलाए बा। ऐसा एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ई योजना जोन बाटे है किसान भाई चलत बा है, 2015 में शुरू भई रही है अपन सरकार चलाए रही। एकर जोन मकसद बा उ बा हर खेत के पानी और हर बूंद पानी के हर बूंद से अधिक फसल लक्ष्य रख के जखन शुरू किया गया बा। एमें जोन भी सिंचाई के क्षेत्र जहाँ माही सिंचाई नहीं हो पावत बाटे जहाँ तक होत बाटे और सिंचित क्षेत्र के विस्तार करे के बा है। एकरे अलावा आप देखे में आवत जोन सिंचाई के आधुनिक विधि है टपक और फव्वारा विधि, एका बढ़ावा दे जात बा। अपन अब सरकार अपन अनुदान भी देत है जोन बाटे किसान भाई एक ब्लॉक में जाए के कर जानकारी ले के लाभ ले सकथिन। टपक सिंचाई विधि से जोन बाटे फव्वारा विधि से पानी के एक एक बूंद जोन बाटे फसल के उपयोग में आवत है, पानी के बचत भी होत है। अब पानी के बचत जरूरी बा, जैसे देखे में आवत है गर्मी में भूजल स्तर कम हो जात है तो हमें ये भी शामिल बा कि जोन बरसात होत बा एकर पानी इकट्ठा कई जाए संचयन कई जाए जौने से भू जल स्तर बढ़े। एकरे अलावा देखे में आवत है पे अनुदान जोन छोटे जोन सीमांत किसान हैं उनका आर्थिक सहायता भी दे जात है, पाइपलाइन बिछावे बदे तालाब के निर्माण बदे सहायता भी दी जात है। तो किसान भाई इस सब योजना जोन भी किसान भाई चलावत बाटे अपन सरकार उ योजना का लाभ मिले तब मिले जब भैया ओका जाए सब पता करें जोन भी जो पात्रता बा ओका पूरी करें और लाभ लें, जैसे खेती बढ़िया हो जोन फसल उत्पादन बढ़िया हो और किसान भाई खुशहाल हों। इत देखें बात बत कही रही। एकरे अलावा आज परिवार कल्याण के बात आए ते हमें हम एक ही बात बत कही सुनवाऊ श्वास एवं दमा रोग कारण एवं निदान पे डॉक्टर राकेश सिंह से बात बत कही भाई का सुनवाई जाए। मुनावा करे पहले गीत गौनई सुन लिया जाए तो रघुराज सिंह यादव के संघातिन गाई गौनई ब किसान भाई का सुनई।

0: हाँ किसान भाई देखें रघुराज सिंह यादव संघातिन के विकास गीत सुनें। अब देखा हम बात करते हैं आज परिवार कल्याण के बात के दिन आए थे हमें श्वास एवं दमा रोग कारण और निदान ये पे डॉक्टर राकेश सिंह से प्रवीण कुमार मिश्र के बात बत कही भाई वे किसान भाई एक का सुनई और गुनई।
1: किसान भाई, हम कहीं देखा तमाम तरह का रोग बीमारी हैं, अगर उनका सही पहचान न हो और उसके बाद इलाज चलत रहे तो शरीर के लिए तकलीफ तो होबो करत है। कभों कभों तो भैया देखा ऐसे जान से भी हाथ धोए पड़ जाता है। इन्हीं में से एक बीमारी बाटे अस्थमा की, जेके बिना आज जानकारी दे के खातिर आज हमरे बीच में हैं श्री राकेश सिंह जी। आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं दमा स्वास्थ्य व टीबी फेफड़ा संबंधी बीमारी के। डॉक्टर साहब, आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। आपसे हम सबसे पहले ये जानकारी चाहब कि अस्थमा किस तरह की बीमारी है, बताओ।
2: अस्थमा जनरली जो है श्वास नलियों की बीमारी है, जिसमें कि मरीज को बार बार खांसी होती है, सीने में जकड़न महसूस होती है, उसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने पर सीटी जैसी आवाज़, खर खर की आवाज़ आना या चलने में सांस फूलना, ये सब जो है अस्थमा के लक्षण हैं। इसमें बेसिकली सांस की नली की ही बीमारी है, जिसमें कि सांस की नली में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें आती हैं।
1: जानना चाहब कि जो अस्थमा की बीमारी बाटे ये कैसे उत्पन्न होता है जमना है?
2: इसके लिए दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो जेनेटिक बोलते हैं, जेनेटिक मतलब जो हम लोगों को परिवार में खून से मिलती हैं, जैसे तो कुछ बीमारियां भी ऐसे जीन्स में मिलती हैं, परिवार में चलती हैं, जिसके माँ बाप या दादा दादी नाना नानी किसी को भी खून में इस तरह की बीमारियां रही हैं परिवार में, उनकी संभावना ज़्यादा है कि उनके बच्चों में भी ऐसी बीमारियाँ होंगी। दूसरा कारण होता है इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट का जैसे कि जहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, कुछ ऐसे कण या एलर्जेंस जिनको हम लोग बोलते हैं, उनकी वजह से भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो धुआं हो गया, धूल हो गई, भूसा का वो हो गया, भस जो उड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा तेज़ गंध है, तो इन सब चीज़ों से भी दिक्कतें होती हैं अस्थमा की।
1: जैसे हम एक चीज़ जानें, जब जो व्यक्ति के मान लें कि अनुवांशिक रूप से उनका ही बीमारी के बाटे की पीढ़ी दर पीढ़ी देखी थी लोगों के

0: ले जाता है। ऐसे आदमी की पहचान कैसे की जाए कि उनका समय रहित उपचारित किया जा सके?
1: उसके लिए शुरू से ही ध्यान देने की बात ऐसा है कि जो नॉर्मल खांसी जुखाम बुखार होता है, अगर किसी भी बच्चे को शुरुआत से ही नॉर्मल से ज़्यादा, जैसे नॉर्मल खांसी बुखार का जो सीज़न और टाइम है 5 से 6 दिन में ठीक हो जाता है, अगर किसी बच्चे को खांसी जुखाम हुआ और लगातार बना हुआ है 10 दिन 15 दिन 20 दिन, नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा ले रहा है, तो उस समय हमको सचेत हो जाना चाहिए कि अस्थमा की तरफ जा रहा है, और उसके परिवार में उसके माँ बाप या दादा किसी को है तो तुरंत कान खड़े होने चाहिए कि हाँ भाई, ये हमारा जो बच्चा है इसको अस्थमा की बीमारी हो सकती है, तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं और उनसे उनका उचित जो है वो परामर्श करके उसका इलाज कराएं।
0: आप जैसे देखा लड़कियों के दिलम के बात आए छोटे बच्चन के बात, तो इनमें देखा जाता है कि ज़्यादातर ही 6 महीना का बच्चा है या उससे बाद ही लक्षण प्रतीत होते हैं देखे में, तो मतलब ऐसे छोटे बच्चन के लिए का उपाय किया जाए कि उनका इस तरह से चीज़ों से बचावा जा सके?
1: बच्चों के लिए मेन चीज़ से होता है कि उनको ठंड से बचाएं, जब भी मौसम बदले उनको ढक के रखें और सीधे पंखे या कूलर के सामने ना लिटाएं, और ज़्यादा गीले में ना सोने पाएं। बच्चे जैसे बार बार पेशाब कर देते हैं तो गीला है तो बहुत देर तक गीले में ना रहने पाएं, ये सब चीज़ों का ध्यान देना होता है।
0: इसमें एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, कि देखा जाता है कि सिर्फ धुआं से ही मतलब कमो कमो अस्थमा नहीं होता बटे, और भी का कारण है कि जैसे बीमारी पकड़ सका था जो ना है।
1: हाँ, इसके लिए जैसे कि जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं इसका धुआं निकलता है, धुएं के अलावा इस हम लोग बीड़ी सिगरेट बहुत सारे लोग पीते हैं उसकी वजह से चिमनियों का धुआं निकल रहा है, या परागकण होते हैं जैसे कि जब मौसम मार्च अप्रैल का होता है जिस समय फसल में जो है दाने आने वाले होते हैं उसके पहले परागकण होते हैं तो वो हवा में आते हैं। कभी कभी घर में हम लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं, उनके जो डेंड्रफ होता है खौसी जो बोलते हैं गाँव की भाषा में, उसकी वजह से भी आपको अस्थमा की दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर अचानक आपको कोई दिक्कत नहीं थी घर में, आपने कुत्ता बिल्ली पाला और आपको अचानक दिक्कत होने, इसका मतलब कि जो कुत्ते या बिल्ली में कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको दिक्कत हो रही है।
0: देखें, हम कहीं अपने किसान भाई को इस तरह से बीमारी से बहुत पहचान नहीं कर पाते, देखा जाता है कि अगर खांसी आवत बाटे तो देसी उपचार करते हैं, या देखा जाता है कि बहुत लोग झराव शुरू कर देते हैं कि भैया ये उपाय कर लिया इसे ठीक हो जाए, तो ऐसन में ओकर का लक्षण है जैसे पहचान सकें सीधे से जो ना है एक उपचार कराए सकें?
1: बार बार खांसी होना, जल्दी जल्दी खांसी होना, सीने में जकड़न महसूस होना, गले से खर खर की या सीटी जैसी की आवाज़ होना, ख़ास तौर से रात में अगर दिक्कत ज़्यादा होती है तो ज़्यादा संभावना है कि अस्थमा होगा, या चलने में थोड़ा सा भी चले 4 कदम तो सांस फूल गई, तो ये लक्षण हैं जिनसे आप लोग पहचान सकते हैं कि हाँ हम लोग लक्षण अस्थमा के हैं या नहीं हैं।
0: हमके देखा जे भी अस्थमा का मरीज बाटे तो वो का सावधानी बरतें अपने जीवन में कि जिससे उनका आगे चल के दिक्कत ना हो, और ऐसे ऐसे को अगर अस्थमा होगी बा तो उनका का नुकसान ऐसे हो सकता है?
1: उसके बचने के लिए उसको ख़ास तौर से जिस चीज़ से दिक्कत होती है, हर मरीज को अलग अलग चीज़ों से दिक्कत हो सकती है, किसी को धूल से है तो किसी को धुआं से है, किसी को जो घर में हम लोग झाड़ू लगाते हैं या डस्टिंग करते हैं जाला उतारते हैं झाड़ू से, तो उससे जो है उसके जो कीटाणु होते तो उससे दिक्कत होती है, तो जिस चीज़ से दिक्कत हो रही है उससे बचना है, बचाव सबसे मेन कारण है। उसके साथ साथ दवाएँ मेडिसिन जो होती हैं वो लेना चाहिए मरीज को।
0: डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम जानना चाहब कि जैसे कहूँ दूर अंचल में किसी भी व्यक्ति जो अस्थमा से पीड़ित है, मौके पे अगर उसके पास कोनो औषधि नहीं ना दवा नहीं ना, तो क्या तरीका बाटे कि वो अपन खांसी कंट्रोल कर सका था, कुछ का ऐसा उपाय बाटे कि जो मौके पे अपना इलाज कर सके?
1: उसके लिए तो फिर उपाय संभव इस तरह से है कि गहरी गहरी सांसें खींचे, थोड़ा सा रोकने की कोशिश करे, और अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था है या जो दवाएं दी जाती हैं भाप द्वारा अगर किसी आसपास अवेलेबल है तो उसको तुरंत तो देनी चाहिए ताकि उसको फौरी राहत मिल जाए, उसके बाद फिर अपना वो डॉक्टर के पास जाके इलाज करा पाए।
0: कहा जाता है कि जैसे छोटे बच्चन का अगर अस्थमा हो ये बाटे तो धीरे धीरे एक उम्र के बाद या 6 से 7 साल के बाद कम होता जाता है, उसके बाद इस समस्या का हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है डॉक्टर साहब, कि कुछ चीज़ बनी भी रहते हैं?
1: कुछ बच्चों में हमेशा के लिए चला जाता है, यूजुअली 10 साल के आसपास की उम्र तक कुछ बच्चों का चला जाता है, कुछ बच्चों का नहीं जाता, उनको फिर लगातार इलाज की ज़रूरत होती है ताकि बीमारी हम लोग जड़ से नहीं ठीक कर सकते लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं, तो जितने में है उतनी बनी रहे आगे ना बढ़े। कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो उसको बचा के बना के रखेंगे तो देर तक चलेगी, नहीं करेंगे जल्दी ख़राब हो जाएगी।

0: अच्छा देखा जाता कि जो भाप या नेबुलाइजर करावा जाते हैं उन्होंने सब, जो इनहेलर भी एक माँ बहुत प्रसिद्ध है, तो कितना लाभदायक बाटे और एका कब कब लिया जा सकता है?
1: इन्हेलर बेसिकली दो तरह के हैं, उसमें इलाज का जो तरीका है दो, एक तो अभी दिक्कत हुई अभी तुरंत राहत चाहिए, दूसरा बीमारी है उसको रोकना है आगे बढ़े नहीं, तो उसको हम तो दो तरह की दवाओं में बांट सकते हैं, एक बोलते हैं प्रिवेंटर, एक होता है रिलीवर। रिलो मतलब तुरंत का तुरंत राहत हो गया, सांस फूल रही है, खांसी आ रही है, दवा दी आराम हो गया। दूसरा हुआ प्रिवेंटर, मतलब बीमारी आगे बढ़े नहीं उसको रोकने के लिए वो रेगुलर कंटिन्यूअस लंबे समय तक लेना पड़ता है, ताकि बीमारी जहाँ पे वहीं पे रोक पाए, आगे बढ़े नहीं बार बार। तो बहुत ही कारगर दवाएं हैं जो इन्हेलर या खींचने वाली जो दवा दी जाती है या भाप दी जाती है, बहुत ही कारगर और बहुत ही सुरक्षित दवाएं हैं, किसी भी उम्र में किसी को भी दी जा सकती है, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो, चाहे 60 साल का बूढ़ा हो, चाहे 90 साल का बूढ़ा हो, किसी को दिया जा सकता है भाप वाली दवाई।
0: देखा ही जाता है कि तरह के जो भी रोगी हैं, खास करके जब मौसम बदलता है तो ओहमा ये समस्या अधिक आवत है। अगर मतलब उस समय अगर समस्या नहीं भी आई बाटे, इस तरह के मरीज की दवा दे दी जाए, अगर मान लीजिए खांसी नहीं भी आई है, तो का ये कितना प्रिवेंट उपचारित कर
1: हाँ
0: सकती है?
1: वही, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब किसी चीज़ को होने से पहले रोक लेना। तो जब मौसम बदलता है तब लक्षणों के उभरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो उस जैसे कि इधर हम लोग अक्टूबर नवंबर में जब मौसम बदलता है उस समय 2 महीने के लिए खाने की कुछ दवाएं आती हैं जिनको हम लोग प्रिवेंटर बोलते हैं, वो ले सकते हैं। उधर फरवरी मार्च में जैसे ही फरवरी शुरू हो लेना शुरू कर दे, 2 महीना गुजर जाए ठीक रहा तो आप बंद कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, तो उनको प्रिवेंटर हम लोग बोलते हैं। तो ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं बाज़ार में और हम लोग पास हैं जिनसे कि प्रिवेंशन किया जा सकता है।
2: हाँ किसान भाई, देखें आज परिवार कल्याण के बात में बात बतकही में श्वास एवं दमा रोग कारण और निदान काबा बात कहन डॉक्टर राकेश सिंह से प्रवीण कुमार मिश्र के बात बतकही। किसान भाई सुनिन सुनिन भैया, तो गुना और सेहत का ध्यान रखें, काहे से कि भाई सेहत बहुत जरूरी बा, चाहे लड़कियन का दिलन को हो चाहे आपन हो, और तब खेती किसानी भी बढ़िया होए। तो देखें जौन भी कार्यक्रम हमारे सब के जात भैया हो, किसान भाई सुनत बाटन, उनका मन होत होए का अच्छा व का खराब का प्रतिक्रिया दे चाहतिन, तो एक नंबर लिख लें 800-4926-2550, ई नंबर पे अपन व्हाट्सएप पे संदेश भेज सकथिन। एकरे अलावा जौन बाटे है का कहथिन फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आकाशवाणी प्रयागराज के नाम से प्रोफाइल बनी बा, वो हमें भी भेज सकथिन, पसंद कर सकथिन, तो ये बात का ध्यान रखें। एकरे अलावा खेती किसानी में इस समय में जरूरी बा कि अपने खेत के दोनों टाइम संझा सवेरे देखभाल करत रहें, जोन पशु रखे बाटे पशुअन का देखभाल करें, काहे से कोनो न कोनो रोग दोग बिरामी हो जात है, तो ओकर देखभाल बहुत जरूरी बाटे, अगर अच्छे से देखभाल करी तो पशु भी स्वस्थ रहें, साथ साथ लड़कियन का दिलन का पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दें, उनके सेहत पे ध्यान दें, तबे जोन बाटे का कहथिन खेती किसानी बढ़िया होए, बाग बागवानी भी अगर लगाए हुए तो का सुरक्षित करें, काहे कि बरसात में पेड़ पौधा लगाओ बहुत जरूरी बा, उससे जोन बस सुरक्षा मिलत है, और साथे साथे पानी जोन बरसत बा ओका इकट्ठा करब बहुत जरूरी बा। तो देखें समय समय कुल निकला था, अब चले के बेला होता, तो बैजुक आज्ञा द पंचो, राम राम।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे, पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: तो एक दूसरे के हम साझा कह सके थे तो हमका इसे ज्यादा लाभ हो सकता।
1: बिल्कुल ऐसे होता किसान उत्पादक संगठन, हम पंच मिल के किसान उत्पादक संगठन अगर बनाए लेवा करी था तो एक दूसरे को उसे सहयोग भी मिलता। अगर हम कोनो प्रशिक्षण में गए तो आए सबके बताओ, हम बाजार गए तो सबके बताओ, तो ये सबके जानकारी बराबर मिल जावा करते, इसे हमें पंचन के बड़ा मुनाफा।
0: कृष्णा भैया
1: हाँ
0: देखो, हम पंच खेती पाती से जुड़े हैं, उनकी बात हम पंच बराबर करते हैं और इनके लिए जानकारी जो अपने खेती से संबंधित होती हैं वो बहुत जरूरी होती हैं। तो भैया सुन लीन जाए आज की खबरें।
2: उत्तर प्रदेश के आलू किसानों को बाजार भाव गिरने, कोल्ड स्टोरेज के खर्च और महंगे बीज की चिंता से राहत देने के लिए योगी सरकार ने 3 नई योजनाएं शुरू की हैं। इसके लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है। पहली योजना के तहत आलू का बाजार भाव गिरने पर किसानों को भामाशाह भाव स्थिरता कोष से आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का भाव स्थिरता कोष बनाया है। किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र और प्रति हेक्टेयर 240 क्विंटल तक के आलू पर निर्धारित नियमों के अनुसार अनुदान मिलेगा। दूसरी योजना में निजी कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू पर 100 रुपए प्रति क्विंटल तक भंडारण अनुदान मिलेगा। एक किसान को अधिकतम 20,000 रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। वहीं तीसरी योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण आलू बीज खरीदने पर 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की छूट मिलेगी। इन तीनों योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सरकार ने potato.uphorticulture.in पोर्टल शुरू किया है, यानी आलू की कीमतों में गिरावट से लेकर भंडारण और बीज की लागत तक सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए 3 स्तरों पर सहायता का इंतजाम किया है।
0: कृष्णा भैया।
1: हाँ पुनीता बहनी।
0: भैया देखो, अपनी धान के फसल इस समय खेत में यहाँ लहलहा रही है और यह फसल हमारा अत्यंत बढ़िया रहे, कोनो रोग दोख ना लाग पावे और खूब बढ़िया फलत मिले और तैयार होके अपने घर का आवे।
1: बिल्कुल आवे भाई। देखो हम पंच जौन बा मेहनत करत है या अपन जौन बा खेत पे हम जावा करी थे देखी थे कि हमार खेत नगद है, हमार धान की फसल नीक है, लेकिन यह समय जौन बहुत महत्वपूर्ण समय चलत है। यूँ चलत है कि निराई गुड़ाई के साथ साथ हम पंच अपने किरवा पतंगा का ध्यान दे।
0: तो भैया सुन लें जाए आज की बात, धान की फसल में कीट रोग प्रबंधन, डॉक्टर रमेश कुमार मौर्य जी से।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय खरीफ की मुख्य फसलों में धान आपके खेत में है। जहां धान की फसल है वहां कुछ हानिकारक कीट और बीमारियों के चलते फसल को नुकसान होता है। इसका प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के मौर्य साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां धान की फसल खेत में है तो हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन।
4: सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। धान की फसल में जो प्रमुख कीड़े हैं, खास करके जो हमारे अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में या कुछ कीड़े ऐसे हैं कि अक्टूबर के महीने में लगते हैं, उसमें प्रमुख रूप से एक तो तना छेदक है और दूसरा इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है उसमें एक है फुदका
3: जी।
4: फुदके में ये 3 तरह के फुदके होते हैं, हरा फुदका होता है, भूरा फुदका होता है और एक सफ़ेद पीठ वाला फुदका होता है। लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक होता है वो हमारा हरा फुदका होता है या कभी कभार भूरा फुदका भी इसमें खतरनाक होता है
3: जी।
4: और दीमक की भी समस्या आती है। लेकिन जैसे हमारी जब फसल लगभग इसमें बालियां जब निकल आती हैं या निकलने की स्थिति होती हैं तो उस समय गंधी बक्का भी इसमें ज्यादा आक्रमण होता है और इससे काफी फसलों को नुकसान होता है।
3: दुग्धावस्था में
4: तना छेदक है। इसके बारे में बताएं कि ये जो कीड़ा होता है इसमें जो कीड़े की हमारी जो लार्वल स्टेज जिसको हम लोग जो है सूंड़ी बोलते हैं, तो ये सूंड़ी ही नुकसान करती है। और इसकी खास बात ये

0: ये होती है कि जब हमारा पौधे का जो वानस्पतिक वृद्धि जिस समय होती है उस समय ये क्या करता है कि जो बीज का तना होता है तने को खाता है ये, और जब तने को खाता है तो इससे क्या होता है, ऐसे लगता है दूर से ही जो बीच वाला जो भाग होता है बिल्कुल सूख जाता है, जिसको
1: जी
0: हम लोग डेड हर्ट बोलते हैं या मृत गोभी बोलते हैं।
1: हाँ
0: और इसमें और दीमक में, इन दोनों में सबसे बढ़िया पहचान इसका ये है कि जब दीमक का अटैक होता है तो पौधा तो सूख जाता है लेकिन पूरा पौधा हमारा सूखा रहता है, और जब किसान भाई उसको हाथ से उखाड़ते हैं तो पूरा पौधा निकल आता है,
1: आसानी से।
0: आसानी से उखड़ आता है। लेकिन जब ये हमारे तना छेदक का जब इसमें प्रकोप होता है तो उसमें जो बीच वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम लोग डेड हर्ट बोलते हैं उसको आप अगर पकड़ कर खींचेंगे तो केवल उतना ही पोर्शन ये निकलता है ये, तो इससे किसान भाई देख लेते हैं कि नहीं हमारे तना छेदक का इसमें आक्रमण हुआ है।
1: अब इनका नुकसान का स्तर कैसे पता चले डॉक्टर साहब?
0: हिल्स जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि जैसे पूंजा
1: हाँ
0: पूंजा बोलते हैं, तो अगर ये हमें 5%, अगर 100 हिल्स लगे हुए हैं, अगर इसमें 5 हिल्स में अगर इस तरह का लक्षण दिखाई देता है तो हमारे किसान भाइयों को चौकन्ना हो जाना चाहिए,
1: यानी
0: इस
1: तना छेदक की समस्या हो गई।
0: समस्या इसका हो गई है, और किसान भाइयों को उसके नियंत्रण करने के लिए इसमें उपाय करना चाहिए।
1: जैसे
0: और इसमें जो सबसे बढ़िया जो तरीका है, इसमें एक काटा फाइटोक्लोराइड आता है,
1: एकड़
0: और
1: में कितना?
0: हाँ, और 1 एकड़ में जो इसकी मात्रा लगती है लगभग ये जान लीजिए 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है,
1: यानी
0: आप
1: 2.5 एकड़ में।
0: 2.5 एकड़ में, और इसको किसान भाई ऐसे समझ लें कि लगभग 8 से 10 किलो ये प्रति एकड़ लगेगा, और
1: जी।
0: इसका ये खेत खड़ी पानी में जो लगा रहता है उसमें उसका बुरकाव कर दें।
1: और जहां दीमक की समस्या आ रही है, अक्सर जो उपरहार खेत हैं उन्हीं में इनकी समस्या ज्यादा होती है।
0: उसी में होती है। देखिए किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जब दीमक की समस्या हो तो सबसे पहले यह है कि बुवाई करने से पहले हमारा एक बायोपेस्टिसाइड रहता है बिवेरिया बेसियाना,
1: ब्यूबेरिया
0: तो
1: बेसियाना।
0: बिवेरिया बेसियाना की ये किसान भाई हमारा 2.5 किलो ले लें, और 2.5 किलो को लगभग 60 से 70 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में इसको बढ़िया सा मिला करके और छाए स्थान में इसको रख दें।
1: अगर एकड़ की बात करें तो 1 से 2 किलो
0: हाँ,
1: पर्याप्त।
0: 1 से 2 किलो पर्याप्त है, और इसको छाए में स्थान में रख दें, और उसके बाद हर सप्ताह में इसको अच्छी तरह से उसको मिलाएं, और मिलाने के बाद ठीक फसल की बुआई से पहले अच्छी तरह से इसको मिट्टी मिला दें। तो इससे क्या होता है, हमारा जो बिवेरिया बेसियाना होता है ये जीवांश मात्रा जब मिट्टी में रहती है तो ये बड़े तेज़ी से जो है ये खेत में फैलता है, और एक खेत में फैलता है और ख़ासकर जहाँ पे दीमक की समस्या होती है उसी, क्योंकि दीमक हमारा जो होता है बड़ा सोशल इंसेक्ट होता है ये,
1: जी
0: तो जहाँ एक कॉलोनी पूरा बना के रहता है ये, तो जहाँ पे ये दीमक रहते हैं उसी में ये फंगस बड़े तेज़ी से ये जो वहाँ पे पहुँचता है और उन दीमक को नुकसान पहुँचाता है ये,
1: एक तरह का मित्र
0: बिल्कुल
1: फफूंद है।
0: बिवेरिया बेसियाना। लेकिन अगर किसान भाई शुरू में नहीं कर पाए और दीमक की समस्या आ गई है तो दूसरी हमारी दवा है क्लोरोपायरीफास।
1: जी
0: क्लोरोपायरीफास दवा आती है, ये 2 क्षमता में आती है, 50% में भी आती है, 20% में भी आती है, तो किसान भाई इसका छिड़काव भी कर सकते हैं या जल में जो सिंचाई करते हैं तो उसमें पानी के साथ में इसका प्रयोग कर सकते
1: यानी
0: हैं ये,
1: बूंद
0: बूंद
1: बूंद
0: बूंद,
1: छेद कर दें सीसी
0: बिल्कुल
1: में।
0: बिल्कुल।
1: तो इसकी मात्रा कितनी डॉक्टर साहब?
0: इसकी मात्रा लगभग 2.5 लीटर लगती है 1 हेक्टेयर में,
1: यानी एक
0: एक
1: लीटर
0: लीटर
1: प्रति
0: एक
1: एकड़।
0: लीटर प्रति एकड़ में।
1: डॉक्टर साहब, जो फुदकी की समस्या है, चाहे हरा फुदका है, भूरा फुदका और कभी कभी सफेद फुदका, इसकी समस्या हर साल आती है धान में।
0: हाँ, देखिए इसमें लिए बताएं, ये इनका जो स्वभाव होता है ये कि जो कीड़े होते हैं इनके जो निम्फ होते हैं या इसके जो वयस्क होते हैं
1: दोनों
0: ये दोनों नुकसान करते हैं, और ये पौधे के हमारे जो है हरे भाग को चूसते हैं, जब चूसते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये पूरा पौधा हमारा पीला हो जाता है, और कभी कभार जैसे हम लोग देखते हैं उसको हापर बर्न बोलते हैं,
1: यानी विषाणु का संक्रमण
0: हाँ,
1: भी।
0: संक्रमण भी होने लगता है इसमें, क्योंकि इसमें एक हनी ड्यू जो डेवलप होती है तो उसमें फंगस का हमारा जो है इसमें अटैक हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि पहले हम देखें कि इसकी संख्या कितनी है,
1: नुकसान का
0: हाँ,
1: स्तर क्या?
0: नुकसान का स्तर हम देखें इसको, अगर हमारे हर हिल्स पे 2 से 3 फुदके हैं और अगर मकड़ी नहीं है,
1: जी
0: अगर मकड़ी है तो हमारे ख्याल से इसमें 2-3 फुदके रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन
1: यानी
0: अगर
1: प्राकृतिक प्रबंधन होता
0: प्रबंधन
1: जाएगा।
0: होता जाएगा, लेकिन अगर मकड़ी नहीं है हर हिल्स में अगर 1 फुदके हैं तो भी ये पर्याप्त हैं, इसका मतलब यह है कि हमें इसका उपचार करना चाहिए। और इसमें जो दवा आती है इसमें एक इमिडा क्लोरोपीड आती है दवा, इमिडा क्लोरोपीड हमारे किसान भाई ले सकते हैं, 70.8% में आती है, लगभग ये 100 ml लगता है 1 एकड़ में। या दूसरी दवा इसमें आती है एक स्टाप्रीमिड है, इसको भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं, और अगर ये भी नहीं मिल पा रही है तो एक और इसमें एक दवा है किसान भाई खास करके ज़्यादा प्रयोग करते हैं, थायोमेथक्सान।
1: जी
0: थायोमेथक्सान 25% क्षमता में आती है और इसमें भी लगभग 100 ग्राम लगता है एक एकड़ में।
1: एक एकड़ और इन पानी 150 से 200।
0: हाँ पानी, अब देखिए अगर पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी है तब तो एक एकड़ में लगभग 100 से 125-150 लीटर लगेगा, लेकिन अगर अच्छी नहीं है और शुरुआती

0: दौर में ही अगर ये कीड़ों का आक्रमण हो गया है तो आप पानी की मात्रा उसी हिसाब से कम कर सकते हैं,
1: यानी 100 लीटर में काम चल
0: सौ
1: जाए।
0: लीटर में भी काम इसमें चला सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हम किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि जब भी यो दवा का प्रयोग करें तो इसमें ये सटीक जानकारी ये कर लें कि हमारे खेत में कौन सी बीमारी लगी हुई है और कौन से कीड़ा लगा हुआ है।
1: और शुरुआत में क्या जैविक उपाय भी अपना सकते हैं?
0: अपनाना चाहिए हमारे ख्याल से, जब किसान भाई इसमें धान की चाहे कोई फसल की बुआई करते हैं तो बीज शोधन करना चाहिए, और बीज शोधन करने के लिए इस समय जैविक में बहुत ही अच्छी समझ लिए ट्राइकोडर्मा हमारा है, बिवेरिया बेसियाना भी है।
1: और खड़ी
0: तो
1: फसल में?
0: खड़ी फसल में तो इसका हम एक बीमारी प्रयोग कर सकते हैं, जब कभी कभार हमारे किसान भाइयों को सीथ ब्लाइट की समस्या रहती है तो वहाँ पर हम ट्राइकोडर्मा का इसका प्रयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-51-39-22-36, 9451-39-22-36।
1: डॉक्टर आर के मौर्या साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृष्णा भैया,
3: हाँ पुनीता बहनी,
2: भैया देखो बरखा हो रही है
3: बिल्कुल हो
2: और
3: रही है।
2: सावन का महीना तो ही है,
3: हाँ
2: कजरी और झूला के बहार है, तो भैया सुन लीन जाए एक कजरी गीत, स्वर है डॉक्टर शिखा भदौरिया का।
3: बिल्कुल।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: पुनीता बहनी।
7: हाँ कृष्णा भैया।
6: देखो हम पंच अपन खेती पाती तो करत है, लेकिन अगर जैविक खेती हम पंच करी तो उनमें मुनाफा अपने का अच्छा मिला करत है, साथ साथ में अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा।
7: बिल्कुल भैया, क्योंकि उमा कोनो उनके कीटनाशक नहीं पड़त है रासायनिक, जो हमने सबके स्वास्थ्य के हैं नुकसान पहुँचावे।
6: तो बहनी देखो ऐसे हमारे बीच में आए हैं चंद्रशेखर त्रिपाठी भैया, वो बता रहे हैं गौ आधारित स्वावलंबी खेती पे, तो आओ सुना जाए।
8: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ एक ऐसे स्वावलंबी किसान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, रायबरेली जनपद के सताओं ब्लॉक के लोहड़ा सहजौरा गांव के चंद्रशेखर त्रिपाठी भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
9: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने खूब पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, उसके बाद मैंने रायबरेली जिले में 100 गायों की गौशाला बनाई, पूरी तरह से गांव में शिफ्ट हो गया, वहीं पर रहने लगा और इस समय मैं प्राकृतिक खेती पर पूरी तरह से मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रसायन नहीं डाला जाता है और खेती के प्रति एक प्रकार का हमारा एक प्रयोग सा चल रहा है, क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान है प्रयोग करना इस समय, विशेष तौर पर युवा किसानों के लिए मैं नए प्रयोग नित्य कर रहा हूँ कि कैसे पशुओं के माध्यम से खेती किया जाए और खेती को कैसे समृद्ध बनाया जाए। और खेती में 10 एकड़ खेती में पूरी तरह से अपने परिवार के लिए पहले मैंने फोकस किया कि परिवार के लिए खेती क्या हो, तो आप जानकर आश्चर्य होंगे कि जितना चीज़ें रसोई में चाहिए सब कुछ उपजता है, उपजने के बाद जो बचता है उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, जैसे हमने अरहर की दाल हाथ से बनाना शुरू किया, हाथ की दाल बनती है, गेहूं को पीसना शुरू किया, धान से चावल निकालना शुरू किया, इसी प्रकार से तेल पेरना शुरू किया, तो जो उपज खाने से बचती है वो पशुओं के काम आ जाती है और अपने परिवार को और अपने मित्रों को सभी को स्वस्थ भोजन मिलता है, पौष्टिक भोजन मिलता है। आज सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने आ रही है वो है पौष्टिक भोजन की।
8: तो प्रशिक्षण कहीं से आपने लिया होगा, कहाँ से ये सीख मिली कि आप इधर मुड़े?
9: हम लोगों को प्रेरणा, आपने नाम लिया था सुभाष पालेकर जी का, तो 2017 में एक लोक भारती संस्था है, उस सुभाष पालेकर जी जिन्होंने प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती पर बात करते, उनसे शुरुआती प्रेरणा मिली। फिर मेरा 2019 में मिलना हुआ प्रेम सिंह जी से, तो जो चीजें और कम थी
8: वो, यानी बांधा वाले किसान
9: जी, उनसे मिलना हुआ, उनसे मुझे प्रोसेसिंग की बात समझ में आई, संतुलन की बात समझ में आई, तालाब की बात समझ में आई, और जो एक एक किसान का जो संतुलित जो फार्म होता है,
8: हाँ,
9: वो मुझे बनाने
8: का प्रेरणा, समन्वित कृषि प्रणाली,
9: बिल्कुल सही है। तो समन्वित व्यवस्था अगर नहीं होगी तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आज अपने युवा भाइयों को ये बात समझाना चाहता हूँ कि वो एक समन्वित खेती करें, पहले खेती को समझ लें और समझ कर खेती नहीं करेंगे तो असंतुलित व्यवस्था से की गई खेती उनको कष्ट देगी, लेकिन संतुलन के साथ अगर खेती की जाएगी तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलेगी।
8: तो पूरे साल का संतुलन आपका कैसे बनता है?
9: मैं दूध बेच लेता हूँ एक टाइम के गाय के दूध से घी निकालता हूँ, मटके वाला घी, उसको बिक्री होती है, हर चीज प्रोसेस करता हूँ, यानी कोई भी चीज सीधे बाजार में ना जा करके प्रोसेसिंग के बाद जाती। इस समय मेरे पास 10 परिवार को मैंने और जोड़ लिया है गांव के, जिनके घरों में हाथ से आटा पीसा जाता है, आपको याद होगा, और हाथ से दाल बनती, तो सभी प्रकार की दालें जो घरों में बनने शुरू हो गया है, एक नए प्रकार का परिवर्तन मैं देखने को पा रहा हूँ,
8: आपके आसपास भी दिख रहा है।
9: बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ जुड़ करके बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे सहजन की पत्ती से मैंने पाउडर बनाना शुरू कर लिया, गोनायल बनाना शुरू कर लिया, क्योंकि मेरे पास गाय थी, मेरे पास गोबर गाय है, उससे मेरा दूधांडी

0: वाला दूध बनता है, घी बनता है, अच्छे कीमत पर घी बिक जाता है। तो जितनी पैसे की आवश्यकता एक व्यक्ति को होनी चाहिए, लगभग उतनी पूर्ण हो रही है।
1: 10 एकड़ खेती का जो प्रयोग है आपका, उसमें पूरे साल का कैलेंडर क्या होता है, खरीफ रबी जायद का,
0: खरीफ में तो धान और कुछ उड़द हो जाता है, कुछ
1: जो
0: बाजरा हो
1: उचास
0: जाता है,
1: खेत हो
0: जो
1: गए?
0: थोड़ा उचास का खेत है। लेकिन रबी की फसल में विविधता रहती है, जो भी चीजें खाने के लिए चाहिए। इस समय तो खरीफ में धान है, उड़द है, मक्का है, बाजरा है, लेकिन रबी में जितना चीजें आप चाहिए होती आपके रसोई की, वो सभी कुछ मैं उगा लेता हूँ। ये बड़ी बात रहती है हमारे लिए।
1: जैसे
0: जैसे चना हो जाता है, मटर हो जाता है, आपके लिए दालें हो जाती हैं सारे
1: तिलहन
0: तरह,
1: भी
0: तिलहन हो जाता है, दलहन हो जाता है बहुत सारे, मैं गन्ना भी थोड़ा कर लेता हूँ।
1: और गेहूं भी,
0: गेहूं तो 24 क्विंटल गेहूं मैं पैदा कर लेता,
1: और जौ की तरफ आपके रुझान नहीं हुई?
0: मैं अपने खाने भर का जौ पैदा करता हूँ। अभी उससे ज़्यादा जौ नहीं पैदा कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि 10 एकड़ खेती में मुझे कुछ खेती का भाग अपने पशुओं के लिए भी रखना होता है।
1: हरे चारे की व्यवस्था पूरे साल रखते होंगे?
0: ऑर्गेनिक हरा चारा की पूरे साल व्यवस्था रहती है। हरा चारा इतना रहता है कि हम काट के पूरा खिला भी नहीं पाते हैं, मल्च कर देना पड़ता है जमीन में, इतना चारा हमारे पास रहता है।
1: और 10 एकड़ की जो खेती है वो पूरा जैविक स्वावलंबी खेती है, गो आधारित खेती है?
0: पूरी तरह से पशु आधारित खेती है, भैंस के भी गोबर से। देखिए, गाय के गोबर में माइक्रोब्स की संख्या खूब होती है, भैंस के गोबर में कार्बन की संख्या होती है, और पक्षियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है, बकरी में मिनरल्स होता है। तो अगर इन सबके गोबर को अपने खेत में नहीं डालेंगे तो प्रचुर मात्रा में अच्छा पैदावार नहीं होगी। मैं इन सभी गोबर से मिलाकर एक संपूर्ण खाद बनाता हूँ, और एक हमारे पास गोबर वाला तालाब है, उससे सिंचाई करने से धान में रिकॉर्ड पैदावार हुई है। जो
1: रबी में
0: अभी तक मेरे पास गेहूं नहीं पैदा होता था, रबी में बड़ा कष्ट था, लेकिन पिछले 2 सालों से अधिकतम उत्पादन हुआ, पूरे साल खाने भर का सामान हमारे पास उपलब्ध है।
1: फसल की भूख गोबर के जो उत्पाद हैं उनके माध्यम से पूरी हो जाती है?
0: मैं पुआल है, भूसा है, उनसे मिक्स करके संपूर्ण खाद, ठोस संपूर्ण खाद, तरल, और कुछ प्रकार के गोबर गैस, ढाई गोबर गैस है मेरे पास, यानी 2 गोबर गैस एक्टिव हैं जिसमें खाना भी बन सकता है, और एक इनएक्टिव यानी उस पर खाली गैस नहीं ली जाती लेकिन खेती होती, तो 2.5 गोबर गैस का प्रयोग है। मेरे पास 2 तालाब हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं, पूरा पानी बह करके उसी गौशाला में जाता है, उसमें गौमूत्र भी जाता है, मैन्योर भी जाता है, जो सड़ करके जब मीथेन रिलीज हो जाती है उसके बाद मैं उसी से सिंचाई करता हूँ, जिससे मेरे पैदावार में और मेरी मिट्टी में सुधार हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब मैं खेती शुरू किया था तो 0.03% कार्बन था, इस समय 1% से ऊपर कार्बन हो गया
1: आपके
0: है।
1: खेत में
0: जी
1: है
0: जी
1: तो ये एक संतोष का विषय है।
0: आप ये तो बात जानिए, अगर मिट्टी में कार्बन का तत्व ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन आपके आसपास खूब होगा, और सबसे बड़ी बात तो आप ये सोचिए, आज का अभियान क्या है आपका, 1/3 हिस्से में 33% क्षेत्र में आपको वन लगाना, अगर किसान अपने 1/3 हिस्से में फलोद्यान वृक्ष लगा ले, 1/3 हिस्से में पशुपालन कर ले, और 1/3 हिस्से में खेती का काम करे, तो पूरे विश्व का संतुलन हो जाए। एक किसान ही है जो इस समय पूरी व्यवस्था को संतुलित कर पा सकता है।
1: आप ऐसा कर रहे हैं अपने यहाँ?
0: मैं 1/3 हिस्से में पशुपालन है, 1/3 हिस्से में हमारे फल उद्यान लगा हुआ है, और 1/3 हिस्से से थोड़ा सा ज्यादा खेत है मेरे पास, तो खेती होती है।
1: जो भी फसल है, बागवानी है, उसमें कुछ हानिकारक कीट और बीमारियों की भी समस्या होती होगी?
0: कोई बीमारी हमारे यहाँ नहीं लगती है, बारिश का अमरूद है, इस समय के अमरूद में कीड़े नहीं लगे हैं, जानकर आश्चर्य होगा आपको, अभी तक कोई कीट का हमें नहीं वो लगा, लेकिन अगर कभी ऐसा लगता है कीट की दिक्कत, तो मट्ठा वाली खाद है, कई तरह के एंजाइम बना लेते हैं, नीम का एंजाइम बन जाता है, फूलों का एंजाइम बन जाता है,
1: यानी नीमास्त्र बनाते हैं?
0: बिल्कुल उसका छिड़काव किया जा सकता है, और उस छिड़काव के माध्यम से कोई कीट नहीं लगता। एक बात आपको बता दें डॉक्टर साहब, कि अगर मिट्टी मजबूत है तो उसमें रोग कम लगता है।
1: पूरे साल आपकी आमदनी कितनी हो जाती है 10 एकड़ खेती और गौशाला से?
0: नहीं हो जाती है कि किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है स्वावलंबी खेती का, गौ आधारित, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: मैं हमेशा सभी किसानों को, विशेष तौर पर युवाओं को ये बात कहना चाहता हूं कि खेती किसानी में आने से पहले खूब प्रशिक्षण लें, और उस प्रशिक्षण लेने के बाद समझ विकसित करने के बाद क्षेत्रीयता, अपनी भौगोलिक स्थिति, अपने परिवार की स्थिति के अनुरूप खेती करें, तभी सफल होंगे। किसी का मॉडल कॉपी ना करें और किसी को फॉलो ना करें।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 7-3-8-8-6-2

0: 4111 7 3 8 8 6 2 4 1 1 1।
1: चंद्रशेखर त्रिपाठी भैया आज आप कार्यक्रम में आए, स्वावलंबी किसान के रूप में पहचान पा चुके हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पुनीता बहनी।
4: हाँ कृष्णा भैया।
3: आज क्या अपन कार्यक्रम कैसन लगा? पंच भैया अगर अपन पाती लिखा चाहें तो उनके पता बताए दिन जाए।
4: कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन कोड 226001।
3: अब बहनी देखो कुछ पंच भैया अपने ईमेल के माध्यम से सलाह मांगा चाहती या सलाह देवा चाहती तो उनके पता वो अपन नोट कर लें। फार्म एंड होम AIRLKO@gmail.com।
4: तो भैया ये तो रहे अपने कार्यक्रम के ईमेल आईडी।
3: अब पंच भैया से लीन जाए विदा। जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी की उपलब्धता को लेकर की समीक्षा बैठक, कहा

0: राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं, कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर लगाया प्रतिबंध। राज्य के 12 जनपदों में कल होगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने चलाई विशेष ट्रेनें और जापान के यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा वाराणसी। सारनाथ का दौरा कर गंगा आरती में हुआ शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है, इसलिए आम नागरिक परेशान न हो। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि चीनी की कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। श्री योगी ने आज लखनऊ में प्रदेश में चीनी उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश की चीनी मिलों में वर्तमान में 179.38 लाख कुंतल चीनी का भंडार उपलब्ध है। श्री योगी ने निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर चीनी मिलें 15 अक्टूबर से संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री ने आम जन से अपील की कि चीनी की कमी बताकर भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहें। उन्होंने भारत सरकार के निर्देश के क्रम में कहा कि कोई भी डीलर 30 दिन से अधिक चीनी स्टॉक का भंडारण नहीं करेगा और वे एक समय में 400 टन से ज्यादा स्टॉक भी नहीं रख सकते। वहीं उपभोक्ता भी 15 दिन से अधिक का स्टॉक नहीं रख सकते। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद की समस्त पंजीकृत चीनी मिलों, थोक और फुटकर विक्रेताओं के गोदामों का भौतिक सत्यापन कराते हुए उपलब्ध स्टॉक की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करें। निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक धारित करने अथवा जमाखोरी पर कठोर कार्रवाई की जाए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गौतम बुद्ध नगर में एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सैन्य क्षेत्र में मजबूत चिकित्सा व्यवस्था बेहद जरूरी है और भविष्य में मेडिकल विज्ञान को नई तकनीकों के साथ लगातार जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी बीमारी का इलाज शुरू करने से पहले बीमारी की सही पहचान आवश्यक है। ऐसे में डायग्नोस्टिक सेंटर हेल्थ केयर के पहले लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में सामने आते हैं।
2: किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमें बीमारी की सही पहचान यह आवश्यक होती है और बिना सही डायग्नोसिस के सही ट्रीटमेंट किसी भी सूरत में संभव है ही नहीं। अर्ली डिटेक्शन के बिना कई बीमारियां समय के साथ कॉम्प्लेक्स और बहुत ही डेंजरस भी होती है और ऐसे में डायग्नोस्टिक सेंटर हेल्थ केयर की पहली लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में सामने आते हैं। डिफेंस इस वर्ड का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं स्वयं डिफेंस मिनिस्टर हूँ।
0: केंद्र सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश के अल्पसंख्यक एवं वक्फ बोर्ड मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आज ललितपुर में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इसके बाद एक पत्रकार वार्ता में श्री अंसारी ने कहा कि वंदे मातरम देश पर गर्व करने का गीत है।
4: वंदे मातरम हमारे देश के लिए गर्व करने का एक गीत है, गान। भारत देश के हर नागरिक को पूरे गर्व के साथ वंदे मातरम का गान करना चाहिए। देश के शहीदों को, सेनानियों को याद

0: करना चाहिए। अभी संसद के माध्यम से जो कानून पास हुआ है वंदे मातरम को लेके, सभी छंदों को लेके, वंदे मातरम पे कहीं कोई इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026 कल आयोजित की जाएगी। प्रदेश के 12 जनपदों में 229 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कल सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक पाली में आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी परीक्षा केंद्र सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम के जरिए AI युक्त CCTV कैमरों की निगरानी में रहेंगे। वहीं उत्तर रेलवे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें संचालित कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए सर्वाधिक 45 परीक्षा केंद्र लखनऊ जनपद में बनाए गए हैं, जहां पर 18,960 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं आगरा में 26 केंद्रों पर 11,904 जबकि कानपुर शहर के 24 केंद्रों पर 10,698 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों में जैमर का इस्तेमाल किया जाएगा। उधर उत्तर रेलवे की तरफ से अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए मेरठ सिटी और सीतापुर सिटी के बीच दो अनारक्षित एकदम स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, जबकि लखनऊ से प्रयागराज संगम के बीच कल एक विशेष अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों और अभ्यर्थियों से समय सारणी और अन्य अपडेट के लिए NTES ऐप देखने या फिर दूरभाष नंबर 139 पर संपर्क करने को कहा है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में करीब 200 सदस्यीय उच्च स्तरीय जापानी प्रतिनिधिमंडल दो दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचा। इस अवसर पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रतिनिधिमंडल के वाराणसी दौरे से उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अवसरों को बढ़ावा मिलने के साथ ही पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को नई गति मिलने की उम्मीद है। जापानी दल ने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया और स्तूपों का अवलोकन किया। इसके बाद यह प्रतिनिधिमंडल काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुआ। सदस्यों ने यहां काशी की सदियों पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा की झलक देखी। रविवार को प्रातः गवर्नर सहित प्रतिनिधिमंडल के कुछ सदस्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर भव्य कॉरिडोर का अवलोकन करेंगे। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस बीच आगामी 24 घंटे में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के चलते प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं और बलिया में गंगा नदी, बाराबंकी, अयोध्या और तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच प्रदेश सरकार की तरफ से बाढ़ राहत कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राहत आयुक्त डॉ ऋषिकेश भास्कर यशोद ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फर्रुखाबाद, बलिया और बहराइच में चल रहे बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम UPSTDC के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार ने आज लखनऊ में द राइडिंग चैप्टर्स के दूसरे संस्करण के तहत 80 बाइक सवारों के दल को हरी झंडी दिखाकर दो दिवसीय यात्रा पर रवाना किया। सुल्तानपुर और जौनपुर होते हुए बाइकर्स का दल बौद्ध स्थली सारनाथ और चुनार जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी की उपलब्धता को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं, कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोर फेनरामाइन मैलेट और फिनाइल एफरिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर लगाया प्रतिबंध। राज्य के 12 जनपदों में कल होगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने चलाई विशेष ट्रेनें। और जापान के यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आज दो दिवसीय दौरे पर पहुंचा वाराणसी। सारनाथ का दौरा कर गंगा आरती में हुआ शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए रमेश कुमार शुक्ल की वार्ता गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य में लोक चेतना।
1: साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये कथन सर्वथा सर्वमान्य है। आदिकाल से आधुनिक युग तक साहित्य की बह रही ज्ञान गंगा में उच्च शिखर से लेकर गंगा सागर तक की लंबी यात्रा में विविध मार्गों से गुजरती हुई अनवरत भागीरथी के भीतर असंख्य मूल्यवान जड़ी बूटियों से लेकर रत्न प्रवाहित हो रहे हैं। जहाँ यह साहित्य भागीरथी जनजीवन के लिए जीवनदायिनी बनी हुई है, वहीं इसके गर्भ में समाये असंख्य रत्न लोगों के श्रृंगार की शोभा बने हुए हैं। आदिकाल में वाल्मीकि जी के काव्य के स्रोत से निकलकर काव्यधारा राजाओं के श्रीगान को गाती हुई संतों के हृदय की भक्ति धारा के साथ साथ आधुनिक युग में समाज के विभिन्न पक्षों को उजागर करती हुई बहुलांश में समाजोन्मुखी होकर जनता जनार्दन में फैल चुकी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य गाथा आते आते हमारे सामाजिक मूल्यों को कविता में स्थान मिलने लगा है। मध्यकाल में जब गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य क्षेत्र में पदार्पण हुआ तब समाज में घोर अराजकता फैली हुई थी। सैकड़ों वर्षों से परंपरावादी राजाओं का मुगल शासन अपनी स्वेच्छाचारिता, शोषण, रूप रस गंध की मादकता और जीवन शैली दूषित होते रहने की व्यथा से पूरा समाज त्रस्त था। राजाओं के दरबार तक ही कविता सीमित रह गई थी, जिसे चारण गीत के नाम से जाना जाता था। टूट रहे मूल्यों और खिसक रही सामाजिक व्यवस्था पर किसी का ध्यान नहीं गया था। चारों ओर अनाचार और अत्याचार का साम्राज्य फैल रहा था। ऐसे समय में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ और वे भी असहाय अवस्था में थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म विपरीत परिस्थितियों में हुआ और वे लालन पालन की दुर्व्यवस्था से पीड़ित थे। शिक्षा व्यवस्था की सम्यक व्यवस्था न होने के कारण जगह जगह उन्हें भटकना पड़ा और काशी, प्रयाग, चित्रकूट व अयोध्या जैसे स्थानों पर जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इसी बीच समाज के विविध पक्षों का उन्होंने गहन भौतिक अनुभव प्राप्त किया, जो उनके काव्य में परिलक्षित होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत से ग्रंथों की रचना की है। संख्या को लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार और प्रमाण हैं, पर भारतीय विद्वानों की दृष्टि से कुल 12 से लेकर 51 ग्रंथों का तथ्य सामने आया है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी के 21 ग्रंथों का उल्लेख किया है। बाद में तमाम प्रमाणों के साथ संशोधित ग्रंथों की संख्या 12 बताई गई, जो इस प्रकार है: श्री रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामाज्ञा प्रश्न। काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने भी इन्हीं 12 ग्रंथों की प्रामाणिकता को सिद्ध किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के इन 12 ग्रंथों का सम्यक अनुशीलन करने से स्पष्ट हो जाता है कि श्री रामचरितमानस ग्रंथ के अतिरिक्त जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें गोस्वामी जी ने भक्ति, वात्सल्य रस, पार्वती जी की महिमा, बाल्य रस, अपनी संपूर्ण दैन्य भावना और अन्य रसों के साथ समाहित है। वास्तव में गोस्वामी जी का मूल भाव है प्रभु जी की भक्ति एवं उसी में अपने मुक्त की कामना। वे अपने इष्ट से पूर्णतः एकाकार हो जाना चाहते हैं। श्री रामचरितमानस ही एक ऐसी रचना है जिसमें समाज के विविध पहलुओं का व्यापक चित्रण किया गया है। जिस तत्समाज में मूल्यों का तेजी से विघटन हो रहा था उसकी रक्षा के लिए एक संपूर्ण आदर्श समाज का संकल्प ही रामचरितमानस के रचे जाने का ध्येय था, जो कालांतर में कालजयी रचना सिद्ध हुई। एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जिसमें राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका, अर्थात एक ऐसे राज्य की स्थापना करना था जहाँ सब बराबर हों,

रोग दोष भय शोषण संत्रास मिटाकर सर्व सुखी समाज की परिकल्पना साकार हो। बादल पानी बरसें, पेड़ों में फल पत्तियां हों, खेती अच्छी हो, लोग रोग मुक्त हों, ऋतु सुहावनी हो और संपूर्ण समाज में सुख और शांति का साम्राज्य व्याप्त हो। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना में लोक चेतना का स्वर अस्पष्ट सुनाई देता है। जहाँ अन्य रचनाओं में गोस्वामी जी ने भक्ति वात्सल्य और इष्ट के प्रति समर्पण एवं दैन्य का भाव दर्शाया है, वहीं श्री राम

स्पष्ट सुनाई देता है। जहाँ अन्य रचनाओं में गोस्वामी जी ने भक्ति, वात्सल्य और इष्ट के प्रति समर्पण एवं दैन्य का भाव दर्शाया है, वहीं श्री रामचरितमानस में प्रारंभ से ही सामाजिक चेतना का व्यापक ताना बना बुना है। सात कांड में फैले श्री रामचरितमानस के भीतर एक ऐसी कथा का वर्णन किया गया है जिसके मुख्य पात्र श्री राम भगवान न होकर एक ऐसे मानव की भूमिका में दर्शित किए गए हैं जो अत्याचार, अनाचार, शोषण, परस्त्री हरण, भेदभाव और क्रूरता का विरोध ही नहीं करते बल्कि उनका अंत करके नए आदर्श समाज के निर्माण में अपने को लगाते हैं। उनके जीवन में प्रारंभ से ही संघर्ष एवं विरोध का वातावरण था, पर उनके नायक श्री राम में उदात्त भावना का व्यापक प्रभाव था। अंतर विरोधों में जीवन की नाव चलाने वाले श्री राम जी के जीवन में पिता का मरण, माँ का वैधव्य, राज्याभिषेक पर अवरोध, राक्षसों का सामना, पत्नी का हरण, सामने धोबी का व्यंग सुनना, लक्ष्मण जैसे भाई को शक्ति लगना आदि ऐसे प्रसंग हैं जो एक सामान्य मानव के जीवन में रोज ही आते रहते हैं। जहाँ सामान्य मानव घबरा कर मूल्यों से समझौता कर लेता है, वहीं श्री राम जैसे नायक ने अत्याचार अनाचार का प्रबल विरोध किया और समाज के दबे, कुचले, पीड़ित, उपेक्षित, घृणित, शोषित समाज के दरिद्र लोगों का साथ दिया और यहाँ तक कि बानर, भालू, रीछ, पेड़ पौधे, नदियाँ, सागर, पशु पक्षी को अपने संघर्ष का साथी बनाया और उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़कर एक सभ्य समाज की रचना में लगाया। गोस्वामी जी श्री रामचंद्र जी के मानव रूप के माध्यम से समाज को एक सीख देना चाहते हैं कि यदि आप सच्चे मार्ग पर हैं और आपका संकल्प दृढ़ है तो सागर भी आपका रास्ता देगा और पेड़ पौधे से लेकर जीव जंतु भी आपके साथ चल पड़ेंगे। श्री रामचरितमानस में आर्य जाति की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। मानस में समाज की केंद्रीय इकाई के रूप में परिवार का चित्रण मिलता है, जहाँ भाई बहन, पिता पुत्र, पति पत्नी और मित्र का सजीव चित्रण दिखाई देता है। एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज में सबको आदर देने का भाव इनकी रचनाओं में सर्वत्र दिखाई देता है। भगवान राम परिवार के मुखिया को इस प्रकार बताते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। रामराज में ऐसे समाज की रचना आर्थिक रूप से की गई है कि न ही दरिद्र को दुखी ने दीना, अर्थात सब सुखी व संपन्न हो, किसी को अभाव न हो। श्री रामचरितमानस में फूलों, पौधों और वनस्पतियों तक की स्थिति का व्यापक चित्रण किया गया है। फूल ही फर ही सदा तरुकानन, रह एक संग गज पंचानन, अर्थात कहीं भय व्याप्त न हो, एक जगह रहें। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रचना में सामाजिक संबंधों, प्राकृतिक घटनाओं एवं जातिगत वैमनस्य को रूपायित करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि रामराज की स्थापना से ही ऐसे सुखी और संपन्न समाज की रचना हो सकती है। गोस्वामी जी द्वारा रचित मानस में सामाजिक संबंधों की आंतरिक बुनावट मानव व्यवहार की सच्ची पाठशाला है। संपूर्ण कथा का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि समाज में प्रत्यक्ष और परोक्ष संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। बालकांड में राक्षसों के संहार से लेकर विभिन्न कांडों में यात्रा करते हुए राम रावण में युद्ध के साथ ही यह प्रत्यक्ष संघर्ष समाप्त हो जाता है। धर्म की स्थापना एवं पतितों के उद्धार के साथ ही पूरी कथा का समापन होता है। वहीं परोक्ष संघर्ष भी दिखाई पड़ता है। एक ओर राज सिंहासन के लिए कैकेयी की रचना, उनका हठ, दशरथ का मरण, राम वनगमन और अनगिनत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऐसी घटनाएं घट रही हैं, वहीं पारिवारिक संघर्ष भी चरम पर था। इस प्रकार मानस में शुभ और अशुभ सभी परिणाम सामाजिक चेतना के द्योतक हैं। श्री रामचरित मानस में समाज के विविध पहलुओं का सजीव चित्रण किया गया है। विवाह, परिवार, धार्मिक संस्थाएं, मनोरंजनात्मक स्थिति आदि। समाज में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कल्पना का जो पौराणिक एवं आध्यात्मिक पक्ष मान्य है, उसे किन्हीं किन्हीं रूपों में गोस्वामी जी ने मानस में दर्शाया है। सामाजिक मान्यताओं का भी
व्यापक चित्रण किया।

गया है। परिवार के समाज, देशकाल एवं राजनीतिक आभा को भी व्यक्ति के ऊपर घटाकर एक ढांचा खड़ा किया गया है, जहां से मूल्यों की गिरावट को रोककर एक सुखी सभ्य और सुसंस्कृत समाज की रचना की जा सके। वर्णाश्रम की अधोगत पर वे खेद प्रकट करते हैं, पात्रों से कहलवाते हैं कि कहीं विधि अस्तित्व करूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। अर्थात एक वर्ग डर रहा है कि मैं अधम जाति का होकर आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ, किंतु श्री राम जी ने जैसा महामानव और पुरुषोत्तम का अपना आदर्श प्रस्तुत किया है, उन्हीं के शब्दों में कि कह रघुपति सुनु भामे निबाता, मानहु एक भगत करनाता। अर्थात जाति धर्म ऊंच नीच धनी निर्धन दुखी दरिद्र से हटकर भक्त का एकमात्र रास्ता है प्रेम। प्रेम ही हमें प्रिय है, अन्य कुछ भी नहीं। इससे स्पष्ट है कि श्री रामचंद्र जी जैसे उदात्त नायक ने समाज के हर वर्ग का साथ लिया है और उसी के आधार पर विजयश्री प्राप्त की है। गोस्वामी जी ने अपने काव्य में विवाह एवं परिवार को बड़े ही उदात्त ढंग से प्रस्तुत किया है। विवाह समाज की एक दृढ़ व्यवस्था है, जिस पर परिवार, समाज एवं राष्ट्र का भवन खड़ा रह सकता है। श्री राम जी के विवाह परिवार से लेकर शंकर जी का विवाह व परिवार एक आदर्श व्यवस्था है, जो सामाजिक ताने बाने को बुनती है, जिसमें हमारी सारी व्यवस्था आज भी कायम है। नारी को व्यापक सम्मान गोस्वामी जी के काव्य में सर्वत्र दिखाई देता है। मनुस्मृत में ही लिखा गया है, यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मानस में नारी की श्रेष्ठता को व्यापक रूप प्रदान किया गया है। जननी सम जानहि पर नारी, धन्य पराय विश्वे पिस्कारी। अर्थात नारी इस विश्व की वह अमर कृति है, जो दो खानदान की प्रतिष्ठा को संजोती है। उसका मान देवता का सम्मान है। गोस्वामी जी ने परिवार को एक भौमिक इकाई मानकर पारिवारिक चित्रण किया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, धर्म से लेकर काम और मोक्ष तक के सारे उपादान परिवार में ही फलते और फूलते हैं। परिवार में पिता की आज्ञा का पालन सर्वोपरि है। श्री राम जी ने स्वयं कहा है, हम पितु वचन मान बन आए। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा का पालन, भाई के प्रति प्रेम, पत्नी को सम्मान, गुरु को आदर और सभी बड़ों को अभिवादन देना, इनके नायक की उदात्त भावना का परिचायक है, जो किसी भी समाज के लिए वरेण्य है। मानस में गोस्वामी जी ने समाज के विविध पक्षों का व्यापक वर्णन किया है। मानस में धर्म पूर्णतः कर्म पर आधारित है। बड़े ढकोसले, दिखावा, छल और प्रपंच से दूर रहकर वे कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। अर्थात कर्म ही प्रधान है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात सभी ग्रंथों का निचोड़ है, दूसरों का हित धर्म है और दूसरों को पीड़ा देना अधर्म है। इन सारे नैतिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक पक्षों को एक ही सूत्र में बांधकर मानस में रखा गया है। मानस में विविध अवसरों पर संगीत, नृत्य, कथा, हास्य व्यंग, काव्य श्रवण, विविध क्रीड़ा, उत्सव, पर्व, त्यौहार का वर्णन मिलता है, जो समाज के स्वरूप को दर्शाता है। गोस्वामी जी की रचनाओं में सामाजिक ताने बाने को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है, जो मनोरंजक कम, ज्ञानवर्धक ज़्यादा है। इनकी रचनाओं में सामाजिक संगठनों का भी वर्णन है। वर्ण व्यवस्था, सकारात्मकता, विघटनकारी तत्व, आपसी अंतर्विरोध आदि के वर्णन मिलते हैं। शिक्षा, धर्म, अर्थ, मनोरंजन, राज्य व्यवस्था, कूटनीति एवं अन्य सामाजिक पक्ष जगह जगह रूपायित होते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य में एक ओर जहाँ भक्त की गहन पराकाष्ठा है, वहीं दूसरी ओर एक सभ्य सुसंस्कृत समाज, राज्य, राष्ट्र के गठन, संरक्षण, विकास एवं नीति आधारित सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। तत्समाज में टूट रहे नैतिक मूल्यों के सृजन की व्यापक अवधारणा इनके काव्यों की मूल चेतना रही है। समाज उन्हीं मूल्यों पर जीवित रहता है, जहाँ राम राज्य की कल्पना के आधार पर शासन की व्यवस्था कायम की जाती है। मानवीय मूल्यों की इस गिरावट अवधि में आज इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि गोस्वामी जी के साहित्य में वर्णित लोक चेतना, सामाजिक संरचना एवं मानस के उदात्त नायक श्री राम से सीख लेकर हम आगे बढ़ें, तभी राम राज्य की कल्पना साकार हो सकती है।

आप सुन रहे थे रमेश कुमार शुक्ल की वार्ता गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य में लोक चेतना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कौशिकी राय के गाए गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कौशिकी राय के गाए भजन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। दोस्तों, भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम दौर केवल फिल्मों का इतिहास नहीं बल्कि भावनाओं का ऐसा सागर रहा है जिसकी हर एक लहर आज भी हमारे दिलों को भिगो देती है। जब हम उस दौर के संगीत की बात करते हैं ना, तो मदन मोहन साहब का सुरीला संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी साहब के वो अलौकिक बोल सहसा ही हमारी रूह को छू जाते हैं। दोस्तों, मौसम जब बदलता है तो सिर्फ हवाओं में ठंडक नहीं

बल्कि दिलों में भी एक अजीब सी हलचल, एक मीठी सी शरारत और मोहब्बत की एक नई उमंग जाग उठती है। और जब बात हो आषाढ़ की पहले फुहारों की, सावन की रिमझिम बूंदों की, तो भला संगीत प्रेमी खुद को झूमने से कैसे रोक सकते हैं। वर्ष 1969 में आई फिल्म चिराग का एक ऐसा ही अप्रतिम गीत, जिसमें सिर्फ बारिश की बूंदें ही नहीं बरसीं, बल्कि उसमें छुपी एक मासूम सी छेड़छाड़, एक नटखट सी उलाहना और दो दिलों का निश्चल प्यार चारों तरफ छा गया। सावन की घटा छाई थी, रास्तों में बारिश का पानी, और ऐसे में जब रूप की मल्लिका का पैर फिसला तो प्रेमी का मुस्कुराकर ताना मारना, नायिका का यूं शर्मा कर रूठ जाना, इस मंजर को मदन मोहन जी की स्वर लहरियों ने क्या अद्भुत रूप दिया दोस्तों। लता जी की सुरीली मिठास और रफ़ी साहब की दिलकश अटखेलियाँ इस गीत को अजर अमर बना देती हैं। फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चिराग का वो गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, तो आइए सुनिए।

दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत जब जिंदगी में पहली बार दस्तक देती है ना, तो दुनिया का हर रंग थोड़ा और गहरा, हर हवा थोड़ी और सुहानी और हर मंजर बिल्कुल जादुई सा लगने लगता है। दिल की उस पहली धड़कन का एहसास ही कुछ ऐसा होता है जैसे किसी ने हमारी सादगी भरी जिंदगी में खुशियों का इत्र छिड़क दिया हो। और जब इस मासूम से एहसास को 50 के दशक के उस जादुई संगीत में पिरोया जाए तो बात ही कुछ और अलग हो जाती है। वर्ष 1956 की ऐतिहासिक फिल्म सीआरडी का एक ऐसा ही गीत है जिसने हर दौर के आशिकों के दिलों पर हुकूमत की है। दोस्तों महान संगीतकार ओपी नैयर साहब की वो मशहूर तांगा रिदम, मजरूह सुल्तानपुरी साहब की कलम से निकले वो दिलकश बोल और शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की त्रिवेणी से सजी वो आवाज़ें, जब भी ये गाना बजता है तो कदम खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। पर्दे पर जब देवानंद साहब की सदाबहार मुस्कान, शकीला जी की वो कातिलाना अदाएँ इस संगीत से मिलती हैं ना, तो देखने वाला बस यही कहता है कि वाकई ये प्यार भी किसी जादूगर से कम नहीं। तो आइए सुनते हैं फिल्म सीआईडी का वो गाना जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शमशाद बेगम ने। रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और धुन ओपी नैयर की।

दोस्तों, ज़िंदगी धूप और छांव का एक ऐसा सफ़र है जहां हर मोड़ पर इंसान का इम्तहान होता है। कभी खुशियों की बरसात हमें झूमने पर मजबूर करती है तो कभी दुखों के साए मन को उदास कर देते हैं। लेकिन जो इंसान हर हालात में मुस्कराना सीख ले, वही ज़िंदगी के असली संगीत को समझ पाता है। जब दौर कठिन हो, रास्ते अनजान हो और उम्मीद की किरणें धुंधली पड़ने लगें, तब संगीत केवल मनोरंजन नहीं रहता बल्कि हमारी बिखरी हुई हिम्मत को समेटने का एक जरिया बन जाता है, एक ऐसी प्रार्थना बन जाता है जो हमें सिखाता है कि रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा तो होना तय है। सन 1997 आई फिल्म मृत्युदाता का एक गीत महज एक गाना नहीं बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा दर्शन है। जब मन में निराशा के बादल छाने लगे तो इस गीत के बोल हमारे दिल में उम्मीद और विश्वास की एक नई रोशनी जलाते हैं। आनंद मिलिंद जी का मधुर संगीत और समीर साहब के बोल रूह को छू लेते हैं, इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बने रहने का संदेश देते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म मृत्युदाता का वो गीत जिसे गाया है विनोद राठौर, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज ने। रचना समीर की है, धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

दोस्तों, जब खुशियों का कारवां अपनी पूरी रंगत पर होता है ना, तो समय का पता ही नहीं चलता। आज सुरों, यादों और नगमों से सजा ये कार्यक्रम हम सभी के दिलों को भिगो गया। दोस्तों, वर्ष 1969 में आई सुपरहिट फिल्म आया सावन झूम के, जिसके गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, धर्मेंद्र जी और आशा पारेख, इन पर फिल्माया गया ये गीत उल्लास मस्ती और भारतीय संगीत के जबरदस्त आकर्षण का प्रतीक बन गया। तो आइए सुनते हैं फिल्म आया सावन झूमके का ये गाना।

और इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। सबसे पहले लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भक्ति रचना।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए, सुनिए गुलाम अली की आवाज में ये गजल। रचना दाग देहलवी की है।

इसी के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की, संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
1: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहाँ लोग उपस्थित रहे तो आप वहाँ आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुँचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए

0: अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉ. सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉ. सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
2: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क एसेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉ. असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारो भोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉ. अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है।

0: मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी CGHS वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक CGHS चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और AI से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उड़ीसा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
1: उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। IMD भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केंदुझर, मयूरभंज, कालाहांडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है, जबकि 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले राउंड के 3 मैचों में भारतीय टीम ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे राउंड में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with office bearers of the BJP in New Delhi, stresses on strengthening organization and deepening connect with the people. Centre announces high-level committee to resolve Gorkha issue after Home Minister holds high-level meeting with senior Gorkha leaders in Siliguri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India-Bangladesh ties have to be based on mutual interests. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Modi's birthday to highlight his commitment to public service. BRICS youth ministers adopt joint statements to expand opportunities for young people in education, skills, entrepreneurship, innovation and social development. In Odisha, fresh weather system over Bay of Bengal to enhance rainfall activity, raising concerns for flood-hit districts. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand clinches historic bronze medal.

0: की कार्रवाइयां जारी हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमन अली खान।
1: सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह पहल के तहत मुनक्किदा 3 रोज़ा खसूसी लोक अदालत के पहले दिन 400 से ज्यादा केस निपटाए। इनमें शादी ब्याह और जायदाद के तनाज़ात, मोटर गाड़ियों के हादसों से मुतालिक दावे, जमीन तहवील में लिए जाने, मुआवजे के मामलात, टैक्स तनाज़ात और अदालत आलिया में जेर इल्तवा सर्विस और लेबर केस शामिल हैं। खसूसी लोक अदालत की कार्रवाई कल तक जारी रहेगी। सरकार ने एक सरमायाकारी स्कीम को प्रमोट करने से मुतालिक ऑनलाइन सर्कुलेट होने वाले मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के एक फर्जी वीडियो को खारिज कर दिया है। छेड़छाड़ करके बनाए गए इस वीडियो में लोगों से 22,000 रुपये की इब्तदाई सरमायाकारी के साथ हर हफ्ते 5.5 लाख रुपये की यकीनी आमदनी का वादा किया गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के हकायक का पता लगाने से मुतालिक यूनिट ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और ये AI की मदद से तैयार किया गया है। उसने ये वजाहत भी की कि वजीर खजाना ने इस तरह के किसी भी सरमायाकारी प्लेटफॉर्म या स्कीम की तायीद नहीं की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अमरीकी डॉलर और भारतीय रुपये के ताल्लुक से गैर मुल्की जर मुबादला के एक दूसरे से तबादला करने की उसकी खसूसी सहूलत के तनाजुर में इस महीने की 21 तारीख तक 72.85 अरब अमरीकी डॉलर का गैर मुल्की जर मुबादला मौसूल हुआ है। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतकर तारीख में अपना नाम दर्ज करा लिया है। वो आलमी चैंपियनशिप में तमगा जीतने वाली खवातीन डबल्स में ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पुनप्पा के बाद दूसरी जोड़ी बन गई हैं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों की जोड़ी सेमीफाइनल में आला दर्जे की दिफाई चैंपियन चीन की लियू शेंग और तान निंग की जोड़ी से हार गई। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-18 से जीता, लेकिन बाद में चीन की जोड़ी ने उसे अगले दो गेम्स में 21-13, 21-8 से हरा दिया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में BJP के नए अहदेदारों के साथ गुफ्तगू की और तंजीम को मुस्तहकम बनाने और अवाम के साथ रबते बढ़ाने पर जोर दिया। मरकज ने सिलीगुड़ी में सरकर्दा गोरखा रहनुमाओं के साथ वजीर दाखला की आला सतह की मीटिंग के बाद गोरखा मामले को हल करने के लिए आला सतह की कमेटी बनाए जाने का ऐलान किया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश ताल्लुकात बाहमी मफादात पर मबनी होने चाहिए। BJP वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर पूरे मुल्क में एक माह तवील सेवा संकल्प अभियान चलाएगी ताकि अवामी खिदमत के तहत उनके अहद को उजागर किया जा सके। ब्रिक्स मुल्कों के नौजवानों के उमूर के बुजुर्गों ने तालीम, हुनरमंदी, अपने कारोबार, इख्तरा और समाजी तरक्की में नौजवान अफराद के लिए मौकों को वसत देने की खातिर मुश्तरक बयान मंजूर किया है। ओडिशा में खलीज बंगाल के ऊपर मौसम की तब्दीली के जेर असर बारिश का जोर बढ़ने से सैलाब से मुतासर जिलों के लिए तशवीश पैदा हो गई है। और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय खवातीन की डबल्स जोड़ी ने कांसे का तमगा जीतकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: श्रोताओं नमस्कार, माह अगस्त की विज्ञान पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान, जिज्ञासा से समाधान तक की यात्रा। श्रोताओं, अगस्त का महीना हमारे लिए स्वतंत्रता, संकल्प और नव निर्माण का संदेश लेकर आता है। आज जब हमारा देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब ये आवश्यक है कि वैज्ञानिक सोच केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे दैनिक जीवन और समाज का अभिन्न हिस्सा बने। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर जैव प्रौद्योगिकी तक, विज्ञान की दुनिया तेजी से बदल रही है। इन उपलब्धियों के साथ नई संभावनाएं तो जन्म ले ही रही हैं, लेकिन नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं जल सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज पहले से कहीं अधिक जरूरी है। आसमान को देखकर कभी न कभी हमारे मन में ये सवाल जरूर उठा होगा, इन तारों के पार क्या है। मानव की इसी जिज्ञासा ने उसे धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचाया। और इसी माह अगस्त की 23 तारीख को हम मनाते हैं अंतरिक्ष दिवस, जो कि केवल भारत के नहीं विश्व के समस्त वैज्ञानिक हलकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस अंक में हमारा प्रयास है कि विज्ञान के जटिल विषयों को सरल, सहज और रोचक भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। हमारा विश्वास है कि वैज्ञानिक चेतना का

0: विस्तार ही एक जागरूक, तर्कशील और आत्मनिर्भर समाज की मजबूत नींव है। रेडियो की आवाज दूर दराज के गांवों को लेकर महानगरों तक पहुंचती है, इसलिए विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आइए सवाल पूछें, तथ्यों को परखें और अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक सोच को अपनाएं, क्योंकि विज्ञान केवल भविष्य की खोज नहीं बल्कि बेहतर भविष्य के निर्माण का माध्यम भी है। आज की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका में हम आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत। इस साक्षात्कार में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर शेखर सी मांडे। हम आपको सुनवाएंगे एक और बातचीत, रोबोटिक्स और कृत्रिम मानव, हमारे कृत्रिम प्रतिरूप और भविष्य की संभावनाएं। इसमें प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर रविंद्र धर। एक और भेंट वार्ता श्रोताओं हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग, चुनौतियां, संभावनाएं, नैतिकता और हमारी सीमाएं। इस साक्षात्कार में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, क्वांटम कंप्यूटिंग, भविष्य की तकनीकी क्रांति, ये विषय होगा एक और बातचीत का। इसमें हमारे साथ होंगे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला। इसके अलावा हम बातें करेंगे विज्ञान जगत की और अगस्त माह क्यों विशेष है हमारे इस संपूर्ण विज्ञान जगत के लिए, इस पर भी बातें करेंगे और कुछ विज्ञान समाचार। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं हमारी विशेष बातचीत, 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत। प्रतिभागी हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे और आपसे बातचीत कर रहे हैं दिलीप झा।
1: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे जी, वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एकेडमी के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, किस किस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ से उत्पन्न हुए और वैज्ञानिक यहाँ से जुड़े रहे, और अभी जब हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ साइंस की तो भारत में ये क्यों जरूरी हो जाता है, खास करके हमारे विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए।
2: जैसा कि आप जानते हैं 18वीं और 19वीं सदी में हमारे देश पर प्रदूषियों का राज था, उसी वक्त ये भी हुआ था पूरे विश्व में कि विज्ञान और तंत्र ज्ञान के माध्यम से हर जगह एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति हम जिसे कहते हैं वो उसी समय पे आई थी। लेकिन जो कि हम लोगों पर अंग्रेजों का राज था, हमारे देश को ज्यादातर बड़े स्तर पे विज्ञान और तंत्र ज्ञान की प्रगति में वंचित किया गया था। और ये जानते हुए हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रमुख व्यक्तियां जो थी उन्हें काफी दुख हो रहा था कि ऐसा ना हो कि भारत पूरे दुनिया से पिछड़ जाए क्योंकि हमें वंचित किया गया है विज्ञान की प्रगति से। उस समय जैसे कि आप शायद जानते हो कि बंगाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसे रिनायसा कहते हैं बंगाल का, उसमें काफी सारी प्रमुख व्यक्तियों उभर कर आई थी हमारे देश के सामने में, बहुत बड़ी बड़ी व्यक्तियों का उसमें उल्लेख किया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, सब लोग एक बंगाल रिनायसा जो था उसके प्रमुख व्यक्ति थे। उसी में एक अग्रेसर नाम जो है वो डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार जी का है, और महेंद्रलाल सरकार जी रामकृष्ण परमहंस जी के निजी चिकित्सक थे, मेडिकल डॉक्टर थे। और महेंद्रलाल सरकार जी के मन में भावना थी कि हमारे देश में भी विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी संस्थाएं होना जरूरी है जहां पे कोई भी आके अपने मन में जो कोई प्रश्न है अपने सृष्टि के बारे में या कुछ भी, और उसके लिए विज्ञान का सहारा लेते उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहे तो वहां पे काम कर सकते हैं। इसी स्वदेशी भावना से महेंद्रलाल सरकार जी ने 29 जुलाई 1876 में एक संस्थान का स्थापन किया जिसे हम लोग इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। और जैसे कि 1876 और 150 वर्ष हाल ही में इस संस्थान के पूरे हुए हैं और बहुत ही गौरवशाली समय यह रहा है भारत के इतिहास में 150 वर्षों का।
1: निश्चित रूप से, क्योंकि जब ये संस्थान बनाया गया था तो इसे कहा गया था कि ये भारतीयों द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा शोध संस्थान है जो आधुनिक विज्ञान की खेती यानी कि संवर्धन एवं मौलिक अनुसंधान के लिए बनाया गया है, और उसके प्रतिफल में रमन प्रभाव दिखाई दिया दुनिया को, और जिसके लिए भारत के प्रथम वैज्ञानिक सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो रमन इफेक्ट का जब उन्होंने पता किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो उस समय बहुत कम संसाधनों से इस पर खोज की गई थी विश्व के अन्य देशों के जो लेबोरेटरी थे उसकी अपेक्षा, और बाद में इसके क्या दूरगामी परिणाम हुए इस खोज के बाद।
2: जैसे कि आपने सही कहा, साइंस का जो सपोर्ट था, इंस्ट्रूमेंट्स थे, इतना सपोर्ट भारत में नहीं था, लेकिन रमन जी ने जी डी बिरला जी को एक पत्र लिखा कि अगर आप मुझे इतना पैसा दोगे तो उसमें से मैं ये इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा, और अगर मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा तो मैं भारत के लिए नोबेल पारितोषिक ले आऊंगा। और जी डी बिरला जी ने रमन पे विश्वास किया और सीवी रमन जी को उन्होंने वो पैसा दिया, रमन जी ने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसके ऊपर रमन जी को नोबेल पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्गामी परिणाम तो ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रमन इफेक्ट आजकल अगर देखे तो उसके उपरांत जो टेक्नोलॉजी बनी है रमन इफेक्ट को लेके काफी सारी है। जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं और हमारा सामान जो स्क्रीन होता है सिक्योरिटी में, वहां पे रमन इफेक्ट से देखते हैं कि सामान में क्या सही में असली चीज है या कुछ गलत चीज हम तो लेने जा रहे हैं साथ में,
1: स्कैटरिंग
2: तो वो रमन इफेक्ट का काफी

0: हर जगह उसका उपयोग होता है, लेकिन वो रामायण के प्रभाव के आधारित ही है सब कुछ।
1: प्रोफेसर मांडे, क्योंकि आप भी संक्रामक रोगों खास करके टीबी के अनुसंधान कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आज इस तरह की जो समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है कि जो अगर प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने की आवश्यकता है, तो विज्ञान अनुसंधान किस तरह से इस क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान दे सकता है?
0: काफी सारे ऐसे रोग महामारी हमारे सामने में है जिसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो पहुंच सकती है, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसे

0: काफ़ी सारे ऐसे रोग महामारी हमारे सामने में है जिसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो पहुंच सकती है। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जो ऐसी फैलती नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती नहीं है। जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ये फैलती नहीं है। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलते हैं, जैसे मलेरिया हो, ट्यूबोकुलोसिस हो, या फ्लू हो। अगर एक आदमी पीड़ित हो तो उसके अगल बगल में बाकी लोगों को भी वो हो सकता है। और भारत में कई वर्षों में ऐसा देखा गया है कि भारत ने काफी बड़े स्तर पर काम करके कई सारे ऐसे रोगों को बिल्कुल यहाँ से हटा दिया है। जैसे कि आपने सुने होगा कि अब पोलियो भारत में नहीं रहा। 2014 में भारत ने अपने आप को पोलियो मुक्त देश कहलवाया था। वैसे ही आज के दिन हम लोग करीबन बहुत पास आए हुए हैं, जिसे हम लोग काला आजार से हम लोग मुक्त हो गए ऐसा मानते हैं। एक हमारे आंखों में बीमारी होती है जिसे ट्रेकोमाइटिस कहते हैं, उससे भी हम लोग मुक्त होने में है। और अगर देखी जाए तो मलेरिया वगैरह जैसी बीमारी भी काफी स्तर पर गए 10-15 वर्ष में बहुत कम हुई है। तो ये भारत के विज्ञान की अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे कि काफी सारे जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो कम होते जा रहे हैं भारत में। और इसमें विज्ञान और तंत्रज्ञान का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है।
1: अंत में क्या संदेश देंगे आकाशवाणी के माध्यम से?
0: मैं यही कहना चाहूंगा युवाओं को कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आज तक हम लोग हमारे प्रकृति के बारे में, निसर्ग के बारे में, सृष्टि के बारे में जो जानते नहीं है, ऐसे कोई प्रिंसिपल हो, लॉ हो, और अगर उसकी खोज करने की हमारे मन में अगर जिज्ञासा हो, और अगर हम विज्ञान के मार्फत उस जिज्ञासा को, उसका उत्तर खोजने की अगर कोशिश करें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
1: प्रोफेसर शेखर सिंह मांडे जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं रोबोट्स की, जब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी और अनोखी दुनिया है। क्या भविष्य हो सकता है, क्या चुनौतियां हैं, क्या नैतिकताएं हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। आइए इस साक्षात्कार में सुनते हैं प्रोफेसर रविन्द्र धर, जो कि विभागाध्यक्ष है मटेरियल साइंस इलाहाबाद विश्वविद्यालय। श्रोताओं नमस्कार, आज हम बात करेंगे रोबोटिक्स की। विकास की ये दौड़, ये हमको कहाँ तक लेकर के जाएगा, किस तरह से हमको, संसार को, मानवता को प्रभावित करेगा, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रविन्द्र धर, जो कि अध्यक्ष हैं इस समय डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर रविन्द्र धर, आपका प्रयागराज आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में और संक्षेप में ये बताइए कि रोबोटिक्स है क्या, और एक आधुनिक रोबोट के पीछे कौन कौन सी प्रमुख जो तकनीकें हैं वो काम करती हैं।
3: वर्तमान रोबोटिक्स, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप AI कह रहे हैं, हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, यह आधुनिक गैजेट्स से मिलकर बना हुआ है। यह मानव के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसमें कुछ इथिकल इश्यूज आते हैं। अब मानव के विकल्प के रूप में कोई गैजेट डिवाइस, जिसको आपने रोबोटिक्स कहा है, तैयार किया जा रहा है, तो इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हमारे मानव में सबसे पहले आते हैं हमारे ज्ञानेन्द्रिय, जिनसे हम सेंस करते हैं। तो सेंसर्स में हमारे हो गए आंख, नाक, कान, टच भी कर सकते हैं हाथ से, वो भी हो गया, ये सेंसिंग का काम करते हैं। तो हमारे आर्टिफिशियल जो रोबोटिक्स होंगे, उसमें सेंसर होना चाहिए, जिससे हम आसपास की प्रॉब्लम्स को सेंस कर सकें। सेंसर्स के साथ साथ एक्चुएटर्स होना चाहिए। हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब एक्चुएटर्स हैं जिनसे हम काम करते हैं। तो जब सेंस करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि क्या करना है। ठंड लग रही है तो गर्म जगह पे जाना है, गर्म लग रही है तो ठंडी जगह पे जाना है। अब सेंसर ने जो सेंस किया, उसको कम्युनिकेट करना है एक्चुएटर को, और उचित निर्णय भी लेना है। तो इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मानव में ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसी तरह से रोबोटिक्स में CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। वो ये बताता है कि ये फीलिंग्स हो रही हैं, अब इसी के हिसाब से आपको एक्शन लेना है एक्चुएटर को। कम्युनिकेशन भी कैसे होगा इनके लिए? मानव में हमारे यहाँ तंत्रिका तंत्र होता है, उसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है। तो फाइबर केबल्स यूज किए जाते हैं रोबोटिक्स में। तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं मॉडर्न रोबोटिक्स के।
2: अपनी भाषा में, जिसे हम सहज विवेक कहते हैं, ये कैसे आप किसी मशीन में डाल सकते हैं? ये इतना आसान है क्या?
3: बिल्कुल। हम भी क्या करते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं, और उसको अपने लॉजिक के हिसाब से, जिसको विवेक आप कह रहे हैं, वो निर्णय लेता है। वही विवेक एल्गोरिथम के थ्रू रोबोट्स के अंदर डेवलप किए जाते हैं। वही इंपॉर्टेंट बात होती है, प्रोसेसिंग, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
2: एक प्रश्न सर और आता है, आज का जो, अगर हम यूथ की बात करें, युवा की बात करें, तो एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आ रही है, डिप्रेशन, अकेलापन या अवसाद। क्या कोई ऐसा रोबोट हमने तैयार अभी तक किया है, कर पाए हैं या कर पाएंगे क्या, कि जिस इमोशनल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे थे, जो उस व्यक्ति को भी एक सांत्वना या एक साथ प्रदान कर

0: सके जिसको साथ की जरूरत है।
1: अभी एग्जैक्टली तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो बिल्कुल मदर का सब्स्टिट्यूट हो सके, फादर का सब्स्टिट्यूट हो सके, वो तो जगहें अभी भी आवश्यक हैं। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में उस डायरेक्शन में कुछ काम हो रहा है। अभी भी फ्रस्ट्रेशन रिमूवल बॉक्सेस फॉरेन में तैयार होने शुरू हुए हैं। कई बार आदमी जो फ्रस्ट्रेट होता है तो क्या करता है, अपने कोलिग पर गुस्सा उतारता है,
0: जी
1: तेजी से चीखना चिल्लाना शुरू करता है। तो वहां पे कुछ इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि वो जा करके अपना फ्रस्ट्रेशन खत्म करे।
0: अच्छा
1: तो तमाम तरीके की चीजें डेवलप की गई हैं वहां पे,
0: जी।
1: लेकिन अभी ये बहुत कम है। अभी तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का केवल बना है, तो वन साइडेड है। दूसरी तरफ से भी सांत्वना आनी चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: वो करना होगा, लेकिन वो थोड़ा सा अभी काफी दूर।
0: चलते चलते प्रोफेसर रविंद्र धर हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं से कुछ अपील करना चाहें या संदेश देना चाहें।
1: हमारी अपील तो यही है कि इंडिया को विकसित देश अगर बनाना है तो पहली बात तो ये है, यहाँ के युवाओं को नियम कानून पहले सीखना पड़ेगा, टाइम का महत्व तो सीखना पड़ेगा कि हम कैसे टाइम के अनुसार सब चीजें करें, जो नियम कानून है उसको कैसे फॉलो करें। बड़ा कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक पे सिग्नल लोग खूब तोड़ते हैं। इलाहाबाद जैसी जगह पे अगर हम ये सिखा ले जाएं कि नहीं भाई, ट्रैफिक का ऑनर करिए, जो विदेशों में होता है खूब होता है। मजाल क्या है कि सिग्नल अगर रेड हो गया तो कोई भी आदमी, वहां कोई ट्रैफिक पुलिसमैन की जरूरत नहीं पड़ती है,
0: जी
1: अपने आप लोग फॉलो करते हैं। तो रोबोट अगर रहेंगे और रोबोट को खड़े कर दिए जाएं, या रोबोटिक से कुछ वहां पे डिवाइसेस डेवलप कर दिए जाएं, तो कंट्रोल भी करना बड़ा आसान हो जाएगा लोगों को। तो हम रोबोट्स के पॉजिटिव साइड देखें।
0: श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर रविंद्र धर, जिनसे हम बात कर रहे थे रोबोटिक्स के ऊपर, रोबोटिक्स के भविष्य के ऊपर, रोबोटिक्स के वर्तमान के ऊपर। आइए इस कार्यक्रम में अब आगे आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे विषय पर जिसने मानव को दो कदम आगे खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात करेंगे जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग की। क्या है इसमें चुनौतियाँ, क्या है संभावनाएं और क्या है हमारी सीमाएं? इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, जो कि लाइफ साइंसेज मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, आपका आकाशवाणी प्रयागराज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बहुत सरल भाषा में बताइए कि ये जीन एडिटिंग क्या है और किसी जीव के डीएनए में कैसे बदलाव कर सकते हैं।
1: हर जीवाणु या हर ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना हुआ है, और उस सेल के अंदर एक अनुवांशिक तत्व जिसे हम डीएनए भी बोलते हैं वो होता है। डीएनए जो है वो हर अलग अलग साइज का हो सकता है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। जो भी जीवाणु की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो डीएनए का साइज जो है ह्यूमन जीनोम का करीब 3 बिलियन बेसेस का है। 3 बिलियन बेसेस का मतलब ये है कि अगर आप एक पेज पे अल्फाबेट्स लिख रहे हैं और 3,000 अल्फाबेट्स अगर एक पेज पे आप लिख पा रहे हैं, तो आप उसकी अगर किताब बनाते हैं तो करीब 1 मिलियन पेजेस या 10 लाख पेजेस की वो बुक बनेगी। तो इतना बड़ा जीनोम होता है ह्यूमन का, अलग अलग जीवाणुओं का अलग अलग जो है तरह का जीनोम हो सकता है। डीएनए जो है कुल 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस से बना है, एडेनिन, थाइमिडिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो यही 4 तरह के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनका एक सीक्वेंस जो है वो जीनोम बनाता है किसी भी जीव का। ये जीनोम जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स है, किसी भी जीव के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को हम जीनोम बोलते हैं। तो अब इसमें हमें समझ पाना कि हाँ कौन सा जीन कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, बहुत मुश्किल है, और केवल एटीजीसी से कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन जो सेल है वो इससे एक सेंस बना लेता है, क्योंकि इस सीक्वेंस में भी कहीं कॉमा कहीं फुल स्टॉप लगे हुए हैं। वो कॉमा फुल स्टॉप डिसाइड करते हैं कि कौन सा जीन जो है कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। और हर जीन किसी न किसी प्रोटीन को बनाता है और वो जो है उस सेल के लिए काम करते हैं। जब हम बात करते हैं एडिटिंग की, तो उस किताब में से कोई एक लेटर आपको अगर हटाना है, तो मूलतः जो है हम जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग में हम यही करते हैं।
0: क्या एक लेटर हटा करके पूरी किताब का मतलब बदल सकता है?
1: हाँ, एक लेटर भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही ये लेटर्स का जो सीक्वेंस होता है वो किस तरह का प्रोटीन बनाएगा वो डिसाइड करता है। अगर एक लेटर भी चेंज होता है तो उस प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिससे उस प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है।
0: कौन सी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनका इलाज जीन एडिटिंग के माध्यम से किया जा सकता है?
1: देखिए, जीन एडिटिंग यूज करके आप बहुत तरह के असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है। इसमें हेमोफीलिया हो गया, बीटा थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कि किसी जीन के खराब होने की वजह से हो रही हैं। तो ये सारी बीमारियां जो हैं जीन एडिटिंग यूज करके आप उनको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी को भी जो है जीन एडिटिंग से ठीक किया जा सकता है।

0: और जीन एडिटिंग से केवल बीमारियां ही नहीं, नए नए तरह के फसल भी तैयार किए जा सकते हैं, केवल हेल्थ के ही फील्ड में नहीं, इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर और बहुत अलग अलग तरह की फील्ड्स में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: प्रोफेसर, हम बात कर रहे हैं जीन की गड़बड़ियों के ऊपर, जो आप सुधारते हैं जिनको, ये होती कैसे हैं?
0: देखिए, दो तरह के ये चेंजेस होते हैं। एक तो ये चेंजेस जो हैं फैमिली में ही हैं, जैसे कि
1: अनुवांशिक जो
0: आपने
1: होते हैं।
0: रॉयल फैमिलीज के बारे में सुना होगा इंग्लैंड की, कि उसमें एक हीमोफीलिया करके
1: जी
0: एक इनहेरिटेड डिजीज है, जिसमें कि ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो क्लॉट नहीं करता
1: जी
0: है, तो ये फैमिली में ही चल रहा है वो। तो ऐसे भी ये चेंजेस हो सकते हैं, जो बॉडी है उसमें जो सेल्स है वो भी डिवाइड करते रहते हैं। सेल डिवीजन में भी जो है बहुत तरह के एरर्स होते हैं, क्योंकि डिवीजन में आप सोच सकते हैं कि 3 बिलियन
1: जी जी
0: सीक्वेंस है, इन
1: जी
0: 3ों बिलियन सीक्वेंस को जब डिवीजन हो रहा है तो जो
1: जी
0: डॉटर सेल बन रही है उसमें वो एग्जैक्टली कॉपी होना चाहिए, वो पूरा का पूरा सीक्वेंस। कभी कभी क्या होता है कि सेल डिवाइड हो रही है तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो कभी कभी उसमें भी एरर आ सकता है। तो उस एरर को ठीक करने के लिए भी सेल के पास पूरा तंत्र होता है, रिपेयर मैकेनिज्म। लेकिन मान लीजिए उस गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो मतलब कि एक सेल ऐसी बन गई जो कि खराब है पहले से, उसमें चेंज आ गया। तो अब वो चेंज, अगर गड़बड़ चेंज है, किसी ऐसी जगह हुआ है जो कि किसी डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कैंसर जो है मूलतः ऐसे ही शुरू होता है बहुत सारे केसेस में, कि किसी ऐसे इंपॉर्टेंट जीन में चेंज हुआ जो कि जरूरी था कि वो सही रहे वो जीन, अब वो जीन खराब होने की वजह से जो है वो सेल कैंसरस होती गई। अब ये भी जो है ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे ये चेंज हो रहा है।
1: तो श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, जो जानकारी दे रहे थे जीन एडिटिंग या जीन थेरेपी के ऊपर। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, भविष्य की तकनीकी या नई वैज्ञानिक क्रांति, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला, जो कि जुड़े हुए हैं भौतिकी विभाग इविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से। प्रोफेसर आशुतोष कुमार शुक्ला, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद
1: क्वांटम कंप्यूटर्स, हम सिर्फ कंप्यूटर्स जानते थे, वो
2: जी।
1: कंप्यूटर्स जिनमें एक मॉनिटर होता था, एक सीपीयू होता था, एक कीबोर्ड होता था और एक यूपीएस
2: हाँ
1: होता
2: हाँ
1: था,
2: हाँ बिल्कुल।
1: ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और ये पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस तरह से अलग है, संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए, ऐसा है कि हम अगर कहें कि क्वांटम कंप्यूटिंग इंसानों की कुछ सबसे मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए अभूतपूर्व कंप्यूटिंग क्षमताएं लेकर आई है, और ये ऐसा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई एक नई डेटा प्रोसेसिंग तकनीक है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के बुनियादी सिद्धांतों पर काम करते हैं, और इसी वजह से जो क्लासिकल कंप्यूटर है उससे कहीं ज्यादा क्षमताएं हैं, और बहुत ज्यादा क्षमता वाले ये क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं।
1: क्वांटम का मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब?
2: देखिए, अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो क्वांटम का मतलब है, जैसे ऊर्जा के क्वांटीकरण की बात करें तो ऊर्जा किस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, तो वहां से यह शब्द क्वांटम लिया गया है।
1: जरूरत क्या पड़ी इसकी, क्या सामान्य जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहे थे?
2: अब देखिए, जब भी नई तकनीक आती है तो उसके पीछे ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो समस्याओं का वांछित रूप से समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं, यानी आवश्यकता ही आप कह सकते हैं कि आविष्कार की जननी
1: जननी।
2: है। तो जब आवश्यकता हुई तब देखा गया, जब हमारे पास इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की बात है, जैसे आप किसी भी सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, ये सब अपने आप में बहुत जटिल कैलकुलेशंस पर आधारित होते हैं। तो इन जटिल कैलकुलेशंस तक पहुंचने के लिए क्लासिकल कंप्यूटिंग से काम नहीं चलने वाला है, और यहीं से इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि अब क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत है।
1: ये क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट क्या है, इनका क्या महत्व है क्वांटम कंप्यूटिंग में?
2: बहुत अच्छी बात की आपने, पर उससे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग में तेज गति और पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम स्टेट्स का इस्तेमाल करके बड़े डेटा वॉल्यूम के मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग को बेहतर बनाते हैं। ये जो क्षमता है यही सुपरपोजिशन से आती है, जिससे क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ कई डेटा सेट्स को मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा इंटेंगल्ड क्यूबिट्स
1: जी
2: यानी एक दूसरे से संलग्न क्यूबिट्स जो हैं वो जटिल डेटा संबंधों को स्टोर और ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये क्लासिकल सिस्टम की क्षमताओं से कहीं ज्यादा है, और क्वांटम इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो है वो क्वांटम एल्गोरिदम को चलाने में

0: मदद करता है, जिससे बड़े पैमाने पर सिमुलेशन, जैसे मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन का सिमुलेशन और बड़े सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़्यादा कुशलता से हो जाता है।
1: आज का दौर एक एआई का दौर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर, और एक तरह से अगर कहें हमने एक कृत्रिम बुद्धि तैयार कर ली है, क्या इसका एआई का और क्वांटम कंप्यूटिंग का जो मिश्रण है ये भविष्य में बहुत अधिक शक्तिशाली होने वाला है? इसके किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस देखने में सामने आ सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, मैं दोनों आपसे जानना चाहूंगा।
0: बहुत बढ़िया प्रश्न आपने सामने रखा है। देखिए, असली बात जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई दोनों क्षेत्रों के बीच में एक बेहतर तालमेल की बात है, तभी जो है हमको जो अपेक्षित फायदा है, जो अपेक्षित लाभ है वो मिलने वाला है।
1: जी
0: क्वांटम कंप्यूटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और डिवाइस डिजाइन से लेकर एप्लीकेशन तक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकें उपयोगी क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की चुनौतियों को हल करने में मदद कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यूबिट्स को डिजाइन करने से लेकर क्वांटम एल्गोरिदम तैयार करने, डिवाइस को कंट्रोल और कैलिब्रेट करने, रियल टाइम में गलतियों को ठीक करने और क्वांटम कंप्यूटिंग से मिलने वाले आउटपुट को समझने तक हर चीज में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
1: डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि पेड़ों में जीवन होता है।
0: बिल्कुल
1: हम
0: बिल्कुल
1: इतनी भारी भरकम क्वांटम कंप्यूटिंग की बातें कर रहे हैं, कोई पेड़ अगर ये बातें सुन रहा होगा तो उसके मन में क्या विचार आ रहा होगा?
0: बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों का इस्तेमाल होता है तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करते हैं, यानी पर्यावरण के ऊपर असर पड़ रहा है। देखिए, वो बोल नहीं पा रहा है, वो एक उसकी कैपेसिटी नहीं है तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो न बोल करके भी अगर वो प्रकृति का घटक अगर घुट रहा है तो उसको हम ही को भोगना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली फिर हम उससे प्रभावित होंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है, विकास के साथ साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं।
1: बिल्कुल। तो ये थे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ल, जो हमें जानकारी दे रहे थे क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। आइए अब बातें करते हैं विज्ञान जगत की और विज्ञान समाचारों की। अगस्त माह में ऐसे कौन से विशिष्ट वैज्ञानिक व्यक्तित्व थे जो जन्मे, जो दिवंगत हुए, और प्रमुख वैज्ञानिक घटनाएं?
2: श्रोताओं, अगस्त 2026 में भारत और विश्व से विज्ञान की दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण और रोचक प्रगति पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। भारत से भारतीय वैज्ञानिकों ने बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की असामान्य रूप से अधिक मात्रा वाली परत का पता लगाया। ये परत एक दिन से अधिक समय तक बनी रही। अध्ययन के अनुसार इसका संबंध ओजोन समृद्ध हवा के क्षैतिज परिवहन और नीचे की ओर वायुमंडल गति से था। इसमें एरीज यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, नैनीताल के स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर रडार सहित रडार, मौसम गुब्बारों, उपग्रहों और वायुमंडलीय मॉडलों का प्रयोग किया गया। अगली खबर न्यूक्लिक एसिड रिसर्च में प्रकाशित। भारत में वैज्ञानिकों ने ACSC-END नाम का मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क विकसित किया है, जो ट्यूमर जीन एक्सप्रेशन डेटा से कैंसर स्टेम लाइक सेल्स की अवस्थाओं की पहचान में मदद करता है। 25,000 से अधिक ट्यूमर प्रोफाइल्स के विश्लेषण में इन कोशिकाओं की अधिक उपस्थिति को कम डिजीज फ्री सर्वाइवल, ट्यूमर रिकरेंस और इम्यूनोथेरेपी के कमजोर रिस्पॉन्स से जोड़ा गया। ये AI स्वयं कैंसर का उपचार नहीं बल्कि जेनोमिक डेटा सेट्स में महत्वपूर्ण जैविक संकेतों की पहचान का माध्यम है। ये प्रिसिशन मेडिसिन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विश्व से बात करें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने MOMBH1 नाम की अत्यंत दूरस्थ वस्तु का अध्ययन किया, जिसका प्रकाश उस समय का है जब ब्रह्मांड लगभग 66 करोड़ वर्ष पुराना था। इसके केंद्र में घने गैस आवरण से घिरे एक बहुत बड़े ब्लैक होल के संकेत मिले हैं। ये जानकारी ब्रह्मांड में विशाल ब्लैक होल्स के निर्माण को समझने में महत्वपूर्ण हो सकती है। तो विज्ञान जगत की इन खबरों में कहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कभी जेनोमिक एनालिसिस है, कहीं सूर्य और स्पेस वेदर का अध्ययन तो कहीं ब्रह्मांड के आरंभिक ब्लैक होल्स। विज्ञान की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, हर नई खोज हमारी जानकारी बढ़ाती है और नए प्रश्न भी सामने लाती है। अब अगस्त माह से जुड़े उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनके कार्यों ने विज्ञान की दिशा पर गहरा प्रभाव डाला। 2 अगस्त 1861 को आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ। आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के अग्रदूतों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की और अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री लिखी। 7 अगस्त 1925 को MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ। प्लांट जेनेटिक्स और क्रॉप ब्रीडिंग में उनके कार्यों ने भारत की हरित क्रांति और खाद्य सुरक्षा को वैज्ञानिक आधार दिया। बाद में उन्होंने टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पर भी काम किया। इनके योगदानों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। 8 अगस्त 1902 को पॉल डिरा

0: का जन्म हुआ। उनकी डिराक इक्वेशन ने क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी को जोड़ने तथा एंटी मैटर की सैद्धांतिक संभावना समझने का मार्ग दिया। 1933 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उनके सम्मान में दिए जाने वाला डिराक मेडल भी सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्मान है। और हाल ही में वर्ष 2026 का ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत के प्रख्यात सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी एवं IIT कानपुर के पूर्व छात्र प्रोफेसर दीपक धर को सांख्यिकीय भौतिकी में उनके मौलिक योगदान के लिए प्रदान किया गया और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 12 अगस्त 1919 को डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में उनका अग्रणी स्थान है। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान को संचार, मौसम, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास से जोड़ने की दूर दृष्टि प्रदान की और इनको भी भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो कि उनको मरणोपरांत दिया गया उससे सम्मानित किया गया। 21 अगस्त 1995 को महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर का देहावसान हुआ। तारों की संरचना और विकास पर उनके मौलिक कार्य तथा चंद्रशेखर लिमिट ने व्हाइट ड्वार्फ्स के अध्ययन को नई दिशा दी। 1983 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रसायन विज्ञान, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान, तारकीय भौतिकी और न्यूक्लियर फिजिक्स, अगस्त हमें विज्ञान के इन विविध क्षेत्रों के महान वैज्ञानिकों को स्मरण करने का अवसर देता है। इन सभी वैज्ञानिक यात्राओं में एक भावना समान थी, जिज्ञासा। यही जिज्ञासा प्रश्न पैदा करती है, प्रश्न अनुसंधान को जन्म देते हैं और अनुसंधान मानव ज्ञान को आगे बढ़ाता है।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा ये अंक। ये अंक आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र का अंशदान था। वाचन अंजलि श्रीवास्तव और अभिनव प्रज्ञ पांडे। प्रस्तुति अभिनव प्रज्ञ पांडे।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री श्रेयस नारायणन द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री श्रेयस नारायणन आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं। वे अपने प्रभावशाली आवाज, गहन संगीत ज्ञान तथा कर्नाटक संगीत परंपरा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रारंभिक संगीत शिक्षा मुत्तुस्वामी दीक्षितर की परंपरा से जुड़े स्वर्गीय ए अनंतरामन अय्यर के मार्गदर्शन में प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने प्रोफेसर एम ए वेणुगोपाल तथा स्वर्गीय पी एस नारायण स्वामी से प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनके मार्गदर्शन ने उनके संगीत जीवन को आकार दिया। कई दशकों के संगीत सभाओं के अनुभव के साथ श्री श्रेयस नारायणन ने भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों एवं सांस्कृतिक मंचों पर व्यापक रूप से अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं तथा वे संगीत समीक्षकों और संगीत प्रेमियों दोनों के बीच अत्यंत सम्मानित हैं। अपने सफल संगीत जीवन के अतिरिक्त उन्होंने शिक्षण एवं शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से संगीत शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती एस आर राजश्री, मृदंगम पर श्री ए बालकृष्णा कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट by Sri Shreyas Nair.

0: प्रस्तुत है मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना कामाक्षीम कल्याणी, जो राग कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to Kamakshim Kalyani, a composition of Muthuswami Dikshithar in the Raga Kalyani, set to Rupakathal.

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री श्रेयस नारायणन अब प्रस्तुत कर रहे हैं पेरिया स्वामी तूरन द्वारा रचित ताये त्रिपुर सुंदरी, जो राग शुद्ध सावेरी पर आधारित है और खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: The next item is Taaye Tripura Sundari in the rag Shuddha Saveri set to Kandachapu Thaal composed by Periyasami Thooran.

0: श्री श्रेयस नारायणन अपने गायन का समापन संत त्यागराज की एक रचना दाशरथी से कर रहे हैं, जो कि राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री श्रेयस नारायणन कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद दाशरथि, कंपोज्ड बाय त्यागराजा इन द रागा तोड़ी सेट टू आदि ताल।

0: ये था तनिया वर्तनम। मृदंगम पर थे श्री ए बालकृष्ण कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
1: That was Thaniya Vartanam played on the mridangam by Shri A. Balakrishna Kammath and on the ghatam by Shri Vaikyam N. Gopalakrishnan.
0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री श्रेयस नारायणन का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर श्रीमती एस आर राजश्री, मृदंगम पर श्री ए बालकृष्ण कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that we conclude the vocal recital by Shri Shreyas Narayanan in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Shrimati S.R. Rajashree on the violin, Shri A. Balakrishna Kammath on the mridangam, and Shri Vaikyam N. Gopalakrishnan on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Thiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओ, अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार। 11 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
2: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बलों और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है।

0: उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थांकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तंत्र श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य महत्वपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपये के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपये की सुनिश्चित आय देने वाला दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये वीडियो AI से तैयार किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और तैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है और कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi this evening. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. The BJP president said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of BJP to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first 2 stanzas at Congress programmes. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders today in Siliguri, West Bengal. After the meeting, a decision was made to form an intermediary committee headed by former IPS officer Pankaj Singh to solve all the problems permanently in connection with the hills in North Bengal. External Affairs Minister S. Jaishankar has said that India-Bangladesh ties must be based on mutual respect. Speaking at the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi today, he said, for any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. India wants positive, constructive and forward-looking relations with Bangladesh based on mutuality of interest and reciprocity.
2: For any relationship